0: किया बाहर से एंट्री सोशल पुलिस का सामने में इतना गाड़ी को अटक किया। अगर हम गाड़ी का कांच शीशा खुला रखता तो हमारा माथा फट जाता, हम लोग सब मर जाता। ऐसा पुलिस के सामने में हुआ, हम कभी ऐसा हमला नहीं देखा।
1: पुलिस क्या कर रहा है? इतना
0: पुलिस बीजेपी को प्रोटेक्शन दे रहा है।
2: गाड़ी जब चालू हो गया, जब हम कोल्लानी एक्सप्रेसवे की तरह जा रहे, उसके बाद पुलिस और बीजेपी की गूंज वो इकट्ठा होके इतने सारे ईंट फेंका, ब्रिक्स फेंका, पत्थर फेंका, सोचा नहीं जाता। हम चार थे, एक छोटी सी लड़की और दीदी कोल्लंद और हम। ये 163 बीएनएस भी तोड़े नहीं हम, अगर उधर नहीं है 163, उधर 144 जो हम बोलते थे वो नहीं है, फिर भी हम बोल रहे हैं हम तोड़े नहीं। एक गाड़ी जा रहा था, दूसरा कोई गाड़ी भी नहीं था, फिर भी ये हालत। दीदी तो पीपल्स लीडर है, मास्ट लीडर है, हमारी पार्टी की वर्कर कस्टोडियल डेथ हुआ, दीदी जाएंगे नहीं उसकी विक्टिम फैमिली को मिलने? ये हालत होगा लॉ एंड ऑर्डर की।
3: पूर्व मुख्यमंत्री का गाड़ी के ऊपर कोई पथराव करता है, उसका ऊपर मिट्टी फेंकता है, चप्पल फेंकता है, तो उसको भारतीय जनता पार्टी का कोई समर्थन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और हम लोग ये नहीं चाहते हैं जे ये राज्य की कोई पूर्व मुख्यमंत्री, एक महिला मुख्यमंत्री, उसका साथ ऐसा व्यवहार किया जाए। अगर ऐसा होगा तो आने वाले दिन में पश्चिम बंगाल का लिए फेस लॉस होगा। हम लोग इस घटना की निंदा करते हैं। अगर ऐसा हुआ है, मेरे पास पूरा जानकारी नहीं है, या हुआ है तो शुभेंदु अधिकारी जी का जो पुलिस है वो तुरंत इसका खिलाफ कार्रवाई करेगी।
4: On day 16 of the student agitation in Jharkhand and the deadlock with the government continues. Protesters have rejected the government's response on key demands. The meeting failed to resolve all of the student issues, with the protesters remaining firm on their call and demand for a CBI inquiry into the alleged examination irregularities. With no breakthrough in the talks, the students have now decided to march towards Vidhan Sabha, signalling that the agitation is set to continue. The Jharkhand government is signaling some movement in talks with protesting students. After nearly 5 hours of discussion, Minister Sudevya Kumar described the dialogue as positive and said that the students will now decide whether to withdraw the agitation or continue with it. The government has also said that it can recommend an ED probe into the financial irregularities, set up a fast-track court, ensure that the charge sheet is filed within 90 days. The final decision on the protest, of course, rests with the students.
5: हर चीज, हर समस्या का समाधान संवाद से होता है, लाठी गोली डंडा से नहीं होता है। लाठी गोली की आवश्यकता सीमाओं पे होती है, दुश्मनों के साथ होती है, जो देश का दुश्मन है उनके साथ होता है, देश के अंदर रहने वाले लोगों के साथ, अपने घर में लाठी डंडों के साथ। किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि नुकसान बहुत होता है। तो इसीलिए आज इस मंच से विशेषकर नौजवानों को यह संदेश देना चाहता हूं, मैं भी कोई बूढ़ा नहीं हूं साथियों, मैं भी आप ही लोगों के लगभग का स्थिति में हूं। आपकी भावनाएं, आपकी चिंताएं हमारी चिंताएं हैं। आज संवैधानिक जगह पे बैठते हुए मैं आपको ये बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि आपके साथ पारदर्शिता के साथ न्याय होगा, और न्याय होते हुए दिखने का भी काम, दिखाने का भी हम लोग काम करेंगे।
6: In the many camps that exist right now, one of course is also this tent where Devendranath Mehto has now been sitting on a fast until death for 15 days. And take a look at this tent, you know, under the tricolor, he's been lying here for over a fortnight. It's been raining incessantly, and very often this tent is not enough to be able to even block the rain. But the fast continues, and the central demand for a CBI investigation also continues. Devendranath ji, 15 दिन हो गए हैं
7: रिजल्ट का, जो उम्मीद था वो रिजल्ट सेटिस्फाइड लायक नहीं आया है बात। अगर हम सभी छात्र संतुष्ट

0: हो जाते तो छात्र का काम कभी नहीं है आंदोलन करना, प्रोटेस्ट करना, घेराव करना, मार्च करना। छात्र का काम है पढ़ना, एग्जाम देना, रिजल्ट लेना और अपना फ्यूचर।
1: आपको लगता है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए?
0: बिल्कुल, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और सीबीआई के जांच के साथ साथ जो जांच रिपोर्ट है उसको ट्रायल में फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाना चाहिए। नहीं तो यहाँ 25-30 साल पहले जेपीएससी पर 11-11 सीबीआई जांच अलग अलग परीक्षाओं पर हो चुकी है, लेकिन आज तक उसको ट्रायल में कोर्ट में ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुई है। अभी झारखंड राज्य के अंदर जितने भी सचिव लेवल के पदाधिकारी हैं सभी सीबीआई जांच पर आरोपित हैं, बाय नेम धांधली करके लोग नौकरी लिया है, लेकिन सभी बेल से नौकरी कर रहे हैं, सजा नहीं हो रही है लोग पर। तो हम लोग चाहते हैं कि पूरा सिस्टम पे बदलाव आ जाए।
2: As the time for the march by those who are demanding justice in Ranchi draws close, more attention is now being focused on this stadium where it's been close to 3 weeks. That right over here, there has been one steady group of students, a total of 4 of them who are sitting on a bhook hartal. They have been sitting on Anshan, 2 of them have had to be hospitalized, but now greater focus on Ranchi. And you've got more people from across the state. A little bit of what you had seen at Jantar Mantar, a little bit of social media awareness as news from Jharkhand spreads across the country. आप यहाँ पर कह रहे हैं सीट बेचना है तो EMI ऑप्शन के साथ बेचना ताकि हम भी खरीद पाएं। Now what's been happening is that people across the country must understand here it is not so much the issue of a paper leak. What is being alleged is that jobs are being sold and a rate list has been set out. ये किस तरीके की रेट लिस्ट की आप बात कर रहे हैं? अपना नाम बताइए।
3: आयुष पांडे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सीट बेचना ही है, अमीर लोग जो खरीद रहे हैं तो गरीब के लिए भी कुछ लाना चाहिए, इसलिए EMI ऑप्शन आना चाहिए ताकि गरीब बच्चे भी खरीद पाए।
2: वो कह रहे हैं कि भाई हम CID का तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करा ही रहे हैं, लोगों को हमने जेल में भी डाला है, तो प्रॉब्लम क्या?
4: पर देखिए इससे कुछ हो नहीं रहा ना, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ रिपीट होती है। मतलब उसका यही मतलब है कि ऊपर से ही कहीं ना कहीं गड़बड़ है, नीचे से नहीं है। तो आप नीचे के एक दो को डाल दोगे, बाकी ऊपर के सारे लोग बच जाएंगे, तो ये फिर से रिपीट ही होगा और कुछ नहीं होगा।
2: ना झुकेंगे ना बिकेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, झारखंड हमारा है। बिकॉज अगेन द एम्फेसिस कंटिन्यूसली इज दैट व्हाट हैपेंड ऑन द 20th ऑफ जुलाई इन दिल्ली शुड नॉट हैपन ऑन द 10th ऑफ ऑगस्ट। There should be no violence, there should be no opportunity for the government to take any action, things should remain peaceful, and that's something to be fair we keep hearing being repeated from this stage. Aap yahan jo poster leke khade hain kya kehna chahte hain?
5: Main kehna chahta hu ki har log taiyari kar nahi pata aur jo jo kar raha hai कम से कम उसकी सरकार को सुनना चाहिए और पेपर लीक नहीं करना चाहिए। हर किसी का बस का बात नहीं है कि वो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर पाए। बचपन से मेहनत करता है बच्चा लोग तो कुछ कर पाता है।
6: So all eyes on the student protests in the state of Jharkhand when the third round of conversation between the government and the protesting students has failed. We'll keep a track and much more. For now, slipping into a very short break.
7: Front lines of Kargil. The fury of Operation Sindoor.
8: So many attacks.
7: The chaos and cries of disaster zones. The fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
8: It's incredible.
7: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
8: Welcome to Left, Right and Center.
7: Hard facts.
8: War-struck country.
7: Hard questions.
8: In the Ukraine.
7: 30 years of trust.
9: In the Kargil area.
8: North Ukraine.
10: In France. In Italy.
8: At Srinagar.
10: I am Mr.
8: Vishnu Shom for NDTV.
7: Vishnu Shom. Only on NDTV. Celebrating excellence across journalism and innovation. NDTV steals the spotlight at the 12th BCS Ratna Awards 2025-26. Best English News Channel of the Year, NDTV 24/7. Best News App of the Year, NDTV. Best Election Coverage of the Year, West Bengal Election Coverage. Best Podcast Show of the Year, NDTV Control All Defense. Best Primetime Anchor of the Year, Sayed Suhail. Best Female Anchor of the Year, Vasudha Venugopal. Best On-Ground Coverage of the Year, Operation Sindoor Coverage. NDTV, the network of impact.
9: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
10: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Harisha Sehgal.
9: The show that sets the prime time agenda.
10: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
9: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.

0: right from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
1: Launch control, 0 to 100.
2: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
3: This car makes no sense, yet it makes every sense.
4: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
2: Your friend said, "Yeah, Lily." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
5: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
6: बैठ सकता आपके साथ? खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
7: हरियाणा।
6: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
7: डेढ़ महीने पे।
6: आपकी फैमिली है?
7: और
6: बच्चे हैं?
7: 3 साल।
6: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
7: बहुत।
6: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
7: श्रीनगर तक अलाउड।
6: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
5: See, the sacrifice is unbelievable, you know?

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
1: Just few inches away is POK.
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
1: Trade associations, the students have announced a march to the Vidhan Sabha. That's going to be taking place today. Do remember there's a deadline of the 10th of August, and that's going to be taking place at 11 o'clock this morning. Tensions flared in West Bengal after former Chief Minister Mamata Banerjee's convoy was attacked by protesters while she was on her way to meet the family of party worker whose death in police custody has become the centre of a political confrontation. And it is the Lok Sabha Business Advisory Committee that will be meeting today at 1 p.m. with the proposed FCRA bill expected to figure in the meeting. Official details as far as the government's legislative plan is concerned, it's likely to emerge after that very crucial meeting. It's Karnataka's Chief Minister E.K. Shivakumar who held a lengthy 1.5 hour meeting with Mallikarjun Kharge here in Delhi in order to discuss ministerial aspirations and growing dissent amongst legislators following recent cabinet adjustments. Tamil Nadu Chief Minister proposes a special assembly resolution mandating that the state song must be sung first at all public events, universities and government offices across the state. He will move a resolution in the assembly that's going to take place today. Let's begin the bulletin with news coming in from Jharkhand, and that's the student protest that's entered D17 with talks between students and government that is failing to break the deadlock. Students are set to march towards the Vidhan Sabha. That's going to be taking place today at 11 o'clock this morning, and they plan to surround the assembly, get out the assembly, and the protesters remain very firm as far as that demand is concerned for a CBI probe. Do remember that the government is offering an ED probe into the matter. They're also seeking the cancellation of exams amid the ongoing agitation. The government of Jharkhand says it held a very positive conversation with students that they will now decide whether to withdraw the protest. The government has, of course, they have proposed at the moment an ED probe into the matter, a fast-track court and charge sheets within a time frame of 90 days in the exam irregularity cases. But this is not going down too well with the students. In fact, they're not very happy with round three of conversations.
2: Har cheez, har samasya ka samadhan. संवाद से होता है, लाठी गोली डंटा से नहीं होता है। लाठी गोली की आवश्यकता सीमाओं पे होती है, दुश्मनों के साथ होती है, जो देश का दुश्मन है उनके साथ होता है, देश के अंदर रहने वाले लोगों के साथ, अपने घर में लाठी डंटों के साथ किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि नुकसान बहुत होता है। तो इसीलिए आज इस मंच से विशेषकर नौजवानों को यह संदेश देना चाहता हूं, मैं भी कोई बूढ़ा नहीं हूं साथियों, मैं भी आप ही लोगों के लगभग का स्थिति में हूं। आपकी भावनाएं, आपकी चिंताएं हमारी चिंताएं हैं। आज संवैधानिक जगह पे बैठते हुए मैं आपको ये बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि आपके साथ पारदर्शिता के साथ न्याय होगा और न्याय होते हुए दिखाने का भी हम लोग काम करेंगे।
3: आप लोगों ने बहुत एफर्ट किया मैम, लेकिन उसके बाद भी क्या ऐसा हुआ क्योंकि कल फिर एजिटेशन होगा स्टूडेंट्स का?
4: नहीं देखिए, एजिटेशन हो इससे हमारा इशू नहीं है, स्टूडेंट्स का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन क्योंकि सरकार की तरफ से प्रयास हो रहे हैं, उनके मैक्सिमम बातों को मान लिया गया जो सरकार के कैपेसिटी में है, जिन बातों में जुडिशरी इन्वॉल्व्ड है वहाँ पर हमने उन तथ्यों को भी छात्रों के सामने बहुत साफ रखा है। मैं फिर से अभी आप लोगों के माध्यम से छात्रों से यही कहना चाहती हूँ कि एजिटेशन मोड में ही रहने से बेहतर है कि आप जो बातें हैं उनको समझें और संवाद के माध्यम से समाधान पाए।
3: इतनी है, कल घेराव की बात कर रहे हैं इतने सारे स्टूडेंट्स।
4: इसको देखिए, ये तो लोकतंत्र में चलता है, धरना प्रदर्शन, विधानसभा घेराव, ये लोकतंत्र का हिस्सा है, वो इशू नहीं है। लेकिन आंदोलन हो, एजिटेशंस हो, तब जब सरकार आपकी बात ना सुन रही हो, चीज़ों को समझने के लिए तैयार ना हो, आपके समाधान के प्रयास ना कर रही हो, तो ये हमें समझ नहीं आ रहा। हो सकता है इसके पीछे बड़ी
3: ये कम्प्लीटली डेडलॉक सिचुएशन है।
4: नहीं, अब वहाँ से बच्चे यही बोल करके गए हैं कि वो अपने साथ के जो छात्र साथी हैं उनसे बात करके फिर सरकार से बात करेंगे, और हम लोग भी उनको इनवाइट कर रहे हैं।
5: हमारी मांग है कि चूंकि ये परीक्षा प्रक्रिया दूषित है TDPL के द्वारा, तो TDPL के द्वारा जितनी भी परीक्षा है वो समस्त परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए। साथ ही साथ JSSC CGL की परीक्षा का सर का कहना है कि हम लोग एक रिटायर्ड जज्स के उसमें जो है कमिटी में हम लोग इसकी पूरी जांच विद इन 90 डेज हम लोग इसको कराना चाहते हैं, तो हम लोग का इस पे जो है सहमति नहीं बन पाया। मैं स्पष्ट रूप से कहूँ, हमारी मांग CBI की है, हम लोग CBI जांच पे हम
6: रद्द करने की मांग थी।
5: हाँ यस सर,
6: आपकी मांग रद्द करने की
5: थी। हम लोगों ने ये भी बोला कि परीक्षा को रद्द करते हुए जो CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, जिस पे सहमति नहीं बन पाई है, यही हमारा जो है अंतिम है।
7: हम लोग की जो मांगे थी उसमें से 50% से अबव मांगों पर सरकार ने सहमति जताई है।
6: 50% कैसे एग्जैक्ट बोलो, किन किन मांगों पर? समय है तुम्हारे पास, पूरा बोलो।
7: हमारी जो मांगे थी उसमें जो है सो 14 JPSC बैकलॉग 2023, JPSC बैकलॉग 2025, ये तीनों एग्जाम को सरकार जो है सो रद्द करने पर विचार बनाई है। इसके अलावा TDPL एजेंसी द्वारा जितने भी एग्जाम ली गई है उस पर जो है सो सरकार ने CID और ED का जांच का प्रस्ताव दिए हैं। इसके अलावा जो है सो जितने भी हम लोग का रिफॉर्म से संबंधित मैटर था उसमें लगभग सभी मैटर को सरकार ने माने हैं, कुछ एकाध को छोड़ के जैसे एज रिलैक्सेशन को लेकर के इस पर सहमति नहीं बन पाई है।
1: And switching tracks to getting you more news, it's the BJP versus the TMC face-off that's intensified in West Bengal after an attack that took place on the convoy of Mamata Banerjee. This was during her visit to North 24 Parganas. She was visiting the family of a victim who TMC claims died in police custody. Mamata Banerjee's convoy was allegedly attacked with stones and also shoes as well as bottles. The former chief minister and TMC supremo, Mamata Banerjee, claims that she could have died in the attack if not for the windshield. But it is, of course, West Bengal's current chief minister, Suvindu Adhikari, who has blamed Mamata Banerjee, accusing her of not informing the police about that visit of hers. But he added that adequate security was, however, provided.
8: चेरीबेल वो है, मेरे को गाड़ी में बड़े बड़े पत्थर मारा गया बाहर से, एंटी सोशल पुलिस का सामने में हमको इतना गाड़ी को अटक किया। अगर हम गाड़ी का कांच शीशा खुला रखता तो हमारा माथा फट जाता, हम लोग सब मर जाता, ऐसा पुलिस के सामने में हुआ। हम कभी ऐसा हमला नहीं देखा।
9: पुलिस क्या कर रहे हैं? इतना
8: पुलिस पुलिस बीजेपी को प्रोटेक्शन दे रहा है।
10: ढुके जयचंद जी রকাপে মেরে দিয়েছে, বিজেপি মেরে দিয়েছে, তৃণমূলের সম্পদ, আর বাড়ির লোক বলছে যে আমার তো প্রশাসন পুলিশের উপরে স্যাটিসফাই, আমরা রহস্য উন্মোচন হোক চাই। লকআপে ছিল সেই অবস্থায় পিটিয়ে মেরেছেন, অসুস্থ হয়ে বিচার চাই, এবং লোকাল সরকার এবং পুলিশই আমাকে বিচার দিতে পারবে। মমতা ব্যানার্জি বিচার দিতে পারবে না, তার বাড়ির লোক বলছে। আর আপনি ওখানে ছুটির দিন একজন লয়ারকে সঙ্গে নিয়ে রাজনীতি করতে গেছেন পুলিশকে না জানিয়ে। পুলিশ তো এত বড় অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছে দেখলাম, যেটা তো উনি এখন ওই ক্যাটাগরিতে পড়েন কিনা সন্দেহ আছে। না, আমাদের নির্দেশ আছে, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী 15 বছর ছিলেন, বয়সও হয়েছে, উনাকে যতটা সম্ভব পূর্ণ নিরাপত্তা এবং ওনার সম্মান রাখা উচিত। সে কাজ পুলিশ করেছে, পুলিশ কিন্তু খারাপ কিছু করেনি। তো ওনাকে বলবো, আপনাকে ওই বাড়ির লোক দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে, আপনি বলছেন যে না আমি দরজা ভেঙে ঢুকবো, এই কাজগুলো করবেন। আপনার আপনার কাছ থেকে যদি কেউ সাহায্য চায়, আপনার যদি কেউ হস্তক্ষেপ চায়, আপনি নিশ্চয়ই করুন। কিন্তু আপনি অহেতুক এখন উন্নয়নের সময় এই সময় আপনি দয়া করে কোন জায়গায় গিয়ে এমন কিছু করবেন না যাতে স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত হয়।
9: আসল ভয়টা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের, তৃণমূল কংগ্রেসকে, সেই কারণেই এই খুনের চেষ্টা। আমরা তীব্র নিন্দা করছি। তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা আগামীকাল 3টে থেকে 4টে দলীয় নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত তারা জানিয়ে দিয়েছেন যে প্রত্যেকটি জায়গায় যেখানে 3টে থেকে 4টের মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ হবে।
11: আমারা দু এমপি দোলা সেন আর কল্যাণ ব্যানার্জিকে লেকে উহাঁ পর গিয়া জব যা রে তে 1 ঘন্টা পুলিশ রোক দিয়া। ইসি বিচ মে বিজেপি কে গুন্ডা ইকট্ঠা হো গে আর মমতা ব্যানার্জিকে গাড়ি কে উপর বড়া বড়া পত্থর, ইটা আর কিচড় ফেঁকা গিয়া। আগর গাড়ি কা খিড়কি বন্ধ নেই রহতা, উইন্ডো বন্ধ নেই রহতা, তো মমতা ব্যানার্জি কো আর দূসরে যে থে কল্যাণ ব্যানার্জি ও দোলা সেন ও ঘায়ল হয়ে যেতা।
1: And switching tracks now to the monsoon session of the parliament that's set for a stormy final week. In fact, just a few days to go, with the government preparing to discuss the FCRA bill, while the opposition is planning to raise several contentious issues. The Lok Sabha Business Advisory Committee will be meeting today at 1 o'clock this afternoon. The proposed FCRA bill expected to figure in that crucial meeting. Official details on the government's legislative plan are likely to emerge after that meeting takes place. The India bloc, meanwhile, is set to meet at 10 o'clock this morning in the parliament to chalk out a strategy for the final week of the session. The opposition will also hold a protest, and that's going to be taking place at 10:30 a.m. while the Congress has issued a whip to its MPs ahead of the key parliamentary business.
12: We oppose it as of now, as it stands now, we oppose it because it is strangling the NGOs who are doing good work and also killing the minority institutions who is doing great service. So, and the opposition should be taken into confidence before bringing in anything, and the government do not take any such proactive measures to take opposition into confidence regarding this bill or any other.
13: I mean, if FCRA is to come, this is something which my party will support.

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकते आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।

0: मैं भी कोई बूढ़ा नहीं हूं साथियों, मैं भी आप ही लोगों के लगभग का स्थिति में हूं। आपकी भावनाएं, आपकी चिंताएं हमारी चिंताएं हैं। आज संवैधानिक जगह पर बैठते हुए मैं आपको ये बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि आपके साथ पारदर्शिता के साथ न्याय होगा और न्याय होते हुए दिखने का भी काम, दिखाने का भी हम लोग काम करेंगे।
1: आप लोगों ने बहुत एफर्ट किया मैम, लेकिन उसके बाद भी क्या ऐसा हुआ, क्योंकि कल फिर एजिटेशन होगा स्टूडेंट्स का?
2: नहीं देखिए, एजिटेशन हो इससे हमारा इशू नहीं है, स्टूडेंट्स का लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन क्योंकि सरकार की तरफ से प्रयास हो रहे हैं, उनके मैक्सिमम बातों को मान लिया गया जो सरकार के कैपेसिटी में, जिन बातों में जुडिशरी इन्वॉल्व है वहाँ पर हमें हमने उन तथ्यों को भी छात्रों के सामने बहुत साफ रखा है। मैं फिर से अभी आप लोगों के माध्यम से छात्रों से यही कहना चाहती हूँ कि एजिटेशन मोड में ही रहने से बेहतर है कि आप जो बातें हैं उनको समझें और संवाद के माध्यम से समाधान पाए।
1: इतनी है, कल घेराव की बात कर रहे हैं इतने सारे स्टूडेंट्स।
2: इसको देखिए, ये तो लोकतंत्र में चलता है, धरना प्रदर्शन विधानसभा घेराव, ये लोकतंत्र का हिस्सा है, वो इशू नहीं है। लेकिन आंदोलन हो, एजिटेशन हो, तब जब सरकार आपकी बात ना सुन रही हो, चीज़ों को समझने के लिए तैयार ना हो, आपके समाधान के प्रयास ना कर रहे हो, तो ये हमें समझ नहीं आ रहा। हो सकता है इसके पीछे बड़ी
1: ये कम्प्लीटली डेडलॉक सिचुएशन है।
2: नहीं, अब वहाँ से बच्चे यही बोल करके गए हैं कि वो अपने साथ के जो छात्र साथी हैं उनसे बात करके फिर सरकार से बात करेंगे, और हम लोग भी उनको इन्वाइट कर रहे हैं।
3: हमारी मांग है कि चूंकि यह परीक्षा प्रक्रिया दूषित है DDPL के द्वारा, तो DDPL के द्वारा जितनी भी परीक्षा है वो समस्त परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए। साथ ही साथ JSSC CGL की परीक्षा का सर का कहना है कि हम लोग एक रिटायर्ड जज्स के उसमें जो है कमिटी में हम लोग इसकी पूरी जाँच विद इन 90 डेज हम लोग इसको कराना चाहते हैं। तो हम लोग का इस पे जो है सहमति नहीं बन पाया। मैं स्पष्ट रूप से कहूँ, हमारी मांग CBI की है, हम लोग CBI जांच पे हम
4: रद्द करने की मांग थी।
3: हाँ यस सर,
4: आपकी मांग रद्द करने की थी।
3: हम लोगों ने ये भी बोला कि परीक्षा को रद्द करते हुए जो CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, जिस पे सहमति नहीं बन पाई है, यही हमारा जो है अंतिम है।
5: हम लोग की जो मांगे थी उसमें से 50% से अबव मांगों पर सरकार ने सहमति जताई है।
6: 50% कैसे एग्जैक्ट बोलो, किन किन मांगों पर? समय है तुम्हारे पास, पूरा बोलो।
5: हमारी जो मांगे थी उसमें जो है सो 14 JPSC बैकलॉग 2023, JPSC बैकलॉग 2025, ये तीनों एग्जाम को सरकार जो है सो रद्द करने पर विचार बनाई है। इसके अलावा DDPL एजेंसी द्वारा जितने भी एग्जाम ली गई है उस पर जो है सो सरकार ने CID और ED का जाँच का प्रस्ताव दिए हैं। इसके अलावा जो है सो जितने भी हम लोग का रिफॉर्म से संबंधित मैटर था उसमें लगभग सभी मैटर को सरकार ने माने हैं, कुछ एकाध को छोड़ के, जैसे एज रिलैक्सेशन को लेकर के इस पर सहमति नहीं बन पाई है।
7: And switching tracks to getting you more news, it's the BJP versus the TMC face-off that's intensified in West Bengal after an attack that took place on the convoy of Mamata Banerjee. This was during her visit to North 24 Parganas. She was visiting the family of a victim who TMC claims died in police custody. Mamata Banerjee's convoy was allegedly attacked with stones and also shoes as well as bottles. The former chief minister and TMC supremo, Mamata Banerjee, claims that she could have died in the attack if not for the windshield. But it is, of course, West Bengal's current chief minister, Suvindu Adhikari, who has blamed Mamata Banerjee, accusing her of not informing the police about that visit of hers. But he added that adequate security was, however, provided.
8: चैनल हुआ है, मेरे को गाड़ी में बड़े बड़े पत्थर मारा गया बाहर से, एंटी सोशल पुलिस का सामने में इतना गाड़ी को अटक किया। अगर हम गाड़ी का कांच शीशा खुला रखता तो हमारा माथा फट जाता, हम लोग सब मर जाता। ऐसा पुलिस का सामने में हुआ, हम कभी ऐसा हमला नहीं देखा।
9: पुलिस क्या कर रहा है, इतना
8: पुलिस पुलिस बीजेपी को प्रोटेक्शन दे रहा है।
10: ढुके जयचंद जी রকাপে মেরে দিয়েছে, বিজেপি মেরে দিয়েছে, তৃণমূলের সম্পদ। আর বাড়ির লোক বলছে যে আমার তো প্রশাসন পুলিশের উপরে স্যাটিসফাই, আমরা রহস্য উন্মোচন হোক চাই। লোকাপে ছিল সেই অবস্থায়, পিটিয়ে মেরেছেন অসুস্থ।

0: straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
1: Launch control, 0 to 100.
2: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
3: This car makes no sense, yet it makes every sense.
4: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
2: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
5: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक
6: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना प्लीज।
5: आप कहाँ से हैं?
6: हरियाणा।
5: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
6: डेढ़ महीने पे।
5: आपकी फैमिली है और बच्चे हैं?
6: 3 साल।
5: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
6: बहुत।
5: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
6: श्रीनगर तक अलाउड।
5: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है। सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आकर मसाला।
4: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है
5: कुछ इससे भी अनोखा।
4: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद पान मसाला।
6: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस।

0: TOK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज TOK।
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज POK।
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?
2: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना प्लीज।
2: आप कहाँ से हैं?
3: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
3: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
3: और
1: बच्चे हैं?
3: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
3: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
3: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल यू नो।

0: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब न बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा, सबका राजा आकर
3: मसाला। The Gift City in Gujarat stands at the heart of India's global ambition and Prime Minister Narendra Modi's vision to connect India's growth with global capital. How far has the idea progressed and what remains to be done? Finance and policy leaders weigh the challenges and map the road ahead. HSBC, a pioneer at Gift City, and NDTV present Global Connect, only on NDTV.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
2: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
1: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?

0: नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried

0: करना चाहिए ताकि गरीब बच्चे भी खरीद पाए।
1: वो कह रहे हैं कि भाई हम सीआईडी का तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करा ही रहे हैं, लोगों को हमने जेल में भी डाला है, तो प्रॉब्लम क्या है?
2: पर देखिए इससे कुछ हो नहीं रहा ना, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ रिपीट होती है। मतलब उसका यही मतलब है कि ऊपर से ही कहीं ना कहीं गड़बड़ है, नीचे से नहीं है। तो आप नीचे के एक दो को डाल दोगे, बाकी ऊपर के सारे लोग बच जाएंगे, तो ये फिर से रिपीट ही होगा और कुछ नहीं होगा।
1: सिंगल डिमांड इज अविलंब नियुक्ति दो, गिव अस आवर अपॉइंटमेंट्स, वी आर गोइंग टू सिट ऑन एन अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल विच इज एन इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक, एंड दे बेसिकली आर सेइंग दैट देयर वर दीज जॉब्स, द एग्जामिनेशंस दैट वर डन फॉर द पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज नॉट डन इन अ ट्रांसपेरेंट फैशन, एंड विच इज वाई दीज जॉब्स हैव बीन गिवन अवे टू पीपल हु पेड मनी।
3: जिस नियुक्ति प्रक्रिया में नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया गया है, उन नियुक्ति प्रक्रियाओं को हम अपूर्ण मानते हुए कैंसिल करते हैं। मतलब जिस भर्ती प्रक्रिया में आप नियुक्ति पूरा नहीं हुआ है, नियुक्ति पत्र मतलब अपॉइंटमेंट लेटर हमने नहीं दिया, इसलिए उसको हम इनकम्प्लीट मानते हुए हम कैंसिल करते हैं। और ऐसे करके उन्होंने कैंसिल कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने हाईकोर्ट का रुख किया, और हाईकोर्ट में हम लोगों ने 2021 में केस किया, और हाईकोर्ट में केस करने के बाद 4 साल केस लड़े, और 2024 में हम लोगों ने केस जीता मैडम। और केस जीतने के बाद जब हम लोग फिर जेएसएससी के पास गए कि अब तो हम लोग केस जीत करके आए हैं, तो आप हम लोग को नियुक्ति दीजिए, लेकिन फिर भी सरकार नहीं मान रही है, सरकार सोई हुई है, बहरी है, जो भी बोल।
1: तो अगर कोर्ट से आपको ऑर्डर मिल गया है तो फिर क्यों नहीं नियुक्ति मिल रही?
3: मैडम इसमें पूरा खेल घोटाला वाला है समझ लीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी पूरा तरह से पारदर्शिता थी।
4: हर चीज, हर समस्या का समाधान संवाद से होता है, लाठी गोली डंडा से नहीं होता है। लाठी गोली की आवश्यकता सीमाओं पे होती है, दुश्मनों के साथ होती है, जो देश का दुश्मन है उनके साथ होता है, देश के अंदर रहने वाले लोगों के साथ, अपने घर में लाठी डंडों के साथ। किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि नुकसान बहुत होता है। तो इसीलिए आज इस मंच से विशेषकर नौजवानों को यह संदेश देना चाहता हूं, मैं भी कोई बूढ़ा नहीं हूं साथियों, मैं भी आप ही लोगों के लगभग का स्थिति में हूं। आपकी भावनाएं, आपकी चिंताएं हमारी चिंताएं हैं। आज संवैधानिक जगह पे बैठते हुए मैं आपको ये बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि आपके साथ पारदर्शिता के साथ न्याय होगा, और न्याय होते हुए दिखने का भी काम, दिखाने का भी हम लोग काम करेंगे।
5: आप लोगों ने बहुत एफर्ट किया मैम, लेकिन उसके बाद भी क्या ऐसा हुआ, क्योंकि कल फिर एजिटेशन होगा स्टूडेंट्स का?
6: नहीं देखिए, एजिटेशन हो इससे हमारा इशू नहीं है, स्टूडेंट्स का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन क्योंकि सरकार की तरफ से प्रयास हो रहे हैं, उनके मैक्सिमम बातों को मान लिया गया जो सरकार के कैपेसिटी में है। जिन बातों में जुडिशरी इन्वॉल्व है, वहाँ पर हमें हमने उन तथ्यों को भी छात्रों के सामने बहुत साफ रखा है। मैं फिर से अभी आप लोगों के माध्यम से छात्रों से यही कहना चाहती हूँ कि एजिटेशन मोड में ही रहने से बेहतर है कि आप जो बातें हैं उनको समझें और संवाद के माध्यम से समाधान पाए।
5: इतनी है, कल घेराव की बात कर रहे हैं इतने सारे स्टूडेंट्स।
6: इसको देखिए, ये तो लोकतंत्र में चलता है, धरना प्रदर्शन, विधानसभा घेराव, ये लोकतंत्र का हिस्सा है, वो इशू नहीं है। लेकिन आंदोलन हो, एजिटेशंस हो, तब जब सरकार आपकी बात ना सुन रही हो, चीज़ों को समझने के लिए तैयार ना हो, आपके समाधान के प्रयास ना कर रहे हो, तो ये हमें समझ नहीं आ रहा। हो सकता है इसके पीछे बड़ी
5: ये कम्प्लीटली डेडलॉक सिचुएशन है।
6: नहीं, वहाँ से बच्चे यही बोल करके गए हैं कि वो अपने साथ के जो छात्र साथी हैं उनसे बात करके फिर सरकार से बात करेंगे, और हम लोग भी उनको इनवाइट कर रहे हैं।
7: हमारी मांग है कि चूंकि ये परीक्षा प्रक्रिया दूषित है TDPL के द्वारा, तो TDPL के द्वारा जितनी भी परीक्षा है वो समस्त परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए। साथ ही साथ JSSC सीजल की परीक्षा का सर का कहना है कि हम लोग एक रिटायर्ड जज्स के उसमें जो है कमिटी में हम लोग इसकी पूरी जांच विद इन 90 डेज हम लोग इसको कराना चाहते हैं, तो हम लोग का इस पे जो है सहमति नहीं बन पाया। मैं स्पष्ट रूप से कहूँ, हमारी मांग CBI की है, हम लोग CBI जांच पे हम
8: रद्द करने की मांग थी।
7: हाँ यस सर,
8: आपकी मांग रद्द करने की थी।
7: हम लोगों ने ये भी बोला कि परीक्षा को रद्द करते हुए जो CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, जिसपे सहमति नहीं बन पाई है, यही हमारा जो है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
6: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: TOK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज TOK।
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?
2: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकते आपके साथ, खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: कौन?
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल यू नो।

0: किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि नुकसान बहुत होता है। तो इसीलिए आज इस मंच से विशेषकर नौजवानों को यह संदेश देना चाहता हूं, मैं भी कोई बूढ़ा नहीं हूं साथियों, मैं भी आप ही लोगों के लगभग का स्थिति में हूं। आपकी भावनाएं, आपकी चिंताएं हमारी चिंताएं हैं। आज संवैधानिक जगह पे बैठते हुए मैं आपको ये बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि आपके साथ पारदर्शिता के साथ न्याय होगा और न्याय होते हुए दिखने का भी काम, दिखाने का भी हम लोग काम करेंगे।
1: आप लोगों ने बहुत एफर्ट किया मैम, लेकिन उसके बाद भी क्या ऐसा हुआ, क्योंकि कल फिर एजिटेशन होगा स्टूडेंट्स का?
2: नहीं देखिए, एजिटेशन हो इससे हमारा इशू नहीं है, स्टूडेंट्स का लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन क्योंकि सरकार तरफ से प्रयास हो रहे हैं, उनके मैक्सिमम बातों को मान लिया गया जो सर के कैपेसिटी में, जिन बातों में जुडिशरी इन्वॉल्व है वहाँ पर हमें हमने उन तथ्यों को भी छात्रों के सामने बहुत साफ रखा है। मैं फिर से अभी आप लोगों के माध्यम से छात्रों से यही कहना चाहती हूँ कि एजिटेशन मोड में ही रहने से बेहतर है कि आप जो बातें हैं उनको समझें और संवाद के माध्यम से समाधान पाए।
1: नहीं है, कल घेराव की बात कर रहे हैं इतने सारे स्टूडेंट्स।
2: इसको देखिए, ये तो लोकतंत्र में चलता है, धरना प्रदर्शन, विधानसभा घेराव, ये लोकतंत्र का हिस्सा है, वो इशू नहीं है। लेकिन आंदोलन हो, एजिटेशन हो, तब जब सरकार आपकी बात ना सुन रही हो, चीज़ों को समझने के लिए तैयार ना हो, आपके समाधान के प्रयास ना कर रहे हो, तो ये हमें समझ नहीं आ रहा। हो सकता है इसके पीछे बड़ी
1: ये कम्प्लीटली डेडलॉक सिचुएशन है।
2: नहीं, वहाँ से बच्चे यही बोल करके गए हैं कि वो अपने साथ के जो छात्र साथी हैं उनसे बात करके फिर सरकार से बात करेंगे, और हम लोग भी उनको इनवाइट कर रहे हैं।
3: My colleague Padmaja Joshi has been tracking all the finer developments for us on Ground Zero. She joins us live this morning with the clarity we need. Padmaja, students continue to assert that the CBI probe has become the non-negotiable issue. Tell us, what is the government's argument against a CBI investigation currently?
4: Actually, there is none. What they are saying is that we already have a CID investigation which is underway, and if anything untoward is found in that, we are willing to have the financial transactions being probed by the ED. But something very nice here, very different, what's happening, Parmeshwar, I want to point out, there are locals who come here. Now, this is the month of Savan. It is very, very auspicious time, and you've got locals who have come here after going to the temple, and they are putting a tilak with all these people who are now headed out. You know, they are going to the Vidhan Sabha, they are going for a Vidhan Sabha Gherao, and they are here, you know, putting that small tilak on the head of all of these young men before they leave this stadium. Ma'am, aapka naam kya hai?
5: Hamara naam Suman Kumari hai, aur main Ranchi se hoon, aur aaj Sombar ka din hai, maine Saban pe fasting rakha hai. Aaj hamare liye, in JPSC ke bachcho ke liye, bahut bada din hai. Aaj main subah uthte saath Bhole Baba ke paas puja karte hi, apne bhaiyon ko, apne behno ko, के तिलक दे के उन्हें मैं आंदोलन के लिए भेज रही हूँ।
4: तो क्यों, आपको क्यों लगा यहाँ आकर के आप तिलक क्यों लगा रही हैं?
5: भाई लोग जा नहीं सकते हैं, तो उनके लिए मुझे आना पड़ा, मुझे आना जरूरी था।
4: लगाइए, आप बताइए, आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजर हैं, क्या आज के दिन का महत्व है? यहाँ पर लोकल्स आकर के इस तरीके से तिलक लगा रहे हैं, क्या आज के दिन का?
6: हिंदी और इंग्लिश?
4: हिंदी में ही
6: नहीं, बिल्कुल जो है, देखिए यहाँ के जो ये आंदोलन खड़ा हुआ है, ये लोगों की भावना से जुड़ा हुआ है। अब आप इस चीज़ को यहाँ से देख सकते हैं कि लोग बिल्कुल, हमने किसी को बुलाया नहीं, खुद आ रहे हैं और वो देख रहे हैं कि भाई साहब, हमारे भाई जो आज आंदोलन के लिए, एक लड़ाई के लिए जा रहे हैं, एक तरह का ये लड़ाई है, तो एक तरह का तिलक लगा कर वो आगे आह्वान कर रहे हैं कि चलिए आप जाइए और सरकार को उस झुकाइए और अपना हक और अधिकार है उसको आप प्राप्त कीजिए। जो इसके लिए जो है ये अपना,
4: मैं देख रही हूँ यहाँ पर आपने यहाँ पे अब कुछ वॉलंटियर्स को अपना टी शर्ट भी दे रखा है, क्या कोशिश क्या है? क्योंकि आज मार्च को लेकर के काफ़ी लोगों को ये भी एक आशंका है कि कहीं कुछ वहाँ पर अनटूवर्ड ना हो जाए, वायलेंस ना हो जाए।
6: एक्चुअली हम लोग के पास इनपुट है कि कुछ लोग या कुछ पार्टी के लोग जो कि सरकार समर्थित लोग हैं, उस भीड़ में उपद्रव कर सकते हैं, तो उस भीड़ में घुसने के बाद वो दिक्कत ना करें, इसके लिए वॉलेंटियर्स का हमने 500 वॉलेंटियर्स को खड़ा किया है और उस 500 वॉलेंटियर्स को एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमने सबका डिटेल लेके रखा है।
7: अच्छा, जो तो वहाँ पे आप बारकोड स्कैन करा के उनको वॉलेंटियर
6: बिल्कुल अगर कोई ऐसे भी कोई वॉलेंटियर का टी शर्ट पहन के और उपद्रव करेगा तो वो आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं कि हमारा वॉलेंटियर ऑथेंटिक वॉलेंटियर कौन है, और इस वजह से तरह से हम लोग अपने आंदोलन को शांतिपूर्वक बिना उपद्रव के करने की तैयारी कर
7: रहे हैं। लुक एट दिस यंग मैन, ही इज गॉट दिस वॉलेंटियर वाली इन्होंने टी शर्ट पहन रखी है। सो a few about 500 of these t-shirts, it's quite, you know, and it's a very small scale. So what you had seen in other parts of the country, literally these men are going there in these autos and tempos, they are getting into these autos and they are going towards the Vidhan Sabha hoping that they are finally going to get the government to agree to all of their demands. Aap jaldi se apna naam bataiye.
8: Mera naam Jitendra Kumar hai aur main Kodarma district se hu.
7: क्यों आए हैं जितेंद्र यहाँ?
8: देखिए, हम सभी छात्राओं की जो मांग है, अभी तक झारखंड बने हुए 26 साल हो गए और हम सभी छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है झारखंड सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उसी को देखते हुए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन का 17वां दिन है और आज हम लोग का विधानसभा घेराव है। और
7: अगर CBI की मांग नहीं मानी सरकार ने, फिर क्या करोगे?
8: देखिए, CBI अभी तो 50% बात को माना गया है और गवर्नमेंट से आशा करते हैं कि हमारी जो आधी अधूरी मांग है उसको भी माना जाएगा,
7: क्योंकि हमको देश में जो लोग देख रहे हैं बाकी हिस्सों में क्या बोलेंगे?
8: देखिए, देश में सभी लोग जो छात्र छात्राएं देख रहे हैं, मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से कि हम सभी छात्र अपने हक के लिए कभी भी अपने हक की लड़ाई के लिए पीछे ना रहें। हम अपने अधिकारों को अच्छी तरह से जानते हैं और हम इस छात्र जो छात्र हैं, युवा हैं, इस देश के भविष्य हैं, और यदि हम अब पीछे रहेंगे, गवर्नमेंट को मुंह तोड़ जवाब देने का काम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा?
7: Look, Parmeshwar, many, many shades of Gen Z since the whole country is talking about it. These young men and women are also Gen Z. They do not have a lot of resources. They do not have huge platforms. They are literally going inside autos and tempos with the tricolor in hand in the hope that their future is going to be secure and the kind of irregularities that is seen in the allocation is jobs in somehow stop. That is all the very basic demand that they are putting forth.
3: As always, Padmaja, thank you so much for bringing us the voices from Ground Zero. We will, of course, continue to revert to you for regular updates. All right, 4 working days remain in the monsoon session. And today you could actually tell us what the government is really prioritizing before Parliament wraps up, with several consequential pieces of legislation still hanging in the balance. The Lok Sabha Business Advisory Committee will meet this afternoon at 1 p.m. with the proposed FCRA bill expected to figure in the meeting. Official details on the government's legislative plan are likely to emerge after this meeting. The India Bloc, meanwhile, is set to meet at 10 a.m. this morning in Parliament to chalk out its strategy for the final week of this session. And the opposition will also hold a protest at 10:30 a.m. This is the Congress is preparing for a fresh showdown, fearing that proposed changes in the FCRA bill could affect Christian-run educational, healthcare, and welfare organizations across our country. Here are the crucial reactions you need to listen to.
9: मैं तो आया नहीं,
10: एजेंडे में नहीं आया है और इसी हफ्ते में सोच रहे हैं कि लेकर,
9: लेकिन अगर ये लेकर आएंगे तो उसका विरोध होगा। देखिए, ये हर चीज के ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहते हैं।
11: कब आएगा कौन जानता है। पहले तो वो लोग बोलते थे कि वो ये लाएंगे, क्या डेलिमिटेशन लाएंगे, लेकिन वो देखा कि उसको नंबर नहीं है तो अब ये दूसरा छोटा मोटा बिल ला रहे हैं। FCRA लाने का हिम्मत उसको नहीं है।
12: We oppose it as of now, as it stands now, we oppose it because it is strangling the NGOs who are doing good work and also killing the minority institutions who is doing great service. So, and the opposition should be taken into confidence before bringing in anything, and the government do not take any such proactive measures to take opposition into confidence regarding this bill or any other.
13: I mean, if FCRA is to come, this is something which my party will support. In my opinion, FCRA is a bill which came, the some regulation for foreign NGOs which receive foreign funding in India. This has been around since 1976. 2010 was when the UPA government brought an amendment in. And from time to time, every government, based on the prevalent situation in the world, based on the prevalent situation in India, based on the fact that there are many NGOs registered in the country, has to take and has to amend. So I don't think that anyone should politicize this. I don't think this has anything to do with religion. This has nothing to do with politicization.
3: My colleague Akhilesh has been tracking the nitty-gritties for us. He joins us live to take us through the plan of action for the day. Akhilesh, four bills listed for the day, with the immediate flashpoint being the proposed FCRA bill and that crucial Lok Sabha bill.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास सुबह।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा, सबका
6: राजा आर्टियर मसाला।
7: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं
2: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओ

0: stating that the state song must be sung first at all public events, universities and government offices across the state. Karnataka Chief Minister D.K. Shivkumar holds a 1.5 hour long meeting with AICC President Mallikarjun Kharge, discusses ministerial aspirants and growing disgruntled.
1: वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी उस मैप पर नजर जाना, मैं सच बताता हूँ, लंबे समय तक लोगों को याद।
2: 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी। वो फाइट तो मैं जीत गया और फिर वो मेरे को बोला कि मतलब भाईजान आपका नाम नरेंद्र है, आपके कोच का नाम नरेंद्र है, आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है, तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है।
1: मेरे यहाँ मुझे यहाँ लगभग 12-13 साल हो गए इसी मकान में। अगर मैंने रेगुलरली और हर बार किसी को रिसीव किया है, किसी को मैं मिला हूँ, तो खिलाड़ी है। पिछले 10-12 सालों के आप लोगों के पुरुषार्थ के कारण, भारत को लगातार विजय दिलाने के आपके प्रयासों के कारण और उत्तरोत्तर सफलता में नई ऊंचाइयां पार करने की परंपरा के कारण, जो काम शायद हम स्कूलों में जाके कहें कि नहीं नहीं वे खेलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो काम स्कूलों में जाकर के हम कर सकते थे, उससे ज्यादा आपका मेडल उनको इंस्पायर करता है। तुमने मुझे वादा किया था पिछली बार कि तुम्हारी दोनों बेटियां खिलाड़ी बन जाएगी।
3: हाँ जी, अभी वे उम्र की छोटी है, अगले कॉमनवेल्थ में एक घर में 3 मेडल ला के दिखाएंगे।
1: पक्का?
4: जब मैं दौड़ रहा था, जब मेरा इवेंट था 29 को, तो उस दिन गुरु पूर्णिमा थी, तो उस दिन मेरे गुरु को मैंने गिफ्ट दे दिया।
1: बड़ी शान बढ़ाई आपने, इतने आंसू टपक रहे थे, मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा है।
5: मैं बहुत ज्यादा खुशी थी, इमोशनल भी थे उसी दिन, खुशी ज्यादा था। और मैं इसलिए रोई थी कि मेरा पेरिस ओलंपिक में मेरे 1 kg में मेडल रह गई थी। और एक प्लेयर्स की लाइफ में क्या क्या हमको फेस करना पड़ते हैं, तो ये 4 साल के अंदर मैं कितना क्या क्या कुछ मैंने फेस किया था। हर टाइम इंजरी ही चल रहे थे और फैमिली प्रॉब्लम वो सब हो रहा था, तो बहुत मुश्किल से मैं ये 4 साल फेस किया था। तो वो सब जब पोडियम में जब मैं खड़ी थी सर, और हमारी जो फ्लैग ऊपर जाते हैं और हमारे नेशनल एंथम जब बजते हैं, तो सर हम रुक नहीं सकते सर, अपना आप आंसू निकलते हैं। वो
1: बहुत बहुत बढ़िया। आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है।
6: सब डर रहे थे हमसे कि इंडिया के साथ फाइट आ गई, अब तो हम पहली फाइट ही हार जाएंगे, हमारा मेडल भी नहीं आएगा।
1: यानी मान के चलते हैं।
6: हाँ सर।
1: क्या हुआ, वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी?
7: हम लोगों का तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, लास्ट डे था और सब जीत के गए थे और पूरा इंडिया के लोग थे, तो थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा था। तो मैंने उनको अच्छे से बोला, रिक्वेस्ट किया था सर, फिर उन्होंने मान भी लिया, अभी चेंज भी हो गया सर।
1: इस विजय की परिस्थिति, खुशी आनंद अपने साथियों के साथ और गेम पूरे हो चुके हैं, तो हंसी मजाक मस्ती का मूड, ऐसे समय उस मैप पर नजर जाना और उसको रजिस्टर करना और तुरंत सिर्फ मेडल लेते समय देश खड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं, भीतर से देश का भाव, मैं सच बताता हूँ, ये वीडियो सामान्य नहीं है, आपका लंबे समय तक लोगों को याद रहे। ये बॉक्सिंग वालों से भी दुनिया के खिलाड़ी अब डरने लगे हैं?
7: जरूर सर, पूरे सभी डरे हुए थे, एक के बाद एक गोल्ड मेडल आ रहे थे और मतलब पूरा लास्ट में ऐसे धमाका जैसा हो गया बिल्कुल। जिस तरीके से हम लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, हमें बैक टू बैक कंपटीशन मिल रहा है, वो एक बहुत बड़ी बात है। और हमारे जितने भी यंग एथलीट है, वो लोग सभी जैसे खेलो इंडिया स्कीम से आए हुए हैं और ये एक बहुत बड़ा चेंजेस ला रहा है पूरे स्पोर्ट्स में ही।
1: अगर आप लोग खेलो इंडिया को की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा विद्यार्थी, एक छोटा नौजवान, छोटा खिलाड़ी खेलता है। ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है, बहुत मेडल लाने हैं। करगिल विजय दिवस पर किसकी विजय हुई थी?
8: उस दिन कारगिल डे था वैसे, और जिस दिन मैंने पाकिस्तान के साथ फाइट किया था सर, वो उसी दिन का था। तो मैं एक इंडियन आर्मी से हूँ, तो मैंने उस दिन मैं पहले से बहुत वो था कि सर पाकिस्तान को हराना है, तो मैंने वो काम पाकिस्तान एक तरफा मैंने 5-0 से हराया। तो मैंने हमारा इंडियन आर्मी का कारगिल हीरोज को मैंने डेडिकेट किया था सर।
1: आपको ये याद रहना, और आप स्वयं फौज से हैं, तो मैं जरूर मानता हूं कि देश के वीर जवानों को आपने जो भाव प्रकट किया ना कि मैं करगिल के विजेताओं को मेरा मेडल समर्पित करता हूं, उसने उस विजय पर 4 चांद लगा दिए और जिसको पराजित करना था उसी को किया आपने।
2: वो पाकिस्तान की बात चल रही, मुझे किस्सा याद आ गया सर। 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी, और वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे तो मिलिट्री वाले को फोन आया कि भी पाकिस्तान से नहीं आना है। तो फिर मैं फर्स्ट राउंड 4-1 से जीत गया, सेकंड राउंड 3-2 से जीत गया, पर दोनों के सर लग गए आपस में, तो दोनों के लग गए कट। वो फाइट तो मैं जीत गया। उसके बाद फिर दोनों चले गए हॉस्पिटल में टाके लगवाने के लिए। फिर 2014 में आप फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री जी मिले थे, और जो हमारे साथ आर्मी का कोच गया हुआ था उसका नाम नरेंद्र राणा था, और फिर वो कई देर तक सोच के मेरे को बोला कि भाईजान एक बात बोलूँ। वहाँ बोलो, बोला भाईजान आपका नाम नरेंद्र है, आपके कोच का नाम नरेंद्र है, आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है, तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है।
1: सिर्फ आपने मेडल की संख्या बढ़ाई ऐसा नहीं है, आपने एक पीढ़ी को तैयार किया।
6: मेरे मन में भी धक धक धक धक हो रहा है।
1: आप चिंता मत कीजिए।
6: पर
1: आप जाए तो आपको बोलने में भी मेडल मिलने वाला है।
6: मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी ने बोला था कि मैं उनको कुछ बोलती थी, भाई ये तुम्हारे अच्छे के लिए तुम करो, तो अक्सर मुझे वो बोलते थे कि तू के मोदी तो मिल रही है। हरियाणवी में बोल देते हैं सर कि क्या तुम मोदी से मिली हुई है कि तेरी बात माने। तो आज मैं आपसे मिली हूँ सर, मैं उनको बोल पाऊंगी कि हाँ मैं मोदी जी से मिली हूँ।
9: कॉमन गेम्स में मेडल, सिल्वर मेडल जीता, फिर मैंने क्रेडिट साहब को दिया। सपना तो था एक बार मेडल जीत के लेके आने के लिए, बट ट्रेनिंग का सेंटर नहीं था। मैंने साई आने के बाद मैं बहुत ट्रेनिंग करके मेडल जीत पा रहा, इसलिए बहुत खुशी जी मैंने सर को क्रेडिट दिया था, क्योंकि बहुत इम्प्रूव हुआ।
1: मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान का विषय है, मेहनत आपने की और मुझे याद किया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ दोस्त। वाराणसी में खेल तुम प्रैक्टिस कर रही थी ना?
10: जी सर। बहुत
1: कैसा बना स्टेडियम?
10: सर अच्छा बना है। वहाँ पे मैं 10-12 दिन के लिए ट्रेनिंग करने गई थी, क्योंकि मैं मंदिर गई थी तो वहाँ पे ही ट्रेनिंग करके आई थी, और मैं वहाँ पे मतलब सेटल भी होना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे काशी विश्वनाथ बहुत अच्छा लगता है सर।
1: भोपाल में ट्रेनिंग कर रही थी
10: जी सर। 2008
1: उज्जैन जाते थे कि नहीं?
10: जी सर उज्जैन भी गई थी सर।
1: अच्छा, महाकाल के पास भी गई?
10: जी सर।
1: काशी विश्वनाथ के पास हुआ ही एक बार? जी सर। सावन महीना तो अभी है,
10: वहाँ घर जाके फिर उसके बाद जाऊंगी सर।
1: ठीक है।
10: साई ने भी सर बहुत सपोर्ट किया है मुझे, इसके कारण ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ सर। और मैं खेलो इंडिया स्कीम में भी थी। 2018 में जो फर्स्ट खेलो इंडिया हुआ था उसमें मेरा सिल्वर मेडल था, वहाँ पे भी मैंने आपको देखा था ओपनिंग सेरेमनी में, तो उसमें मेरा मेडल था, तो मेरे को स्कीम भी मिल गया और मैं यहाँ तक पहुंची हूँ सर।
1: स्पोर्ट्स व्यवस्था एक बात है, लेकिन देश मेडल तब प्राप्त करता है जब देश में स्पोर्ट्स कल्चर बनता है। दोस्तों आपने बहुत बड़ा काम किया है, देश का नाम रोशन किया है, आपको मैं बहुत बधाई देता हूं, और आप विश्वास कीजिए आगे भी आप विजयी होंगे, और फिर से एक बार यहीं पर हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये लगातार तीसरी बार देश को मेडल दिलवाया है, बहुत आशीर्वाद बेटा।
11: और थैंक यू सो मच, मैं सर के हाथ से मिला था, बर्थडे था तो आज
1: बहुत बधाई।

0: multiple exams, their results being tainted. You've got about 100 vacancies coming out, and all the jobs are being taken up by people, they allege. The students say these jobs are taken up by people from outside the state because they are being sold off by those who have got deep roots within the government, who somehow are connected to the government. That is the apprehension. And which is why, even as one group of students is marching towards the Legislative Assembly, this dharna, which has continued for a week now, they have been without any food for a week now, and surprisingly very, very low-key. Look at the visuals, look at the images over here. You've got the constitution that gets brandished very frequently by our politicians. You've got these two sisters who have come along with their two brothers. They are sitting here on a fast until death. You've got a young girl who is sitting here preparing for the last 10 years, sitting in Ranchi. She doesn't have a mother, but her father is supporting her, and now she just feels that she cannot go back home because this was supposed to be her ticket to freedom. She was supposed to go out and getting a government job, the only woman, the only person in her family to be able to get a government job was her ticket to freedom. And you've got people from outside the state also who are coming and joining in. Somebody has come from Bihar, somebody has come walking. Aap kidhar se aaye hain yahan samarthan?
1: Ramgarh se aaye hain.
0: Aur paidal aaye hain. Kyun?
1: Isliye chhatron ke samarthan mein aaye hain kyunki agar abhi apni awaaz ko nahi utha payenge to kab utha payenge. Main khud student hu JPSC ka.
0: क्या उम्मीद है अगर ये नहीं होता है जिस तरीके से ये ट्रांसपेरेंसी की मांग कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि खुद का भविष्य भी आपको अंधेरा दिख रहा है?
1: जी मैम, भविष्य तो अंधेरा दिख ही रहा है और इसीलिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और जहाँ तक उम्मीद है सरकार हमारी बातों को मानेगी, सुनेगी, जानेगी. और आज तो जिस तरह का घेराव है, तो मैम एक बात में ये बोलना चाह रहा हूँ कि आज का ये घेराव सिर्फ विधानसभा का घेराव नहीं है, आज का ये घेराव सरकार के अहंकार का घेराव है, आज का यह घेराव छात्रों पे हो रहे अन्याय का घेराव है.
0: And if you see the kind of symbolism that is present over here, you know, again and again, there have been attempts to try and project this as a political front. And that is something that the students here react very strongly to. So this, you will see a representation across gender. You will see young women here. You will see young men here. You will see it happening across castes, irrespective of what mainstream politicians tell you. This is not about any one organization or a political party. You'll have people across religion sitting here, people from different parts of Jharkhand sitting here, because the desperation is so visceral for them. This is their only means of getting a ticket out of where they live right now. It's their only means of livelihood. Umme Hani is a young girl who's come here along with her two brothers and one sister. These two young girls are holding up a copy of the constitution. Samvidhan ka aapka kya matlab hai aur samvidhan Bharat ka kyu haath mein aaj raha hai?
2: जी बिल्कुल, क्योंकि आज हमें जो अधिकार मिला है यहाँ पे धरना प्रदर्शन का, ये अधिकार भी हमें संविधान ने दिया है. मैं बता दूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे, पॉलिटिकल पार्टी के भी लोग थे और प्रशासन भी खुद, वो हमें रोक रही थी यहाँ पे, जैसे हमें यहाँ टेंट बनाने की इजाज़त नहीं दे रही थी और भी कई चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर सुविधाएँ नहीं दी जा रही थी. तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये तो गलत हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि ये अधिकार, जब मैं यहाँ बात करूँ भारतीय न्याय संहिता 163, जब यहाँ पे धारा 144 लागू नहीं है, तो आप हमें क्यों रोक सकते हो?
0: आपने देखा होगा कटीले तार लगा दिए गए हैं विधानसभा के आसपास.
2: जी बिल्कुल, लगाए गए हैं क्योंकि सरकार को भी पता है वो दबाव में है, क्योंकि स्टूडेंट्स इस बार छोड़ेंगे नहीं, वो लोग उमड़ करके सामने आएंगे, क्योंकि इस बार जो हमारी जंग है ना, वो सत्ता के लिए नहीं है, सिस्टम के विरुद्ध है. और उन्हें खुद पता है कि सिस्टम के साथ उन्होंने कितना खिलवाड़ किया है. इसलिए बच्चे हमारे 24 डिस्ट्रिक्ट से, एक डिस्ट्रिक्ट से 50,000 स्टूडेंट्स आएंगे, 10 लाख की यहाँ पे भीड़ होगी, और आज दिखा देंगे स्टूडेंट्स की पावर क्या होती है, जेनजी की पावर क्या होती है.
0: जेनजी का आपने जिक्र किया, आप भी खुद को जेनजी मानती?
3: जी बिल्कुल.
0: झारखंड का जेनजी क्या चाहता?
3: जी हमें सिस्टम में रिफॉर्म चाहिए. हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई सिस्टम से है. तो और इसमें जो भी हमारी तकलीफ है, सारा निवारण माननीय मुख्यमंत्री जी ही कर सकते हैं, क्योंकि वास्तविक शक्ति उनके हाथों में ही है. तो इसलिए हमारी सारी डिमांड उनसे ही है. तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे भावनाओं को समझें, हमारी ज़रूरतों को समझें, और मजबूरियों का हल आप ही के पास है, तो आप इनका निवारण करें.
0: मजबूरी, अहंकार, ऑन द वन साइड देर इज़ प्राइड, ऑन द अदर देर इज़ अ डेस्परेशन वेयर पीपल से दैट वी are fighting for this because this is the only way we think we can survive and thrive. And again and again, you know, many people are saying that when you talk about the

0: News just coming in after meeting with the Prime Minister Narendra Modi. NCP SP faction MPs have sought a Bharat Ratna for Maharashtra icons. MPs of the Sharad Pawar-led NCP faction met with the Prime Minister Modi in Parliament as part of a delegation that had sought an appointment to raise issues concerning Maharashtra. After the meeting, the party's MPs demanded that the Bharat Ratna be conferred on four eminent personalities from Maharashtra. The leaders propose India's highest civilian honour for four of them, including Jyotirao Phule, Savitribai Phule, as well as Annabhau Sathe and Tukadoji Maharaj.
1: आपकी जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं या फिर कई सारी ऐसी जो पार्टीज़ हैं वो ये कहना चाह रहे हैं इस मुलाकात का कुछ और मतलब भी निकाला जा रहा है, इसे कैसे देखते हैं आप और उन लोगों की जो स्टेटमेंट है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
2: इन्हों भी समझना चाहिए कि हम उसके अंदर ही जो पूरा हंगामा मचाते हैं, जो भी अपोजिशन के साथ हम पूरी ताकत के साथ खड़े हैं, तो अपोजिशन वाले को भी समझना चाहिए कि ऐसा एलिगेशन करना, अगर ये प्राइम मिनिस्टर है, हम यहाँ लोग हैं, हमारा पार्टी का ताकत यहाँ है, तो हम मिलना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि भाई हमारे महाराष्ट्र के अंदर ऐसा ऐसा है। अभी कोई इनका भी जो भी अपोजिशन वाले हैं उनके भी कॉन्स्टिट्यूट में मराठवाड़ा के अंदर उनका भी आता है, तो इनको ज़रूरत नहीं क्या? पानी नहीं है हमारे इधर, पानी नहीं है तो पानी के लिए अगर कुछ अलग सा निधि हमें यहाँ से मिल सकता है तो कोशिश करना चाहिए, और ऐसा फॉर्मली भेंट है, ऐसा कुछ दूसरा रीजन नहीं है और पॉलिटिकली तो बिल्कुल नहीं है।
3: लगता है कि महाराष्ट्र के विकास के लिए अगर मोदी जी को शरद पवार जी के पार्टी के सांसद मिल रहे हैं तो मुझे लगता है उनको लगता है कि और प्रगति हमारे महाराष्ट्र की होनी चाहिए, तो उसके लिए मिलना कोई बुरी बात तो नहीं है। कयास तो कुछ भी लगाया जा सकता है अभी, और मुझे लगता है हर कयास अच्छा ही होगा महाराष्ट्र के लिए। अगर वो कुछ सोच भी रहे हैं तो इससे बड़ी अच्छी बात हो ही नहीं सकती है कि महाराष्ट्र के विकास के लिए अगर जाकर मोदी जी को मिलते हैं, विनंती करते हैं, और जो आप लोग सोच रहे हैं अगर वो हो जाता है तो महाराष्ट्र की और उनके क्षेत्र की नसीब होगी।
0: ऐश्वर्या जैन नाउ जॉइंस मी लाइव। ऐश्वर्या, दिस इज द सेकंड मीटिंग बिटवीन शरद पवार, सुप्रिया सुले एंड द प्राइम मिनिस्टर इन परहैप्स 3 weeks। व्हाइल द ऑफिशियल लाइन हियर इज दैट दे स्पोक ऑन ऑल थिंग्स महाराष्ट्र गिवन द डीलिमिटेशन बिल एंड द सपोर्ट दैट द एनडीए इज सीकिंग, व्हाट्स द इनसाइड ट्रैक ऑन दिस मीटिंग दैट यू कैन शेयर विद अस?
4: Well, the meeting between the Prime Minister and the MPs from the Sharad Pawar faction has concluded now, and the meeting lasted for approximately half an hour is what we've been told. The sources present in the meeting, perhaps the NCP Sharad Pawar faction MPs who met for the second time with the Prime Minister earlier, it was Supriya Sule and Sharad Pawar who met Prime Minister Narendra Modi and spoken about the development issue of Maharashtra and also the agrarian crisis that Maharashtra is currently facing. The MP clearly raised concerns regarding the drought and irrigation issues in Maharashtra with the Prime Minister. The MPs also presented other issues concerning their respective constituencies to the Prime Minister as well. A demand was made in front of the Prime Minister to confer Bharat Ratna upon Mahatma Jyotibai Phule, Savitribai Phule, Shashir Annabhau Sathe and others, prominent leaders coming in from the state of Maharashtra. There were another concern that was raised by the MPs from the Sharad Pawar faction to rename the Navi Mumbai airport to D.Y. Patil airport as well, and that memorandum will be submitted. Now, this has come at a time when there has been huge murmurs that are going on as far as the NCP Sharad Pawar faction coming alongside with the NCP Ajit Pawar faction. It is of course the government which is reaching out to the Sharad Pawar faction as well to seek the support as far as the delimitation bill that the government is planning to bring in upcoming few days or in the next session of the parliament. So certainly this comes at a very important time as Bharatiya Janata Party leaders have clearly welcomed this particular meeting with the Prime Minister. How it goes on and whether any political scenario will change in the state of Maharashtra after this meeting would be very interesting to see.
0: All right, all eyes will be on what more we can share with our viewers in moments from now on this meeting that has taken place. Ashwarya bringing you the inside track. This is the second meeting that Sharad Pawar and Supriya Sule have had with the Prime Minister in about 3 weeks. We're now taking you live to the protests that are taking place in Ranchi. This has to do with the Jharkhand student protests. They've hit the streets for a while now today, and this is against the Soren government. The talks have failed and the students have taken to the streets. From the protest site, they are now walking towards the power center, which is the state assembly. They're demanding answers from the Soren government. Remember, the BJP also protested outside the chief minister's residence, and the students are demanding accountability from the chief minister.

0: some people in a crowd act up. There is no controlling it. And which is the attempt right now? If you see, the people who are standing on top of the barricades, they are saying, do not let things get out of hand. At this point, if you start pelting stones at the police, it's only going to go downhill from there. Look at all around us. Right from the barricades to the sides of the road, there are people everywhere right now. And these are local crowds, people who have marched so far from the old Vidhan Sabha building, trying to get to the new Vidhan Sabha. They have been lathi charged, they have faced a water cannon, and right now they are standing behind this set of barricades, still holding up the JPSC poster and sloganeering. I want to quickly talk to this one gentleman here. Bhaiya, aapka naam?
1: Mera naam Sanjay Mahato aur hum Hazaribagh se aaye hue hain. Hum JPSC ke chhatra hain.
0: आपको लाठी लगी?
1: लाठी पूरा पैर से माथा तक, माथा तोड़ दिया बड़ा, देखिए इतना बड़ा माल, इतना जोरदार लाठी था कि मेरा सर पूरा फट गया है।
0: सारी आप कहाँ?
1: हम यहीं थे, यहीं पीछे थे, और लाठी चार्ज स्टार्ट कर दी और पूरा इतना बेरहम नहीं मारना चाहिए, इतना निरंकुश सरकार नहीं होना चाहिए कि झारखंडी छात्र को लाठी से मतलब मारना चाहिए।
0: और आपने तो कहा था कि आप यहाँ पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, शांतिपूर्वक करेंगे।
1: ये पीसफुल ही थी, हम लोग कुछ नहीं बोलिए किसी को, आज एक हम लोग हाथ चलाए हैं और ढेला फेंके या किसी तरह से गाली दिए हैं। हम लोग शांतिपूर्ण विधानसभा जा रहे थे मार्च करते हुए, और हम लोग को विधानसभा पहुंचे भी नहीं दिया और हम लोग को मार के यही सर माथा।
0: ये आपके क्या खून लगा हुआ है?
1: खून लगा हुआ देख लीजिए आप,
0: पूरा क्या आपके आपके ये? Alright, so he's showing, he's got a blood-stained cap here.
1: पूरा देखिए, ये बलर देखिए, मेरा शर्ट देखिए, शर्ट से पूरा बांधे हुए थे। और इस तरह से अगर खंडी छात्र अगर प्रशासन मारेगी तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग मर जाए, हम लोग को हक अधिकार ना चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए। बताइए हमें सोरेन, तुम झारखंडी है कि नहीं है? बाहरियों के दबाव से तुम हम लोग को बर्बाद कर देगा क्या? 26 वर्ष हो गया झारखंड का, लेकिन यहाँ तक नौकरी नहीं कर पाए यहाँ के व्यवस्था के चलते। बताइए हम लोग क्या करें?
0: आपका नाम फिर से बताइए।
1: मेरा नाम संजय मातो, हम हजारीबाग से हैं।
0: आप खुद जो है एक आदिवासी समुदाय से?
1: नहीं नहीं, हम कुरु मातो समुदाय से हैं।
0: आप मुख्यमंत्री को क्या कहेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं हम सारी मांगे मान रहे हैं?
1: वो निरंकुश सरकार है, वो कहाँ बात मान रही है? हम लोग शांतिपूर्ण चार पांच बार हम लोग वो वार्ता किए, लेकिन हम शहीद हो जाएंगे, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। अब हम रुकने वाले नहीं।
0: ऑलराइट, सो यू गॉट एट लीस्ट वन पर्सन हियर हु सेज दैट ही हैज बीन लाठी चार्ज एंड ही इज ब्लीडिंग। यू सॉ हिज ब्लड सोक कैप ओवर देयर। एंड अगेन इट्स टू साइड्स ऑफ द स्टोरी। द स्टूडेंट्स हियर अगेन हैव टेकन अप the tricolor in their hand and they are saying, Vedika, that we were advancing in a peaceful fashion and we were lathi charged at that point. This gentleman you just heard shows evidence of how he was lathi charged. You've seen one person being led away earlier in the ambulance when he was on drip, and he also says that the lathi charge started suddenly and he went completely breathless in the melee that followed. If I can just step up for a second and show you what's happening right now. Okay, so you've got one of the protesters who has taken up a loudhailer and he's telling everyone to step back. And the rest of the people who are over here, let me quickly try and speak. If you can still hear me, let me quickly try and speak to one of the young men over here. आपका नाम?
2: यस,
3: चंडी तिवारी मैम नाम है मेरा।
0: चंडी बताइए क्या हुआ?
3: जितना जुल्म सरकार कर रहा है मैम, करने दीजिए, उतना हम लोग को सहने के ताकत मजबूत मिल रहा है, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए। अगर हम न जीते तो झारखंड का भविष्य मर जाएगा। सभी पुलिस वालों को बोलते हैं हम न जीते, इन लोग हट जाओ यार, और जब ड्यूटी अपना निभाओ, हम लोग जीत रहे बोले, आप लोग भविष्य को अंधकार कर रहे हैं, इसलिए हट जाइए आप लोग, हट जाइए आप लोग।
4: हम लोग पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं,
3: हम लोग को लाठी चार्ज किया गया। ये सरकार को शर्म नहीं आ रहा?
4: आप फेंसिंग क्यों लगा?
3: जिस तरह से झारखंड सरकार, झारखंड पुलिस द्वारा हमारे पे लाठियां चार्ज की गई, क्या हम आतंकवादी हैं? क्या हम देशद्रोही हैं? ऐसे तो आतंकवादी और देशद्रोहियों के साथ सरकार को बोलना चाहते हैं, वो कितना भी बल प्रयोग कर ले, हमारा आत्मविश्वास

0: आप लाठीचार्ज कीजिए।
1: पर आपने कहा था कि यहाँ पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन होगा, ये क्यों?
0: हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग पुलिस पर कोई पता हम लोग ना पुलिस को गाली दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं, फिर भी ये पुलिस क्या काम कर रहा है ये सोचे अपने आप में। बहुत सर
1: मीडिया आप क्या कह रहे हैं, पुलिस को क्यों कह रहे हैं?
0: नहीं भाई, अगर आप पर लाठीचार्ज करेंगे क्या करेंगे?
2: एक
0: अपना भी कुछ है, हम लोग को जो पीटा गया है आप देखें, पीसफुल है, पीसफुल है।
1: चंडी आप कह रहे हो कब शुरू, कब हुआ ये? पत्थर फेंक रहे हैं वहाँ से।
0: हम लोग शांति प्रिय आंदोलन कर रहे थे मैम, हम लोग ने कोई ऐसा चीज नहीं किया जिससे ये शांति भंग हो। पुलिस वाले ने पहले चार्ज किया और हम लोग को दबाव बनाया गया कि ये स्टूडेंट कुछ उद्धार करे, पुलिस का दोष है ये, पुलिस चाहता है कि हम लोग कुछ गलत करे लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे।
3: हम लोग का सिर्फ एक मांग था कि हम लोग विधानसभा तक शांतिपूर्ण मार्च पहुँचने के प्रयास कर रहे हैं लेकिन मिल रही है।
1: आपको लाठी पड़ी
3: जी को पड़ी है,
4: मैं पूछ रहा हूँ कि हम लोग पाकिस्तानी है कि बांग्लादेशी है, फेंसिंग क्यों लगाए? आप क्यों लगाए? वो बॉर्डर पे लगता है कि देश के अंदर लगता है? तीन लाठी हमको पड़ा है, यहाँ लगा हुआ है, अगर शर्ट खोलेंगे तो आपको दिखेगा, तीन लाठी मारा गया हमको।
3: हम लोग सरकार फेंसिंग
1: एज वी स्पीक यू सी द पुलिस पुलिंग अवे द प्रोटेस्टर्स फ्रॉम द बैरिकेड। This is literally the last point before they can reach the Vidhan Sabha Vedika, and now they are pulled away from the barricades, from the back. If you can just focus over here, the cops there are pulling them away from the barricades, and the allegation is that the protest was marching on while they were progressing peacefully, suddenly the lathi charge started from nowhere. That is what half a dozen people who are over here who have complained of being lathi charged. The water cannon was deployed before that, and now I just want to point to you again the tricolor that is back up and all the symbolism that we have seen, perhaps we did not see in Delhi, but you have Baba Saheb Ambedkar, you've got the tricolor, you've got Birsa Munda, you've even got Guruji Shibu Soren, who is being commemorated over here through his posters, and most of the people who are over here are saying, we are people of this land, we fought for Jal Jangal Zameen. When it came to statehood, we were here fighting, and now why are we being demonized as some kind of villains? So you can hear, I don't know if you can hear this, but there are
5: chants
1: of Bharat Mata Ki Jai again from the crowd. There are chants going up again, and the tricolor are up. I think what is being done right now, Vedika, is that this is an attempt to try and settle things down. I just would request Ashwini to focus on that. This one man there standing on somebody's shoulder with Bharat Ka Samvidhan. He's holding up the Constitution of India and they're saying we are here for Bharat Ka Samvidhan. So right from the tricolor to the Indian Constitution to a picture of Bhagat Singh, the message is very clear that they are here to ask for the rights and to allow the voice that has been suppressed for many, many decades. And like we've been saying, this is not about a symbolic or an ideological protest, Vedika. This is about fighting for your livelihood. The people that you will meet over here, some of them that we've been speaking to, they live in one room, five of them. For 10 years, they have lived in one room in Ranchi to prepare for their entrance examinations. They have, many of them, single parents. Most of them, they keep saying, hum kisan ke bachche hain, hum mazdoor ke bachche hain. They earn about 15 to 20,000 rupees per month. And from that, their parents send them 5,000 rupees. Many of them did not even say they are participating in an agitation because they came away in the hope that one day they would be able to lift their family out of poverty. They would be able to help their family do better and get a government job. That was their ticket to a better life. So if you have a young woman, she said, don't marry me off right now. I want to get a government job and I'll ensure my younger brothers and sisters also do better in life. And that is why when that is denied to them, this is what you see happening. Some young people here again have managed to cross over with the tricolor. Let's try and speak to them. Aap kidhar?
2: Hum Lalpur, Panamu.
1: Kyun aaye ho yahan?
2: यहाँ पे जीएससी सीजीएल रद्द होना चाहिए. झारखंड में आज तक मैम 25 साल हो गया, झारखंड अलग राज्य बने हुए, लेकिन आज तक कोई फेयर एग्जाम नहीं हुआ.
1: नाम क्या है?
2: मेरा नीरज कुमार.
1: नीरज?
2: नीरज, नीरज,
1: नीरज. नीरज, क्यों जेएसएससी क्यों जरूरी है?
2: जेएसएससी मैम इसलिए कि युवाओं को, अगर कोई गरीब आदमी है, कोई मीडियम फैमिली है, नौकरी के अलावा हम लोग 5 साल 7 साल से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन
1: आपने एग्जाम दिया है, अपने बारे में
2: जेएससी सीजीएल दिए हैं, वो भी दिए हैं, जेपीएससी पीटी भी दिए, जेपीएससी बैकलॉग भी दिए हैं.
1: क्यों दिए हैं? ये नौकरी आपके लिए क्यों जरूरी है?
2: हमारे घर के आर्थिक जरूरत को पूरा करने के लिए, हमारे घर को आगे बढ़ाने के लिए एक नौकरी जरूरी है. हमारे अपने पैर पे खड़ा होना जरूरी है, जो कि अगर ऐसे धन नहीं होगा तो ये चीज कभी नहीं हो पाएगा. झारखंड में आज तक मैम कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें फेयर एग्जाम हुआ है, और झारखंड में आज तक का सबसे बड़ा घोटाला जेएससी सीजीएल में हुआ है, सबसे बड़ा घोटाला.
1: अगर नहीं कैंसिल हुआ तो क्या करो?
2: ये आंदोलन अनवरत चलता रहेगा जब तक कैंसिल नहीं होगा.
5: अगर नहीं कैंसिल हुआ, हम लोगों ने सेंटर में मैम जब नीट पेपर लीक हुआ तो हम लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा. हमने सर मैम यहाँ पे हेमंत सोरेन से इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, हम लोग बस मांग पूरा कर दें, आपको इस्तीफा नहीं चाहिए. और ये मैम बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज हो रहे हैं, किसी के सर फट रहे हैं मैम, किसी के पैर टूट रहे हैं मैम, ये बच्चे फिर इलाज कहाँ से कराएंगे? पढ़ने को पैसा नहीं है मैम, ये लोग इलाज कहाँ से कराएंगे? एक आप एग्जाम लेते हैं, उस पेपर लीक करवाते हैं, ऊपर से आपको सब पता है कि करवा कौन रहा है, उसके बावजूद भी मैम आप उसको सजा नहीं दिला रहे हैं. 14 दिन के कस्टडी में, 14 दिन के
6: आज हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, और अगर आज सुधार नहीं हुआ तो आने वाले विगत 10 वर्षों में झारखंड के महत्वपूर्ण पदों पे, बड़े बड़े अधिकारियों के पदों पे, बड़े बड़े अधिकारी सिर्फ झारखंड के बाहरी लोग दिखेंगे या फिर सिर्फ पैसे वाले दिखेंगे.
1: क्या हुआ यहाँ पे? लाठी कैसे चली? लाठी कैसे?
2: लाठी मैम, बच्चे लोग बैरिकेड से आगे बढ़े, पुलिस प्रशासन बेवजह बच्चों पे लाठी चार्ज किया है, बेवजह बच्चों के द्वारा कुछ नहीं किया है.
7: ऐसा बैरिकेडेड नहीं देखे मैम, ऐसा बैरिकेडेड हमेशा बॉर्डर में रहता है. यहाँ पे क्या हम लोग घुसपैठी है मैडम? इस तरह से बैरिकेडेड लगाया गया है स्टूडेंट के लिए?
1: आपको लगी क्या?
7: बहुत सारे छात्रों का हाथ कट गया है मैडम, इसका जिम्मेदार कौन है मैडम? ब्लड देखिए, ब्लड मेरे, ब्लड देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, ब्लड देखिए यहाँ पे लगा हुआ है मैडम, इसका कौन जिम्मेदार है मैडम? इस तरह से कौन
1: आपको कैसे चोट, कैसे खून?
7: बैरिकेडेड में धक्का दिया गया है, इस तरह से बैरिकेडेड कौन लगाता है मैम? यहाँ बॉर्डर है क्या? हम लोग चोर हैं, घुसपैठी हैं क्या मैडम?
5: राहुल गांधी बच्चों की बात करते हैं, उनकी यहाँ सरकार, सरकार उनके साथ गठबंधन की है मैम. राहुल गांधी क्यों नहीं यहाँ के बारे में बोल रहे हैं मैम? झारखंड क्यों नहीं आ रहे हैं? वो मुख्यमंत्री के घर के पास जाके क्यों नहीं सब इस्तीफा मांग रहे हैं? जाकर के मोदी से इस्तीफा मांग रहे थे कि मोदी जी इस्तीफा दो, उनके घर पे गए. आज उनका यहाँ सरकार है तो वो यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं?
6: इस तरह से
5: उनसे सवाल कीजिए, जाकर
6: से पूरा देश ने
5: इसलिए मीडिया में काम कर
6: रहे हैं, सवाल कीजिए.
8: एक आवाज आएगा कि यहाँ के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री इस्तीफा दो,
5: मुख्यमंत्री इस्तीफा मांगने लगे तो हेमंत सरकार को इस्तीफा देना होगा. अगर इस्तीफा नहीं दिया तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवाएं, इसको दिलवा कर रहे हैं. नौकरी आप बेचोगे, डिमांड हम लोग करते हैं कि सच्चाई बताओ, तुम बताते नहीं हो तो हम लोग मांग किससे करेंगे?
6: हम लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इतना कटीला तार लगाया गया जो कि मतलब चाकू से भी ज्यादा धारदार है. मतलब हम क्या देश टप रहे हैं कि हम एक उग्रवादी हैं, हम एक छात्र हैं, और छात्रों का जैसा बर्बरता नहीं करना चाहिए. माता फट गया, 3-3, 4-4 छात्रों का, एक एम्बुलेंस आया, एक एम्बुलेंस में 4 छात्र जा पाएगा? एक तो हम लोग वहां से पैदल लेके यहां तक आए हैं, एम्बुलेंस का फिर भी व्यवस्था नहीं हुआ. आप बताइए ऐसा प्रोटेस्ट, मतलब ऐसा व्यवस्था किस काम का? सारा तो आप सीट बेच दे रहे हैं तो भी आप एम्बुलेंस.
1: ओके, सो यू गॉट सम ब्रेक थ्रू हैपनिंग ओवर हियर. एवरीवन हैज बीन टोल्ड टू काम डाउन आफ्टर टेकिंग क्वाइट a bit of time, Vedika. You finally have some semblance. Again, some people got onto the barricade and they have finally managed to convince everyone who was there close to the barricades, who was trying to push through. They have been convinced, and you've got about 6 students who have gotten onto the barricades here and are telling everyone to settle down. There you see, the tricolor has gone up again, and after a few tense moments, the national anthem is being sung.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
6: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal, and Sandy Howard.
5: The show that sets the prime time agenda.
6: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
5: Join me, Aisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
7: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
8: This location from Tel Aviv
7: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
9: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
10: The Ayatollah Khamenei is gone.
11: There has been a missile attack right behind you.
12: And we need to rush into a shelter.
13: Heading there.
14: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
7: And now, Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
15: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
16: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
17: Really?
16: Fashion that made you gag, films that made you fangirl, art that made it to the gram, and trends that kept us with the program. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
7: From the newsroom to the studio, to the thick of political action.
18: You're watching NDTV 24/7.
19: The hope is that beyond this election, this will be one of the major issues.
20: With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of DJ.
19: Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially in the villages of West Bengal.
7: When stories have impact.
21: Padmatod Joshi, managing editor and primetime anchor.
7: The news has influence. The buck stops here with Padmaja Joshi.
19: Your work is being watched by people. You think that you're making an impact in this time. I think that's really a huge validation, very rewarding. And I'm pretty certain that Team NDTV will go from strength to strength.
15: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao. 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
22: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
23: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
5: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
6: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal, and Sandy Howard.
5: The show that sets the prime time agenda.
6: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
5: Join me, Aisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
16: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
17: Really?
16: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
1: Just few inches away is POK.
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
13: Launch control 0 to 100.
17: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
24: This car makes no sense, yet it makes every sense.
25: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
17: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
26: The news.
27: And for reforms in recruitment tests, water cannons fired. Security has been beefed up. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju says Home Minister Amit Shah ready to speak in Parliament on police crackdown on protesters during Jantar Mantar protests. Says opposition shouldn't run away from Sansad during Amit Shah's reply. Tamil Nadu Chief Minister Vijay moves resolution making Tamil song mandatory at government events. A DMK backs resolution, asks if Vijay can ensure state song at central events in the state. Right-wing commentator Mohandas taken into custody over his remarks on Delhi students' protest. He said the protest could lead to gang rape and claimed some women enjoy being raped. BJP calls his detention discriminatory. Ahmedabad rape horror. PG security guard ties wire around student's neck, rapes her on terrace. Accused arrested, shot by cops while attempting to escape. From the track to the podium, India's Commonwealth Games champions get a special shout-out from Prime Minister Modi. Prime Minister meets the medalists, praises their performances, celebrates the grit behind their success.
28: Good afternoon and welcome. Thanks very much for joining us here on NDTV. I'm Padmaja Joshi and we are continuously reporting from Ranchi, where today the students have decided it's a now or never moment for them, because this is years and years of frustration and anger that has built up right there where you see is that point where there is a face-off right now between the students on one side and the police, which is on the other. A while ago, there was a lathi charge. The water cannon was used. Remember, what had happened this morning was that the organizers of this protest had said that you have to march from the old Vidhan Sabha towards the new Vidhan Sabha, but it should be done in a peaceful fashion. Somewhere along the way, the story changed. The police says that there was aggression on part of the protesters. The marching students say that they were subjected to a lathi charge. One such person is here with me. आप वहाँ से मार्च करते हुए आ रहे थे, फिर क्या हुआ?
29: हम लोग पीसफुल तरीके से मार्च करते आ रहे थे मैम. हम लोग का जो जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच है, उस मंच से भी अनाउंसमेंट किया गया था कि हम लोग पीसफुल तरीके से आंदोलन करेंगे. हम लोग शांति मार्च लेकर आ रहे थे और जो एसपी सर से बात हुई थी कि जो आप लोग का जो एरिया है जहाँ पे हम लोग डिसाइड किए बैठने के लिए, वहाँ पे बैठ जाइएगा. हम लोग बैठने के लिए हम बच्चे को समझा रहे थे, उसी बीच में इधर से पुलिस की तरफ से पूरा लाठी चार्ज करके जिस तरह से हमको समझाने के दौरान हमको भी चोट लगी है. दो तीन जगह इधर भी पैर में भी मारा है, पीठ में भी. देखिए यहाँ भी चोट लगा है, यहाँ भी चोट लगा है, देखिए कट भी गया है. मैम हम बताना चाहते हैं कि हम लोग किसी भी तरह से, हम लोग छात्र हैं और किसी भी.
28: आपको पैर में लाठी मारी है?
29: हाँ, ये देखिए पूरा लाल है. ये आपका सरकार के द्वारा से हम लोग का जो आंदोलन है उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है. सरकार के जब हम लोग बोल दिए पीसफुल तरीका से तो लाठी चार्ज करने की क्या जरूरत है?
28: पर वो कह रहे हैं वहाँ से पत्थर चले.
29: हम लोग किसी भी प्रकार से पत्थर नहीं चलाया है. हम लोग जेनुअल छात्र हैं और छात्र में ही तो जो मांग कर रहे हैं वो हम लोग छात्र का ही. हम लोग किसी भी प्रकार पत्थरबाजी ना किसी प्रकार से कोई भी डंटा उंटा से हम लोग मारने की है. देखिए
28: ओके, सो देव एक्चुअली ओके देव गॉट वीडियोस ओवर हियर. हियर दे आर शोइंग समबडी हु हैज बीन हिट ऑन द बैक. अर्लियर वी हैड मेट समबडी who was being taken away in an ambulance. Here they are showing. All right, so there's this young man who was hit on the back and is lying unconscious on the road, hit by a water cannon.
2: पुलिस ने चला करके लाठी, मतलब हम लोगों को दौड़ा करके लाठी चार्ज की है मैम, इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे।
28: सो दे शोइंग एविडेंस, दे आर सेइंग दैट वी वर ट्राइंग टू गेट पीपल टू सेटल डाउन, व्हिच इज व्हेन द लाठी चार्ज स्टार्टेड अनप्रोवोक्ड, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल यू विल सी ओवर हियर विल बी दोज हु आर वॉकिंग अराउंड विद अ ट्राइकलर। इन द डिस्टेंस ऑल्सो द वन इमेज दैट विल स्टैंड आउट इज दैट ऑफ अ ट्राइकलर व्हाइल वी आर वॉकिंग देयर। जस्ट टू गिव यू,
3: माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने, आप लोग जो लगातार मांग कर रहे थे, आप लगातार मांग कर, अखिलेश यादव जी सुन लीजिए, अखिलेश जी सुन लीजिए, इधर सभी शांतपूर्वक बैठे हुए हैं, आप सुन लीजिए, अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि माननीय गृह मंत्री जी इस सदन में चर्चा का उत्तर देने के लिए तैयार हैं, तो कृपया मैं अनुरोध करूंगा, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया सदन को व्यवस्थित करें, सदन की कार्रवाई को चलाने दें, प्लीज काइंडली। मैं सभी, टैगोर मलक्कम साहब, यू आर ए चीफ विप ऑफ द पार्टी, अगर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ही हैज एक्सप्रेस इज फीलिंग कि नाउ होम मिनिस्टर इज रेडी टू रिप्लाई ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, लेकिन अब तो हाउस को व्यवस्थित करिए, अखिलेश जी इधर से व्यवस्थित है, चाहे संजय जायसवाल जी हो, निशिकांत जी हो, एक बार सभी पूरा सत्ता पक्ष बैठा है, अगर अगर गृह मंत्री जी के लिए संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया है कि वो चर्चा का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। देखिए आप अखिलेश जी, मैं समाजवादी पार्टी कांग्रेस डीएमके सभी मेंबर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि आई थिंक सो दिस इज द लास्ट वीक ऑफ द मानसून सेशन, इन लास्ट थ्री वीक द इंटायर मानसून सेशन वॉज वॉश आउट, हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु इज अकाउंटेबल, यू हैव बीन इलेक्टेड, यू हैव बीन इलेक्टेड, यू आर फॉर्चुनेट लकी यू ओनली जस्ट टू बियर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूअर्ड्स योर इलेक्टोरल कॉलेज, बट हियर यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट, इवन यू आर डिमांडिंग दैट होम मिनिस्टर शुड रिप्लाई। अब पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कह दिया है, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने कह दिया, तो अगर आप जवाब चाहते हैं तो सदन को व्यवस्थित करें, आप सदन में चाहते हैं कि माननीय गृह मंत्री जी जवाब दें तो सदन को व्यवस्थित करिए, माननीय गृह मंत्री जी का जो आप मांग रहे थे कि माननीय गृह मंत्री जी सदन में हमको जवाब दें, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया कि हम गृह मंत्री जी जवाब देने के लिए तैयार हैं, और गृह मंत्री जी चाहते हैं कि चर्चा हो, तो आप सदन को व्यवस्थित करें। आइटम नंबर 20, ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल 2026, ऑनरेबल मिनिस्टर,
4: ऑनरेबल चेयरपर्सन सर, विथ योर काइंड परमिशन आई वांट टू मूव दैट द बिल दिस वे टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी,
2: मेरी रिक्वेस्ट है
4: इंडिपेंडेंट
2: नीचे करिए,
4: ट्रांसपेरेंसी,
2: ये डिस्प्ले इस तरह से प्ले कार्ड डिस्प्ले करना,
4: क्वालिफिकेशन
2: ये इस तरह से प्ले कार्ड डिस्प्ले, ये न नियम परमिट करता है न चेयर करता है, अगर आप इस तरह से प्ले कार्ड डिस्प्ले करेंगे
4: सर
2: बिल्कुल नहीं ठीक
4: सर।
2: माननीय मंत्री जी
4: सर, विथ योर काइंड परमिशन आई वांट टू मूव that the bill to improve the efficiency, ensure independence, transparency and uniformity in the qualifications, appointment, terms and conditions of the service of chairperson and members of the various tribunals, the administration and functioning of the tribunals, to establish a national tribunal commission and to make consequential amendment in the related enactments and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration. अध्यक्ष जी, आज ये बहुत महत्वपूर्ण बिल सदन के समक्ष आया है, ये जो रिफॉर्म एक्सप्रेस देश में चल रही है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसी का ही एक ये पार्ट है, और आपने अनुमति प्रदान की है इसलिए मैं आपका आभारी। हमारे संविधान के आर्टिकल 323A और 323B में ये उपबंधित किया गया है, और बाद में एक स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत संविधान में शामिल किया गया ट्रिब्यूनल की व्यवस्था, ये मैं बताना चाहता हूँ। और इससे देश आजादी से पहले भी एक हमारे यहाँ ट्रिब्यूनल था, ITAT, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, तो वो 1941 का था, लेकिन ये 76 में फिर ये ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की गई। ट्रिब्यूनल का उद्देश्य कोर्ट्स का अल्टरनेट बनना नहीं होकर मॉडर्न गवर्नेंस में टैक्सेशन, कंपनी लॉ, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी मार्केट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और अन्य स्पेशलाइज्ड रेगुलेटरी मैटर से जुड़े मामले सुलझाने हेतु एक कॉम्प्लीमेंट्री संस्था

0: क्वेश्चन आवर माननीय सदस्यों का है, जीरो और माननीय सदस्यगण का है। ये सब माननीय सदस्यगण बैठे हैं सतीश गौतम जी, और उसके बाद इनको चर्चा करने की, इनको सदन विषय उठाने को नहीं मिल रहा है। गणेश जी आप हैं, अजय भट्ट जी हैं, इनके विषय आए हैं, तो आप क्वेश्चन आवर में दे नहीं देंगे। जयप्रकाश जी, औजला जी, आपका भी नाम ले रहा हूँ, आप सदन को व्यवस्थित करें। इससे साफ है कि आप केवल प्ले कार्ड लाएंगे। इस सदन में देश के जनता की जो जवाबदेही है, आपकी अकाउंटेबिलिटी है जनता के लिए। जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आपकी मांग मान ली, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मान लिया, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कह दिया कि माननीय गृह मंत्री जी चर्चा का उत्तर देने के लिए तैयार है, तो आप चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। जब चर्चा का उत्तर देने के लिए गृहमंत्री जी तैयार हैं, तो आप चर्चा करिए, नहीं आप क्या कर रहे हैं। जब सरकार ने कह दिया कि माननीय गृहमंत्री जी इस सदन में जवाब देंगे, तो मैं कहता हूं चर्चा करने के लिए तैयार होइए। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी माननीय सभी दल के नेताओं के द्वारा वहां पर संसदीय कार्य मंत्री। फिर सभा की कार्रवाई कल मंगलवार दिनांक 11 अगस्त 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
1: Right, Lok Sabha also adjourned for the day. It will resume tomorrow at 11 a.m. These are the last days of monsoon session in Parliament, which has been marred by multiple incidents of ruckus as well as disruptions. Of course, this time the major flashpoint is opposition wanting a discussion on student protest and the police action that happened at Jantar Mantar, to which Kiran Rijiju has said that Amit Shah will be addressing these issues. Let's take a look at what exactly he has said.
2: Congress party aur Rahul Gandhi ji pehle din se ye mang kar rahe the ki Grih Mantri Amit Shah ji ko statement dena chahiye. Main bahut saaf shabdon se sarkar ki aur se kehna chahta hu, sarkar pura chhatra ka mamle ko lekar ke charcha ke liye taiyar hai. और स्टेटमेंट ही नहीं, छात्र का मामला को लेकर के पूरा चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैं अनुरोध करता हूं कांग्रेस पार्टी और इनको कि गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, पूरा सुनना पड़ेगा।
1: Let's go back to Aishwarya on this. Aishwarya, clear ruckus there inside Lok Sabha. It has been adjourned once again. Of course, you know, this is with respect to student protest and police action. We just heard Kiran Rijiju sometime back saying that Amit Shah will be addressing a student protest, police action, which is the biggest flashpoint. But despite that, opposition not really satisfied. So do you see any sort of normalcy returning in the remainder of the days?
3: Well, Radhika, from the floor of the House, it is Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju who also stated that whenever Home Minister Amit Shah will reply on the entire debate, which the government is now ready, opposition should not run away from listening to Home Minister. And that's the charge that he is leveling from day one, that whenever Home Minister will speak, it will be opposition which will not be able to sit in front of him, because he's ready to answer on all the issues regarding the students and the demand of the opposition as far as the July 28th Sansad Chalo protest and the alleged police brutality against the students. Now, here, deputy leader of the Congress party in Lok Sabha, Gaurav Gogoi, categorically stated that why just admitting one single demand of the opposition? Why not the second demand of Ram Temple donation theft scam, that the government should also admit, and the time should be allotted to both the discussion. From the day one of the monsoon session of parliament, and in fact before that in the all party meeting, as the entire opposition raised that they want also a discussion on the Ram Temple donation theft scam in the parliament. Why a single agenda has been picked up by the government and not the other? And that is the reason perhaps the entire opposition was chanting slogans of Chanda Chori in the Lok Sabha, and the disruption right. was created. It remains to be seen that when the government have stepped one step forward as far as

0: cheated out of that. This is the restlessness, the anger, the agitation, and the frustration that you're seeing on each one of these faces right now. There's a rate list that we saw put up. When you have JPSC, 1 crore.
1: All right, so there you can see one of the students during the chaos that took place over there as the crowds were pushing towards the barrier and the police pushing them back, the security personnel who are on the ground there to prevent the marchers from going to the assembly, to the Vidhan Sabha. And this is a massive protest that you can see with their riot gear as well. The police is ready and the students throwing their footwear at the police over the barricades, as you can see, chucking their slippers and shoes as well. Some policemen also injured. Students also have been injured. And as Padmaja was pointing out, this is frustration over, you know, various recruitment exams that take place in the state. It's the Jharkhand Public Service Commission, that is for a job in the administration of Jharkhand, also the Jharkhand Staff Selection Commission examinations. And the students have been demanding that these exams, there should be a CBI probe into all these alleged irregularities, cancellation of the recent exams that have been conducted, and they've also demanded strict action against those who are found guilty in exam irregularities. Already the board has all resigned, and action has also been taken against the JPSC chairman L. Khyangte. He has now been arrested. Let's just take a look at this earlier report sent to us by Padmaja from the ground there.
2: One cop unfortunately has been injured. This is very, very, very disturbing turn of events, and it is really not something that this protest needed. A couple of barricades here, you see, have been overturned by a few people. There was a lathi charge just a while ago, and one of the protesters who was sitting on a hunger strike is now being taken away in an ambulance. He had come here and he was still carrying his constitution in one hand.
3: मांग हम लोग का जेपीएससी जेएससी में जो हमारे सीटें को बेची जा रही है वो हम लोग होने नहीं देंगे और कभी हम लोग इसके खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ना पड़ेगा जो जान भी देना पड़ेगा तो जान देने के लिए तैयार है लेकिन हम लोग और सीट बेचने नहीं देंगे.
2: You've got two of the organizers who are now on top of a barricade, including a young lady. Now they've got on top. We had some unfortunate scenes where the protester had flung slippers. These slippers and shoes had been flung in the direction of the police. आपको लाठी लगी?
4: लाठी पूरा पैर से माथा तक माथा तोड़ दिया बड़ा देखिए इतना जोरदार लाठी था कि मेरा सर पूरा फट गया है. हम लोग को हक अधिकार ना चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए. बताइए हमें सोरेन, तुम झारखंडी है कि नहीं है? बाहरियों के दबाव से तुम हम लोग को बर्बाद कर देगा क्या? 26 वर्ष हो गया झारखंड का, लेकिन आज तक नौकरी नहीं कर पाए यहाँ के व्यवस्था के चलते. बताइए हम लोग क्या करें?
5: जितना जुल्म सरकार कर रहा है मैम, करने दीजिए, उतना हम लोग को सहने के ताकत मजबूत मिल रहा है. लेकिन सरकार को सोचना चाहिए, अगर हम न जीते तो झारखंड का भविष्य मर जाएगा. सभी पुलिस वालों को बोलते हैं हम न जीते, इन लोग हट जाओ यार, और जब ड्यूटी अपना निभाओ. हम लोग जीतने वाले हैं, आप लोग भविष्य को अंधकार कर रहे हैं, इसलिए हट जाइए आप लोग, हट जाइए आप लोग.
6: और ये मैम बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज हो रहे हैं, किसी का सर फट रहा है मैम, किसी के पैर टूट रहे हैं मैम. ये बच्चे फिर इलाज कहाँ से कराएंगे? पढ़ने को पैसा नहीं है मैम, ये लोग इलाज कहाँ से कराएंगे? एक आप एग्जाम लेते हैं, उस पेपर लीक करवाते हैं, ऊपर से आपको सब पता है कि करवा कौन रहा है, उसके बावजूद भी मैम आप उसको सजा नहीं दिला रहे हैं.
7: एक आवाज आएगा कि यहाँ के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री इस्तीफा दो.
8: मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगने लगे तो हेमंत सरकार को इस्तीफा देना होगा. अगर इस्तीफा नहीं दिया तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवाएं, इसको दिलवा कर रहेंगे. नौकरी आप बेचोगे. डिमांड हम लोग करते हैं कि सच्चाई बताओ, तुम बताते नहीं हो तो हम लोग मांग किससे करेंगे?
2: लाठी चार्ज जस्ट अ वाइल अगो एंड वन ऑफ द प्रोटेस्टर्स हु वाज सिटिंग ऑन अ हंगर स्ट्राइक इज नाउ बीइंग टेकन अवे इन एन एम्बुलेंस. He had come here and he was still carrying his constitution in one hand. Ek second. भैया आपका नाम?
9: जी मेरा नाम कुश महतो है और मैं आज मेरा छठा दिन है हंगर स्ट्राइक का और लगातार जो है कि छात्रों के साथ.
2: क्या है? मांग बताओ अपनी भैया, मांग बताओ.
9: मांग हम लोग का जेपीएससी जेएसएससी में जो हमारे सीटें को बेची जा रही है वो हम लोग होने नहीं देंगे और कभी हम लोग इसके खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ना पड़ेगा, जो जान भी देना पड़ेगा तो जान देने

0: के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग और सीट बेचने नहीं देंगे।
1: खाने का दर्द है, ना खाने का तकलीफ है, उससे बहुत बड़ा दर्दनाक यहाँ के छात्रों का भविष्य को बेचा जा रहा है। यहाँ के पेपर लीक हो रहे हैं, भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, वो ज्यादा दर्दनाक है। जी बिल्कुल जारी रहेगा, बिल्कुल अनशन जारी रहेगा।
2: पूर्ण तरीके से स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग भी शांतिपूर्ण तरीके से उनका निदान करेंगे। जगह जगह बैरिकेडिंग लगी हुई है, कंस्टिना वाइट से भी लगी हुई है, और जहां तक है कि जहां एनॉयंस होगा उनको समझाया जाएगा। हम लोग भी पीसफुल उनका मूवमेंट को चाहते हैं कि ठीक है, उनकी जो मांगे हैं वो सरकार से रखें, लेकिन पीसफुली तरीके से रखें, ताकि कहीं से कोई एनॉयंस ना हो, और उनकी सुविधा के लिए या वो जो भी उनकी डिमांड है वो रखें अपने गवर्नमेंट का अपने पास, लेकिन पीसफुल तरीके से करें। और जहां अगर कुछ होगा तो फिर हम लोग उनको समझाएंगे।
3: आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, कोई आवश्यकता नहीं थी धरने की, कोई आवश्यकता नहीं थी प्रदर्शन की। आप तो पहले दिन अपने बच्चों को बुलाना चाहिए था, आपको खुद जाना चाहिए था। क्या 15 दिन बीत गए, 16 दिन हो गए, अब बैठक दौर, बैठक पे बैठक, बैठक पे बैठक, ये उलझाने का एक तरीका है। लेकिन छात्रों को सैल्यूट करेंगे, उनकी डिमांड है CBI जांच, ED से जांच, और JCSC और JPSC के जो परीक्षाएं हुई उनको रद्द करो।
4: देखिए, पिछले 14-15 दिन से छात्र धरना पर भी यार भूख हड़ताल, और सरकार वार्ता के नाम पर बच्चों को सिर्फ टहला रहे। तो हम सब लोगों ने तय किया कि भाई आज हम सब विधायक और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पदाधिकारी कि हम सब लोग मुख्यमंत्री से जाकर के आवास में ही मिले और उनसे फिर हम सब लोग बात करें।
5: बीजेपी सभी चीज के पीछे होते हैं। यहाँ जब जंतर मंतर पर हुआ था, हमने तो नहीं कहा कि कांग्रेस का हाथ है, आम आदमी पार्टी का हाथ है। सभी तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही थे, चाहे वो रंका हो, चाहे दीपिके हो, चाहे कोई भी हो, सौरभ दास हो, सभी। मैंने तो नहीं कहा, आंदोलन है आंदोलन है, उस आंदोलन में हमारी सहभागिता है, और हम जो है मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर उनको जो है मदद कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि CBI इसकी इंक्वायरी करे, और CBI इंक्वायरी करे तो आज आपने देखा कि इस्तीफा हुआ। आपसे बार बार मैं कहता रहा कि जो JPSC के मेंबर है वही JMM के कार्यकर्ता है, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता है। आज फाइनली उनको इस्तीफा देना पड़ा ना, आज ही आप देखिए ना, तो हमारी कौन सी बात है जो गलत हो रही है? यदि हम गलत बात कर रहे हैं तो इस्तीफा नहीं दिलाते आप।
6: All right, so you heard a series of comments on the agitation that's taking place for the moment. Things seem to have settled down. Let's listen into what Chief Minister Hemant Soren had said over the students' protest.
7: गोली बंदूक वाटर किरण का प्रयोग करती है, लेकिन हम लोग देखेंगे सरकार में कितना पावर है इसका टीयर गैस में, हम लोग देखेंगे कितना दम है इसका लाठी में। हम सलाइन चढ़ा के आए हैं महोदय, 9 दिन
8: आगे देख के, आगे देख के, आगे देख के, आगे देख के।
7: एक कदम नहीं भागेगा।
9: ये बताइए कि अब आप लोग जाएंगे आगे?
7: आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे।
9: अब सरकार से कोई बातचीत हो पाई है दोबारा?
7: अभी अभी सरकार से क्या बात करेंगे, और 3 राउंड बात हो गया, अब कोई बात नहीं करना है। हमारी मांग पूरी करे, नहीं तो ये छात्र सरकार के मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुँचे।
9: 98% वो कह रहे हैं
7: सर, अगर छात्रों की बात नहीं मानती है तो सरकार की कुर्सी में खतरा है, सरकार की कुर्सी हिल सकती है। ये आक्रोश रुकने वाला नहीं है, ये जन आंदोलन में बदल गया। कौन रोकेगा? युवा को पलटी कर दीजिएगा तो वायु को कोई रोक नहीं सकता।
10: पूर्वक तरीके से आप प्रोटेस्ट करिए, हमें उसमें कोई इशू नहीं है, और ये पत्थर ना फेंकें, पुलिस के ऊपर हमला ना करें, ये हमारी अभी भी आप लोगों से कॉन्स्टेंट रिक्वेस्ट है, आप लोगों के थ्री स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।
11: अभी तक दोनों राउंड की जो थोड़ा सा भी जो आप कह रहे हैं कि फोर्स यूज हुआ है, कितने लोग इंजर्ड हुए हैं?
10: उसमें पहले राउंड में हमारे तीन पुलिस वाले इंजर हुए थे, जो बैरियर जो तोड़ के जब भीड़ आगे बढ़ी और उसमें भीड़ पूरा एकदम लगभग 100-150 लोग जो है पूरा उनके ऊपर चढ़ने का वो प्रयास करने लग गए थे, तुरंत उनको पीछे हटाने के लिए कि भीड़ हमारे पुलिसमैन के ऊपर से उनको चोट ना लग जाए, उनको हटाने के लिए पहले यूज किया गया था। अभी सारा बैरिकेडिंग तोड़ने के पश्चात फिर भी हमारी पुलिस डटी हुई है, और फिर अगर मतलब उसके बाद थोड़ा पीछे की तरफ धकेलने का प्रयास किया गया था, पत्थर चलाए गए थे, उसके बाद थोड़ा अपने दोबारा जो अपना हमारा जो स्थान है वो रिटेन करने का प्रयास किया गया है। लेकिन एज रांची सिटी एसपी मैं अभी भी अपील करूंगा कि प्लीज प्रोटेस्ट को पीसफुल रखिए, प्लीज शांत रहिए और कोई भी वायलेंस मत करिए।
11: प्रोटेस्टर्स कितने इंजर्ड हुए?
10: प्रोटेस्टर्स जहां तक हमें सुनने में आ रहे हैं 4 से 5 प्रोटेस्टर्स को माइनर इंजरी हुई है, उनको जो है प्रशासन के द्वारा एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। धन्यवाद।
11: हमारी सुबह बातचीत हुई थी, आपने कहा।
6: All right, so earlier we heard Devendranath Mahato. He is one of the students who's been on a hunger strike for 9 days, and he is also part of the Vidhan Sabha Gherao March today that is taken up.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: TOK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज TOK।
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?

0: करना चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए। बताइए हेमंत सोरेन, तुम झारखंडी है कि नहीं है? बाहरियों के दबाव से तुम हम लोग को बर्बाद कर देगा क्या? 26 वर्ष हो गया झारखंड का, लेकिन आज तक नौकरी नहीं कर पाए यहाँ के व्यवस्था के चलते। बताइए हम लोग क्या करें?
1: जितना जुल्म सरकार कर रहा है मैम, करने दीजिए, उतना हम लोग को सहने के ताकत मजबूत मिल रहा है। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए, अगर हम न जीते तो झारखंड का भविष्य मर जाएगा। सभी पुलिस वालों को बोलते हैं हम न जीते, इन लोग हट जाओ यार, और सब ड्यूटी अपना निभाओ, हम लोग जीतना है बोले, आप लोग भविष्य को अंधकार कर रहे हैं, इसलिए हट जाइए आप लोग, हट जाइए आप लोग।
2: और ये मैम बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज हो रहे हैं, किसी का सर फट रहा है मैम, किसी के पैर टूट रहे हैं मैम, ये बच्चे फिर इलाज कहाँ से कराएंगे? पढ़ने को पैसा नहीं है मैम, ये लोग इलाज कहाँ से कराएंगे? एक आप एग्जाम लेते हैं, उस पेपर लीक करवाते हैं, ऊपर से आपको सब पता है कि करवा कौन रहा है, उसके बावजूद भी मैम आप उसको सजा नहीं दिला रहे हैं।
3: एक आवाज आएगा कि यहाँ के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री इस्तीफा दो,
4: इस्तीफा मांगने लगे तो हेमंत सरकार को इस्तीफा देना होगा। अगर इस्तीफा नहीं दिया तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवाएं, इसको दिलवा कर रहेंगे। नौकरी आप बेचोगे, डिमांड हम लोग करते हैं कि सच्चाई बताओ, तुम बताते नहीं हो तो हम लोग मांग किससे करेंगे?
5: Party charge just a while ago, and one of the protesters who was sitting on a hunger strike is now being taken away in an ambulance. He had come here and he was still carrying his constitution in one hand. Ek second. भैया आपका नाम?
6: जी मेरा नाम कुश महतो है और मैं आज मेरा छठा दिन है हंगर स्ट्राइक का और लगातार जो है कि छात्रों के साथ
5: मांग बताओ अपनी भैया मांग बताओ।
6: मांग हम लोग का जेपीएससी जेएससी में जो हमारे सीटें को बेची जा रही है वो हम लोग होने नहीं देंगे और कभी हम लोग इसके खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ना पड़ेगा, जो जान भी देना पड़ेगा तो जान देने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग और सीट बेचने नहीं देंगे।
7: And as this agitation rages in Ranchi, now Congress leader Rahul Gandhi is facing questions from the BJP about his absence from this stir. Remember, Rahul Gandhi had spoken out in favor of protesting students in Jantar Mantar, but the BJP is now questioning him over this particular agitation. He did release a social media message on the protests about solidarity with the students, the BJP targeting him over the Ranchi agitation, while students have taken to the streets there demanding action on their concerns. Rahul Gandhi was in Prayagraj on the 8th of August. The BJP is now questioning why the Congress leader has not joined the protesting students in Jharkhand, also targeting Rahul Gandhi over his absence.

0: कोटा से लेके और प्रयागराज तक वो रांची पे मिमियाते हुए भी नजर नहीं आ रहे हैं। यह दर्शाता है कि उनका उद्देश्य छात्र हितों की बात करना नहीं, अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करना है।
1: प्योरली द यूथ एजुकेशन, स्टूडेंट एजुकेशन, और तभी हजारों छात्र पूरे झारखंड से आज यहां रांची में है, जबकि पूरे रांची को कटीले तारों से बांधा गया है, लेकिन यूथ पूरे पहुंच चुके हैं और मार्च कर रहे हैं विधानसभा की ओर। एक ही डिमांड है, सीबीआई जांच, ईडी जांच, सरकार को तुरंत ही स्टेप लेके सीबीआई इंक्वायरी के लिए करना चाहिए।
2: All right, let's now focus on Parliament. Remember, just 4 days are left of this monsoon session, and now the government has said that Home Minister Amit Shah is ready to address Parliament over the students' protests at Jantar Mantar and the police action against those students. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the centre is ready for a discussion over issues concerning the students, and Union Home Minister Amit Shah is willing to respond. But Rijiju also said the government has made an offer for a full and detailed discussion, but the opposition must allow the House to function. He said the opposition must listen to Home Minister Shah's response in Parliament and participate in the discussion. Remember, there has been an impasse in Parliament.
3: अभी तक तो केवल एक मांग थी रोज कि गृहमंत्री जवाब दें, और अगर सरकार कह रही कि गृहमंत्री जवाब दे रहे हैं, चर्चा हो, अब उससे भाग रहे हैं, तो इससे साफ है कि विपक्ष इस सदन को जानबूझ करके नहीं चलने दे रहा। पूरा मानसून सेशन जो वॉश आउट हुआ, इनकी सोची समझी रणनीति है, और ये इस सदन को जनता के सवालों या ज्वलंत समस्याओं से माननीय सदस्य क्वेश्चन आवर जीरो आवर से केवल वंचित नहीं हुए, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं, केवल इसका इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए कर रहे।
4: कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी पहले दिन से ये मांग कर रहे थे कि गृहमंत्री अमित शाह जी को स्टेटमेंट देना चाहिए। मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार की ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है, और स्टेटमेंट ही नहीं, छात्र का मामला को लेकर के पूरा चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैं अनुरोध करता हूं कांग्रेस पार्टी और इनको कि गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, पूरा सुनना पड़ेगा।
2: All right, so the government there reaching out to the opposition. As we said, there has been an impasse in Parliament. Now, today in the Business Advisory Committee meeting, pained by the deadlock in the House, Lok Sabha Speaker Om Birla made an emotional appeal to the floor leaders. He said, let the voice of the people be heard. He said, hold question hour, discuss the key bills. Because remember, bills have been passed without any discussion. Very key, important bills have been passed in this session without any discussion because of the opposition sloganeering, the opposition insisting that Home Minister Amit Shah address the House questioning his absence. Now, the Speaker said that emphasizing the importance of constructive deliberations, meaningful participation and adherence to the highest parliamentary traditions, Om Birla said he appealed to all the parties to extend their cooperation in ensuring smooth and orderly conduct of the proceedings so that issues concerning people can be discussed in a comprehensive and productive manner. So the Speaker making this appeal to all the leaders of the parties in Parliament, asking that let the House function, let there be debate, let there be discussion, because this is very important in a democratic setup. The people's issues cannot be left waiting in the corridors. They must be reflected, debated and resolved on the floor of this House, is what the Speaker has said. And with a personal appeal as well, he said, for democracy, for the people, please cooperate. Well, let's go across to NDTV's Aishwarya, who's been tracking all these developments. And Aishwarya, a very emotional appeal there being made by the Speaker Om Birla, where he's talking about how there's a need for debate and discussion in the House. And this comes as during this monsoon session, we've seen some very important bills being passed amid the chaos.
5: Well, that's right. Once again, it is Lok Sabha Speaker Om Birla who had made that

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला।

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: कौन?
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
1: बैठ सकते आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: कौन?
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
1: Just few inches away is POK.
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है और बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।

0: has failed the dope test, but we are waiting for the confirmatory test results, which will come any moment from now. And we have some more breaking news coming in for you. The Defence Ministry has now said that as a part of the 80th Independence Day celebrations, for the first time ever, the national song Vande Mataram would be sung from the ramparts of Red Fort. And this, of course, after the Vande Mataram Bill was passed during the monsoon session a few days ago. Remember, the Vande Mataram Bill gives Vande Mataram song equal importance as compared to the national anthem, and it also fines people who do not adhere to this to following the rules and regulations of the Vande Mataram Bill. But a historic first, because for the first time, Vande Mataram to be sung from Red Fort this Independence Day. My colleague Rishabh is now joining me live on this. Rishabh, after the Vande Mataram Bill was of course passed, which gives Vande Mataram equal importance as the national anthem, for the first time in history, Vande Mataram will be sung from the ramparts of Red Fort this Independence Day.
1: As per the MHA circular, the six stanzas in 6 minutes 10 seconds would be sung at Red Fort this Independence Day as well. Remember, this is the 150th year of the creation of Vande Mataram by Bankim Chattopadhyay, and the Government of India is celebrating that. What we are given to understand that this time at the Red Fort, when the Prime Minister would come to unfurl the national flag, before the national flag unfurling, you will hear Vande Mataram, the 3 minute 10 second recitation of the six paras as per the MHA norm. That is what Minister of Defence have confirmed now. And also what we're given to understand that an Indian Air Force helicopter would be carrying a banner 50 years, celebrating the 150 years of Vande Mataram as well on 15th of August.
0: Right. Right, absolutely, Rishabh. It's going to be historic first this Independence Day when Vande Mataram will be sung along the ramparts of Red Fort. Thanks very much. In other news, Commonwealth Games heroes are back home, and this time they had a special audience. Prime Minister Narendra Modi met the CWG medalist and applauded their grit, dedication and standout performances in Glasgow, where India finished with 39 medals and fourth place in the overall tally. Here's a snippet of that interaction.
2: मेरे फ्रेंड्स सर्कल में जो वो बोलते थे कि तू के मोदी से मिल रही है तो आज मैं आपसे मिली हूँ सर मैं उनको बोल पाऊंगी कि हाँ मैं मोदी जी से मिली हूँ
3: इतने आंसू टपक रहे थे मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा है क्या हुआ वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी उस मैप पर नजर जाना मैं सच बताता हूँ लंबे समय तक लोगों को याद
4: 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी वो फाइट तो मैं जीत गया और फिर वो मेरे को बोला कि बोला भाईजान आपका नाम नरेंद्र है आपके कोच का नाम नरेंद्र है आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है
3: मेरे यहाँ मुझे यहाँ लगभग 12-13 साल हो गए इसी मकान में अगर मैंने रेगुलरली और हर बार किसी को रिसीव किया है किसी को मैं मिला हूँ तो खिलाड़ी है पिछले 10-12 सालों के आप लोगों के पुरुषार्थ के कारण भारत को लगातार विजय दिलाने के आपके प्रयासों के कारण और उत्तरोत्तर सफलता में नई ऊंचाइयां पार करने की परंपरा के कारण जो काम शायद हम स्कूलों में जाके कहें कि नहीं नहीं भाई खेलना चाहिए ये करना चाहिए वो काम स्कूलों में जाकर के हम कर सकते थे उससे ज़्यादा आपका मेडल उनको इंस्पायर करता है तुमने मुझे वादा किया था पिछली बार कि तुम्हारी दोनों बेटियां खिलाड़ी बन जाएगी
5: हाँ जी अभी वे उम्र की छोटी है अगले कॉमनवेल्थ में एक घर में 3 मेडल ला के दिखाएंगे
3: पक्का
6: जब मैं दौड़ रहा था जब मेरा इवेंट था 29 को तो उस दिन गुरु पूर्णिमा थी तो उस दिन मेरे गुरु को मैंने गिफ्ट दे दिया
3: बड़ी शान बढ़ाई आपने इतने आंसू टपक रहे थे मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा है
7: मैं बहुत ज़्यादा खुशी थी इमोशनल भी थे उसी दिन खुशी ज़्यादा था और

0: मेरा पेरिस ओलंपिक में मेरा 1 kg में मेडल रह गई थी। और एक प्लेयर्स की लाइफ में क्या क्या हमको फेस करना पड़ते हैं, तो ये 4 साल के अंदर मैं कितना क्या क्या कुछ मैंने फेस किया था। हर टाइम इंजरी ही चल रहे थे और फैमिली प्रॉब्लम वो सब हो रहा था, तो बहुत मुश्किल से मैं ये 4 साल फेस किया था। तो वो सब जब पोडियम में जब मैं खड़ी थे सर, और हमारी जो फ्लैग ऊपर जाते हैं और हमारे नेशनल एंथम जब बजते हैं, तो सर हम रुक नहीं सकते सर।
1: क्या हुआ, वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी?
2: हम लोगों का तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस था लास्ट डे था, और सब जीत के गए थे और पूरा इंडिया के लोग थे, तो थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा था। तो मैंने उनको अच्छे से बोला, रिक्वेस्ट किया था सर, फिर उन्होंने मान भी लिया, अभी चेंज भी हो गया सर।
1: इस विजय की परिस्थिति, खुशी आनंद अपने साथियों के साथ, और गेम पूरे हो चुके हैं, तो हंसी मजाक मस्ती का मूड, ऐसे समय उस मैप पर नजर जाना और उसको रजिस्टर करना, और तुरंत सिर्फ मेडल लेते समय देश खड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं, भीतर से देश का भाव। मैं सच बताता हूँ, ये वीडियो सामान्य नहीं है, आपका लंबे समय तक लोगों को याद रहे।
3: 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी, और वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे तो मिलिट्री वाले को फ़ोन आया कि भाई पाकिस्तान से नहीं आना है। तो फिर मैं फर्स्ट राउंड 4-1 से जीत गया, सेकेंड राउंड 3-2 से जीत गया, पर दोनों के सर लग गए आपस में, तो दोनों के लग गए कट, वो फाइट तो मैं जीत गया। उसके बाद फिर दोनों चले गए हॉस्पिटल में टाके लगवाने के लिए। फिर 2014 में आप फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री जी बने थे, और जो हमारे साथ आर्मी का कोच गया हुआ था उसका नाम नरेंद्र राणा था, और फिर वो कई देर तक सोच के मेरे को बोला कि भाईजान एक बात बोलूँ। वहाँ बोलो, मतलब भाईजान आपका नाम नरेंद्र है, आपके कोच का नाम नरेंद्र है, आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है, तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है।
1: सिर्फ आपने मेडल की संख्या बढ़ाई ऐसा नहीं है, आपने एक पीढ़ी को तैयार किया। स्पोर्ट्स व्यवस्था एक बात है, लेकिन देश मेडल तब प्राप्त करता है जब देश में स्पोर्ट्स कल्चर बनता है। दोस्तों, आपने बहुत बड़ा काम किया है, देश का नाम रोशन किया है, आपको मैं बहुत बधाई देता हूं, और आप विश्वास कीजिए आगे भी आप विजयी होंगे, और फिर से एक बार यहीं पर हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
4: ये लगातार तीसरी बार देश को मेडल दिलवाया है, बहुत आशीर्वाद बेटा।
5: और थैंक यू सो मच, मैं सर के हाथ से बर्थडे था तो आज सर की
4: बहुत बधाई।
5: ओनली एक ही
4: मेडल।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज POK।
0: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। फायर,

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
1: Just few inches away is POK.
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: Whenever students are protesting, the first thing which is questioned is as to why they are doing and what they're doing, and not as
1: Yes.
0: to how they should not be there in the first place, how they should not get the chance to protest, and that the system should already be more efficient, more smooth, so that students don't have to go out on streets and
1: True,
0: get
1: agreed.
0: something.
1: Students are supposed to study, students are supposed to worry for their future, not to worry about whether there is a free and fair system for examination, whether everybody is getting an equal opportunity as far as, you know, our examination and education system is concerned. But Aditya, let me bring you in at this moment. Do you also feel let down, you know, and by what happened today by the government of Jharkhand? And it almost seems, like I was saying earlier, governments only know how to behave in one way. Instead of attributing motives to what these students are doing, whether they are politically motivated, try and address the root cause of why they are, you know, on the streets for the first place.
2: Absolutely, sir. First of all, we need to know that right to protest is a fundamental right, and that has been iterated by the Supreme Court many times. Sir, when the examination hall repeatedly fails to deliver justice, the student eventually reaches the street, and that is what is happening across the country. Right. Apart from that, sir, I agree that how these things are happening, coming out at Jantar Mantar and eventually here in Ranchi as well, it is vehemently bad and very bad. Example of what a state can do is giving out to the citizens, which should not have been done. Sir, competitive examinations are not merely tests. They are the mechanism through which a republic tells the ordinary citizen, you do not need a surname, connection, or political pattern. You only need merit. And that has been staunched upon, which is the saddest part. The moment a young person begins believing that a leaked paper is more valuable than hard work, corruption has damaged something much bigger than an examination. It has damaged
1: Right.
2: Republican faith. That is the core conscience of
1: I,
2: value.
1: before I let all of you go, I just very quickly want to go across, you know, to Manoj Yadav at this moment. I just want to understand from Manoj. Manoj, एक बात बताइए. अभी राहुल गांधी को हमने सुना बोल रहे थे कि जो वहां पर हुआ झारखंड में नहीं होना चाहिए. आपको लगता है कि उनकी जो बातें हैं उसमें कुछ दम है, कुछ प्रेशर पड़ेगा हेमंत सोरेन पे, या सिर्फ बयानबाजी चल रही है? अगर राहुल गांधी सीरियस है तो उन्हें आपके साथ आके वहां पर बैठना चाहिए.
3: बिल्कुल बिल्कुल, हम रिस्पेक्ट करते हैं मिस्टर राहुल गांधी जी का, और हम ये कहना चाहते हैं कि आप जो है नीट पेपर में जिस प्रकार से आप प्रधानमंत्री जी के आवास के पास में जो आपने धरना दिया और घेराव किया, आप जो है आपकी सरकार है, आप सरकार में शामिल हैं, और यहाँ पर जो छात्रों के साथ में हो रहा है मैं बता रहा हूँ, अगर यदि आप अगर इसी प्रकार से सिर्फ बयान दीजिएगा तो पूरी तरह से आप बर्बाद हो जाइएगा, बता रहे हैं, क्योंकि छात्र इतने आज आक्रोशित हो चुके हैं, 10 साल से इतना पीड़ित हो चुके हैं कि आज बता रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में छात्र आंदोलन कोई भी जो असेंबली भवन तक, विधानसभा तक नहीं पहुंचा होगा। मैं अभी विधानसभा परिसर में ही हूँ और बैठा हूँ, अगर यदि आप बोलिएगा तो मैं दिखा दूंगा का यहाँ का नजारा।
1: दिखा मनोज, जरा दिखाएंगे कहां पर हैं आप इस वक्त और कितने छात्र हैं आपके आसपास?
3: देखिए, इस चीज को आप अगर देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं, ये जो है आप देखिएगा, ये पूरी तरह से जो है मैं आपको बता रहा हूं, आज इधर देखिएगा, ये सब सारे ये जितना भी है ये विधानसभा का मैंने परिसर है, ये कंपाउंड है, ये देखिए यहाँ सामने विधानसभा है, आपको दिखाई दे रहा होगा,
1: जी
3: जस्ट सामने विधानसभा है, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर विधानसभा है, और यहाँ पर हजारों लड़के जो है सो आप देख रहे हैं रोड पर जो है, सारे लोग चारों तरफ से देख सकते हैं, हजारों लड़के यहाँ पर अभी भी विधानसभा में घुसने के लिए पहुंच गए हैं।
1: मनोज, कब तक बैठेंगे ये आप लोग यहां पर? इतने सारे लोग हैं, आपने जो दिखाया, सरकार को ये देखकर कम से कम अपनी आंखें खोलनी चाहिए कि ये प्रदर्शन के बाद अब जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से नहीं, अब विधानसभा जो नया प्रदर्शन स्थल बन गया है, इतने सारे बच्चे वहां भी बैठे हुए हैं।
3: उन लोगों को पूरी तरह से देखिए बात बता रहे हैं, ये एक दिन का गुस्सा नहीं है, पूरे बता रहे ना, जब से हम, ये नहीं कि हम पॉलिटिकली जो ऐसे किसी को बदनाम नहीं कर रहा, हम कभी भी इस्तीफा नहीं मांगे, हम ये नहीं बोल रहे कि हेमंत सोरेन जी इस्तीफा दीजिए, लेकिन जब से ये बैठे हैं तब से आपको मैं बता रहा हूं, इतना भ्रष्टाचार पूरे भारत में कहीं नहीं होगा, पूरे भारत में नहीं होगा जितना कि यहाँ पर नियुक्ति में घोटाला हो रहा है, और यहाँ पर आपको बता रहे हैं एक अभय तिवारी जो है, हमको शर्म आता है यहाँ के जितने भी ये पदाधिकारी

0: अधिकारी हैं
1: जी।
0: और अधिकारी हैं, एक आदना सा अभय तिवारी सबको पैसे की लालच दे करके, सभी मंत्रीगण को लालच दे करके, सभी विधायकों को लालच दे करके इस प्रकार का जो है सीट बेचने का काम कर रहा है।
1: ओके।
0: जो गरीब गुरबा लड़का पढ़ाई कर रहे हैं, जो किसी प्रकार से आपको बता रहे हैं चावल और दाल घर से ला करके पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी नौकरी को छीनी जा रही है, ये मैं बता रहा हूँ। और एक आपको मैं बता रहा हूँ
1: जी,
0: आज हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी का जन्मदिन है, लेट देखिए यहाँ पर केक काट करके लोग उनके जन्मदिन को भी मना रहे हैं।
1: कैन वी शो दिस, जरा दिखाएंगे आप हमें?
0: ये देख रहे,
1: थोड़ा नीचे कीजिएगा फोन अपना, मनोज जी थोड़ा नीचे कीजिएगा फोन,
0: देखिए ये तमाम, ये आप देख रहे हैं उनका जन्मदिन भी मनाया जा रहा है।
1: मनोज जी जरा केक की तरफ दिखाएंगे आप हमें, जैसे जन्मदिन मना रहे हैं ये आप केक भी खा रहे हैं, जरा केक की तरफ दिखाइए मुझे जरा थोड़ा सा कैमरा घुमा के।
0: मैं केक, ये देखिए, ये देखिए, ये केक आप देख रहे हैं, ये देखिए केक, और ये बच्चे सारे लोग जो है जन्मदिन मना रहे हैं। देख लिए ना सारे बच्चे जो है उनका जन्मदिन मना रहे हैं, और इसके बावजूद भी अगर यदि सरकार नहीं सुनती है तो एक विडंबना की बात है, इससे ज्यादा निर्दयी सरकार और कुछ नहीं हो सकती है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, थैंक यू टू ऑल यू नो द यंग पीपल, दोज हु जॉइंड अस ऑन दिस, दिस इज द वॉइस ऑफ द यंग, दे आर सेलिब्रेटिंग हेमंत सोरेन्स बर्थडे देयर ऑन द स्ट्रीट्स राइट आउटसाइड द विधानसभा ऑफ झारखंड, एंड ऑल दैट दे आर होपिंग from, and I was there on the protest side, everybody calls him Hemant Chacha, all they are expecting from Hemant Chacha in return gift is to heed to the demands, CBI inquiry, cancellation of all the examination which was done by this tainted company, by this blacklisted company, that's all that the demand is. Bahut bahut shukriya Manoj hamare saath judne ke liye, thank you so much for joining us on that. There is some breaking news coming in at this moment. All right, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has taken on the attack on Leader of Opposition Rahul Gandhi. Kiran Rijiju has said that Rahul Gandhi first demands a statement from the Home Minister in the House and then he tries runs away from the discussion.
2: Sarkar ka taraf se bahut saaf shabdon mein Lok Sabha mein maine bayan diya hai ki Rahul Gandhi ji कई दिनों से गृहमंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं और सदन में स्टेटमेंट देना चाहिए, ये बार बार कह रहे हैं। अब जब सरकार तैयार है, गृहमंत्री जी डिटेल पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि आप आरोप लगा करके फिर भाग जाते हो, ये लोकतंत्र में सही नहीं है, आपको फेस करना होगा। गृहमंत्री जी पूरी जितना समय कांग्रेस चाहते हैं उतना चर्चा करके जवाब देने के लिए तैयार है। मैं सिर्फ राहुल गांधी जी को यह अनुरोध करता हूं, भागना नहीं है। अब बहाना मार के प्रधानमंत्री का जवाब चाहिए, माफी मांगना, ये सब नाटकबाजी नहीं है। अभी तो सीधा चर्चा, हम सीधा सीधा लोकसभा में हम चर्चा चाहते हैं, और राहुल गांधी भाग नहीं सकते। देखिए, चर्चा मांग करके भाग जाना, ये तो डरपोक ही करते हैं। डरपोक कौन होते हैं? जो चर्चा मांगते हैं और जब जवाब देने के लिए तैयार है तो फिर भाग जाते हैं और सुनते नहीं है।
1: My colleague Himanshu covers the Parliament for NDTV is joining me at this moment. Himanshu, Kiran Rijiju trying to in fact, somehow get Rahul Gandhi into this whole discussion by saying the Home Minister is ready for the Congress party. Now they should come and listen to what the Home Minister has to say inside the Parliament.
3: Yes, and this is the first response, in fact, from Government of India on the new set of demands that Rahul Gandhi has kept in his press conference. And in fact, Kiran Rijiju was very categorical. He said that Rahul Gandhi has been insisting for last 3 weeks that Home Minister of India, Amit Shah, should come to Parliament, to Lok Sabha, and make a statement on why police took action. And now when government has offered not only a statement from Home Minister on the issue and the demands that opposition has, but also to have a full-length debate on the student protest from Delhi to Jharkhand, then now when Rahul Gandhi is trying to run away from Parliament, when government is ready for a debate. And that's where he said that Rahul Gandhi is acting like a coward. So I think with the kind of exchange of words that has happened after the government's offer to start a full-length debate on the student protest in Lok Sabha, I think there is a new stalemate now before us, because Rahul Gandhi has put conditions before the government. Government for the moment saying we're ready for a full debate. So we'll have to wait and see what Lok Sabha Speaker decides, because I did ask Parliamentary Affairs Minister that whether tomorrow government will push for starting a debate on this issue. He said, yes, we will definitely try to push and initiate a debate on the student protest, but the schedule of the discussion will have to be decided by Lok Sabha Speaker. Ankit.
1: Himanshu, thank you for joining me with all those details. We will have to wait and see. And now, of course, with what has happened in Ranchi, what will happen is, while the Home Minister is going to speak and give his reply on what and who was responsible for what we saw on 20th July in the national capital when the students were beaten up, now, of course, what happens in Ranchi will also be part of all those discussions. We will slip into a very short break at this moment. I'm coming back with much more on the other side. Stay tuned.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service. Modo Elite.
3: आर प्योर शाही पनीर मसाला, delicious, healthy, everyday.

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: just few inches away is POK.
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं. Is it fire?

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
2: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, every day.

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज POK।
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
1: Just few inches away is POK.
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी, आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
1: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है
2: कुछ इससे भी अनोखा
1: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान मसाला।

0: FIR or an ECIR has also been filed by the Enforcement Directorate. But the main question, the distance between Jantar Mantar and Jharkhand. If a lathi charge by the police was bad in Delhi, how can it be acceptable in Ranchi? Joining us today from the stadium where for close to 3 weeks now, students have been sitting on dharna demanding their rights. Joining us is Alok Dubey, who is a leader of the Congress in Jharkhand. We also have Ashok Barak, who is a leader of the BJP. And we have an audience of students. The students, the supporters that they have got over here, people who have appeared for the JPSC, who have problems, who have complaints with the entire examination system. Let's begin by asking Alok Dubey ji, लोग तो ये पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने आज तो ट्वीट करके ये भी कह दिया कि जो रांची में हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था, पर ये कंडेम करके क्या होगा? आप तो सरकार में ना है यहाँ पे।
1: मैडम, एक तो सबसे पहले आप बिल्कुल रॉन्ग बोल रही हैं। छात्रों को यहाँ आंदोलन करने का पूरी आज़ादी है। आज 17 दिन हो गए, संवेदनशीलता का एक एग्जाम्पल दिया है झारखंड की सरकार ने, एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ के बच्चों ने कि हमें संस्कार भी मालूम है और हमें राजनीति को समझना है और बच्चों की समस्याओं को। अगर लाठी चार्ज की बात होती तो बच्चे विधानसभा कैंपस के 100 मीटर अंदर तक पहुँच गए थे। ये संवेदनशीलता है प्रशासन की कि
0: लाठीचार्ज तो 100 मीटर से पहले ही,
1: 6 ब्रैकेटिंग तोड़ने के बावजूद, और यहाँ तक कि आंदोलनकारी बच्चों का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि उपद्रवी लोग घुस गए थे जिन्होंने उपद्रव करने की कोशिश की। ये ऑन द रिकॉर्ड है।
0: यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो कि वहाँ पर विधानसभा में मौजूद थे। कौन कौन थे विधानसभा में वहाँ पर? क्या वहाँ पे उपद्रवी थे जो कि घुस गए थे?
2: नहीं, हम लोग वहाँ नहीं
3: थे। ये चला है और लाठी चार्ज भी हुआ है वहाँ पर, हम गए थे।
2: गिरा है, गोलामारी
0: है। नहीं, एक सेकंड, वहाँ

0: के टूटा, लाठियां क्यों मारनी शुरू कर दी?
1: छह ब्रैकेटिंग टूटा और संवेदनशीलता की इस बड़ा उदाहरण नहीं है कि एक हवा में टीयर गैस छोड़ना, एक पैलेट गन से टारगेट करके छोड़ना, देयर इज अ बिग डिफरेंस।
0: और वो हालात तो ये भी सही है,
1: मंतर में जो हुआ था वहां बच्चियों के जो प्राइवेट पार्ट्स थे उसमें डंटा मारा गया था, और यहां पर जो बच्चे बच्चियां आंदोलन आगे करके गेट तोड़ते चले गए, यहां के जिला प्रशासन ने उनको बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन एक वो कार्रवाई नहीं थी, वो बताया गया कि आपको एक सेंसिटिव जगह है विधानसभा, जहां 100 मीटर की दूरी पर आप पहुंच रहे हैं,
0: ये सेंसिटिव तो संसद भी है ना, सेंसिटिव तो पार्लियामेंट भी है,
1: बिल्कुल है।
0: तो पार्लियामेंट में जब मार्च जा रहा था तो उसको कैसे जस्टिफाई कर रहे थे?
1: हम तो बोल रहे हैं कि हमने जो रोकने की कोशिश की है, हमने बच्चों के साथ कोई अमानवीय और बर्बरता पूर्वक कार्रवाई नहीं की है, ये 17 दिनों का उदाहरण है।
0: अच्छा, कोई अमानवीय बर्बरता पूर्वक कार्रवाई नहीं हुई, वो तो जब बिल्कुल 100 मीटर दूरी पर पहुंच गए तभी पुलिस ने रोका है।
2: देखिए, आज जिस प्रकार से झारखंड में जो घटनाएं हुई है, ये लोकतंत्र के लिए काला दिन है, एक तरह से डेमोक्रेसी को कुचला गया है इस सरकार के द्वारा में। आज भगवान बिरसा मुंडा जी के वंशज, युवा शक्ति, छात्र शक्ति, जब अपने हक हुकुम को लेकर, अपने न्याय मांगने को लेकर, जब हजारों लाखों की तादाद में वो भी जेन्युइन मांग को लेकर विधानसभा मार्च करते हैं, और भी पूरी की पूरी शांतिपूर्वक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपने जेन्युइन मांग, वो मांग क्या थी कि जेपीएससी जेसएससी में जो
0: देखिए फोटो दिखा रहे हैं, वो आप व्हाट्सएप पे फोटो लेकर के आए हैं, क्या दिखा रहे हैं, दिखाइए।
2: एक भी झंडा आज का कोई कार्यक्रम में, पूरे नेशनल टेलीविजन में एक भी झंडा नहीं था, ये पुराना फेक एडिट करके बनाया गया है। और मैं कह सकता हूं कि ये कांग्रेस अलग अलग स्टेट में इनके सिद्धांत और इनकी आइडियोलॉजी बदल जाती है। आज राहुल गांधी जी से यहां जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो 16 दिनों से छात्र यहां अनशन कर रहे, वो पूछ रहे हैं राहुल गांधी जी तुम कब आओगे, लेकिन राहुल गांधी जी के लिए जंतर मंतर का मंतर जयपाल सिंह मुंडा आते आते हो जाता है छू मंतर। ये डबल स्टैंडर्ड राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, जेएमएम और जितने विपक्षी लोगों को, देश के छात्र देख रहे हैं कि किस तरह से आज
0: बताइए आप कह रहे हैं पत्थर चले।
1: देखिए, यहाँ सब काम राहुल गांधी को नहीं करना है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के बच्चों को, जिन्होंने शालीनता, सभ्यता और संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए शांतिपूर्वक आंदोलन किया, और उस शांतिपूर्वक आंदोलन को डिस्टर्ब करना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के उपद्रवी परेशान करना चाहते थे।
0: एक सेकंड, हाँ बात रखिए, एक तो रास्ते में मत आइए, रुकिए। आप गए थे वहाँ पर मार्च में गए थे, आप अपनी बात रखिए, आप वहाँ पर मार्च करते हुए गए थे, क्या आपके ऊपर वाटर कैनन हुआ?
3: देखिए, ये वाटर कैनन आंसू गैस चलाया गया है, ठीक है, मेरा आग में भी अभी मतलब लहर रहा है। हम यही ये चीज मतलब बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट का न्याय की बात हो, न कि आरोप और प्रत्यारोप। आरोप प्रत्यारोप के लिए ये मंच नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट का हर मुद्दे पे न्याय होना चाहिए। जितने भी पेपर लीक हुए हैं, चाहे मतलब सीट बेचा गया हो, चाहे पूरा एकदम भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, सबका न्याय होना चाहिए। बस
0: देखिए, यहाँ पर बहुत सारे नाराज हैं, जो लड़के हैं नाराज हो रहे हैं, नाराज होने की जरूरत नहीं है। और बिल्कुल आप सही बात कर रहे हो कि छात्रों की बात होनी चाहिए, छात्रों की बात होनी चाहिए। आप किधर से आए?
4: मैं स्टूडेंट हूँ, मैं किसी के साइड से आया नहीं।
0: अरे किसी जगह से आए हो?
4: मैं ये रांची में ही रहता हूँ।
0: आपका जो आज मार्च हुआ था उसमें लगता है कि कुछ हासिल हुआ?
4: हासिल ये हुआ है कि छात्र जिस चीज के लिए आंदोलन कर रहे थे, है ना, वो उन्होंने मतलब जो आज शांतिपूर्ण चीजों को करा, ये नहीं बोलूंगा कि हाँ ठीक है लाठी चार्ज हुआ चीजें हुई, लेकिन मेरे को यहाँ पे ये सही नहीं लग रहा कि यहाँ पे लोग शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट एक दूसरे से वहाँ क्या हुआ, ये कंपैरिजन अच्छा नहीं लग रहा ना मेरे को।
0: शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट था, पर उसके ऊपर जो लाठी चार्ज हुआ क्यों?
4: लाठी चार्ज हुआ मैं मानता हूँ वो गलत हुआ, बट आप यहाँ पे आकर के ये चीज जो कर रहे हो, ये मेरे को बिल्कुल सही नहीं लग रहा।
0: आई आगे चल के, लेट्स गो बैक एंड वॉच।
5: कौन नहीं बैठा?
0: जो आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं, और उन्होंने बकायदा ट्वीट करके कहा है कि जो यहाँ पर हुआ झारखंड में वो गलत हुआ, वो कह रहे हैं कि बल प्रयोग नहीं होना चाहिए।
2: देखिए, छात्रों की भावना है, यहाँ जितने छात्र

0: छात्र है, सबकी भावनाएं है कि छात्र हित की बात होनी चाहिए। हम शुद्ध 100% 24 कैरेट गोल्ड के साथ हम बोलेंगे कि छात्र हित की यहाँ चर्चा होनी चाहिए। हम भी इनकी बात से सहमत है। चर्चा ये होनी चाहिए कि जिस अभय तिवारी जो 10 से 13 परीक्षा पास करता है, ब्लैकलिस्टेड एजेंसी TDPL के माध्यम से जो 13-13 एग्जाम कराता है, अपने पत्नी, अपने भाई और अपने साला को परीक्षा में पास कराता है, नौकरी लगाता है और खुद रैंक 2 लाकर यहाँ अधिकारी बन बैठता है, तो छात्र की मांग वही है कि जो गांव गरीब किसान मजदूर का बेटा, आदिवासी बुलवासी का बच्चा, जब गांव देहात से माड़ भात साग रोटी खाकर, जब जमीन गिरवी रखकर पढ़ता है, लिखता है, जब एग्जाम लिखता है, तो अभय तिवारी जैसे लोग सीट को खरीद के वो आदिवासी बुलवासी, वो किसान गरीब का बेटा का सपना को चकनाचूर करने का काम करता है। तो छात्र की मांग यही है कि TDPL को रद्द करे, JPSC JSSC 2019 से लेकर
1: आप कूद जाते हैं ना बीच में,
0: पूरी रद्द करे और CBI जांच की मांग होनी चाहिए।
1: जब आप बीच में कूद जाते हैं तो लोगों को डर लगता है कि उसका राजनीतिकरण हो जाए।
0: कोई राजनीतिकरण नहीं कर रहा है, हम छात्र हित के लिए हैं, थे और भविष्य में भी रहेंगे।
2: 2014 से 2019 के बीच में रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, आज उनका बयान आपके TV पर सुन रहा था। 5 साल में जो मुख्यमंत्री एक JPSC एग्जाम नहीं कर पाता है, वो नैतिकता की बात करता है? अगर JPSC को बर्बाद करने का किसी को श्रेय जाता है तो 2 मुख्यमंत्री, बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा, जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को भर्ती करवाया JPSC में, संथाल परगना के 20 में 16 लोगों को भर्ती करवाया इन दोनों ने, लेकिन हम उसको जस्टिफाई ये नहीं करते हैं कि अगर सरकार ने किया तो हम भी यही करेंगे।
1: तो आलोक जी आप ऐसा कीजिए ना,
3: सरकार कहते हैं इसको वाटर बॉटरी कहते हैं। आपको एक बात बता दूं, बात हमेशा वर्तमान समय की होती है। सत्य बताता हूं, लास्ट सेवन ईयर्स 22 पेपर लीक्स हुए मैम, जो आप देही से बचने के लिए इस सरकार में ये हुआ। इस सरकार 7 साल में 22 पेपर लीक हुए, हेमंत सरकार सोरेन की सरकार थी। आज सर आप जिस तरीके से बयानबाजी दे रहे हैं ना, साफ साफ लग रहा है कि आप अपने अकाउंटेबिलिटी से बच रहे हैं।
1: एक काम कीजिए, अकाउंटेबिलिटी आप ही की नहीं, हर सरकार की होनी चाहिए। आप CBI का इन्वेस्टिगेशन करा के भाजपा के लोगों को भी जेल में डलवा दो ना, डलवा दो आप उनको।
2: CBI का इन्वेस्टिगेशन 2 JPSC में हुए, वो रिजल्ट अब तक नहीं आए और वो सुप्रीम कोर्ट में है। भारत की सरकार कह दे कि CBI के जो है रिजल्ट, जो 2 JPSC के हमारे पास आए हैं, हम उसको जारी कर देते हैं। रह गई CID की बात। CID ने सरकार ने आंदोलन में आने से पहले बच्चों के लिए,
3: बात बच्चों की होनी चाहिए, बात ट्रांसपेरेंसी की होनी चाहिए, बात अकाउंटेबिलिटी की होनी चाहिए। आप हर बार दूसरे लोगों को बीच में लाकर हर बार मुद्दे से भटक
1: बच्चे की बात।
4: I have been a student here. फर्स्ट ऑफ ऑल बी अ वेरी वेरी डिसेंटली, आप लोग पहले शांत रह लीजिए। अभी मैं वहां से आ रहा हूँ, अभी हम लोग जहाँ पे विधानसभा में गए हुए थे, आई हैव बीन देयर, आई वॉज स्टैंडिंग देयर। और जब वहाँ पे जो छात्र नेता वहाँ पे एंटर करते हैं, उसके बाद 6 बजे जब बारिश होनी शुरू होती है, तब हम वहाँ से लौट रहे हैं। आई हैव बीन एक्सपीरियंसिंग इट एंड आई हैव बीन विटनेसिंग इट सिंस। प्रॉब्लम ये है ना सर, कि हम सरकार के विरुद्ध नहीं है, हम सरकार का सहायता चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट है ना, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि गवर्नमेंट कौन है। हमारा क्वेश्चन है ब्यूरोक्रेसी से। आखिर JPSC के चेयरमैन किसी सरकार के आदमी नहीं थे, ये अभय तिवारी किसी सरकार के आदमी नहीं है। अगर ये सरकार के आदमी नहीं है तो आज अगर सरकार ये बात बोलती है कि JSSC के जो भी लोग आज रिक्रूट हुए हैं उनको बुरा लगेगा या भला लगेगा, या जो रिक्रूटमेंट हो चुकी है ये रद्द नहीं हो सकता है, तो ये सरकार सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? सरकार हमारे साथ खड़े होने चाहिए। हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार आप हमारे साथ खड़े हो, एंड यू अगेन क्वेश्चन ऑल दिस ब्यूरोक्रेसी, या कुछ भी अगर डिस्क्रिपेंसीज हो रही हैं, कुछ भी अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आप हमारा साथ दीजिए ना, तभी तो हम आपको कल अपने रिप्रेजेंटेटिव की तरह आइडेंटिफाई करेंगे। आप तो रिप्रेजेंटेटिव हो ही नहीं हमारे, आप तो हमारे अगेंस्ट हो रहे हो, आप हमारे पर क्यों लाठीचार्ज कर रहे हो?
1: बहुत बढ़िया बोला, नाम क्या है?
4: चंदन।
1: बताइए, चंदन ने सभ्यता से बहुत शालीनता से अपनी बात रखी और वो ये कह रहे हैं, देखिए कई जगह होती, अगर राजनीति करनी होती तो कहते फलां इस्तीफा दो, धमाका सरकार गिरा दो। ये कह रहा है सरकार आप हमारे साथ खड़े होकर के, बस हमारी नौकरी एक पारदर्शी तरीके से हमें दिलवाई है। उसमें अगर आप राजनीति करके इसने ऐसा क्यों नहीं किया, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, मान लीजिए ना, एक पारदर्शी तरीके से आप इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए।
2: दो मिनट का मुझे भी विनम्रता से बोलने की इजाजत दीजिएगा। आंदोलन में जाने से पहले सरकार ने सीआईडी गठित की, चेयरमैन इस्तीफा दिए, आज चेयरमैन सलाखों के पीछे हैं। चार मंत्रिमंडल की उच्च स्तरीय कमेटी गठित की, बच्चों के साथ चार मर्तबा राउंड टेबल पर बैठक हुई, सरकार ने कहा 23
1: इन बच्चों के साथ दो बार
2: दूसरों 23-25
1: अब एनएसयूआई के साथ बैठेंगे तो वो बैठक किसी काम की,
2: पहले से सब कुछ जान के बैठे हैं, मुझे बोलने भी दीजिए। 23-25 का बैकलॉग और 2000 ये आपका 14वां जेपीएससी, सरकार ने बोल दिया कि हम इसको खत्म करते हैं। अब रह गया आपका कि जो सीजीएल और जेएसएससी है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो है वो मामले चल रहे हैं।
1: छोटा सा सवाल पूछती हूँ, ठीक है, एक सेकंड ये बोलेंगे, हाँ एक सेकंड ये बोलेंगे अभी, इसके बाद मैं एक छोटा सा चीज पूछती हूँ। यही तर्क जो है ना दिल्ली में भी दिए जा रहे थे, उन्होंने भी कहा कि हमने 13 लोगों को गिरफ्तार कर दिया, हमने रीनीट करा दिया। वहां पर सैद्धांतिक तौर पर एक मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, तो सरकार ने कहा ठीक है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। यहाँ पर एक सैद्धांतिक तौर पर वो कह रहे हैं कि आप सीबीआई का जांच करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी, जो बीजेपी सरकार में धांधली हुई है उसको भी जेल में डालिए, जो आपकी सरकार में धांधली हुई है उसको भी जेल में डालिए।
2: अच्छा,
1: ये उनकी मांग है।
2: बहुत अच्छा सवाल किया मैंने आपने मैडम, वो सरकार अकाउंटेबल नहीं है जो बच्चों की बात नहीं सुन रही है, जो सरकार बच्चों की बात सुनने को तैयार है, जो सरकार बच्चों के लिए काम करने को तैयार है, जो सरकार मंत्री बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, पूरी जेपीएससी भंग कर दी गई, सलाखों के पीछे चले गए।
1: यहीं पे आप पलट गए ना अभी, अच्छी खासी एक सेकंड ये बोला,
4: इंडिया इज अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे ये जो तीन टीयर्स हैं वो डिवाइड होती है, इसमें बहुत सही तरीके से डिवीजन है, जिसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का डिवीजन है। हमारा प्रॉब्लम लेजिस्लेचर से है ही नहीं, हम चाहते हैं लेजिस्लेचर हमारे साथ आए ताकि हम एग्जीक्यूटिव्स को उनके अकाउंटेबिलिटी पे क्वेश्चन कर सकें। हम कहीं पे भी लेजिस्लेचर को ना ला रहे हैं, ना उनसे किसी भी तरीके से हम ना उन पे क्वेश्चन कर रहे हैं, ना उनसे जवाब चाहते हैं।
1: आप मुझे बस इतना बताइए, अभी अगर जांच होगी तो ये दूर तक जाएगी, तब मत बोलिएगा कि बीजेपी के खिलाफ विछंड क्यों हो रहा है। आप ये खड़े होने के लिए तैयार हैं छात्रों के साथ कि फुल फ्लेज्ड इन्वेस्टिगेशन हो जाए, जो आपकी सरकार में हुआ है उसकी भी जांच हो, जो इनकी सरकार में हुआ है उसकी भी।
0: देखिए, इसमें कोई बोलने वाली कोई बात नहीं है, मैं एक झारखंडी हूं और मैं ट्राइबल आदिवासी झारखंडी हूँ, और मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि इस चीज़ से प्रभावित मेरा परिवार के लोग भी है। तो हम एक बीजेपी का प्रवक्ता नहीं, एक झारखंडी होने के नाते और एक झारखंडी युवा होने के नाते, युवा भावनाओं के अनुरूप ये सरकार को अकाउंटेबिलिटी लेते हुए सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी चाहिए। आज क्यों आज लाखों की तादाद में छात्र मार्च निकाले, क्योंकि वार्ता तो सरकार से हो रही थी। सरकार से जब वार्ता हो रही थी तो टेबल पर कौन सा ऐसा मामला आकर फंसा कि जिसको लेकर आज छात्र बारिश में भींगे भींगे लाठी खाए, टीआरएस के घास छोड़े गए, दौड़ा दौड़ा कर उनको आतंकवादी गुराजी सब मारा गया। इसलिए क्योंकि झारखंड में जितने भी पेपर हुई है सभी की सीबीआई जांच होनी चाहिए, और ये सरकार सीबीआई जांच से भाग रही है।
1: ठीक है, और एक चीज जो है, एक पैमाना वैसा ही होना चाहिए, लाठी अगर कोई उपद्रवी हो तो उसके ऊपर आप करें तो एक सेकंड ये मैं इनसे पूछ लेती हूँ, आप अभ्यर्थी हैं?
5: मैं अभ्यर्थी से त्रस्त हूँ, मैं एग्जाम दे चुकी हूँ, मैं 2-3 बार एसएससी का एग्जाम दे चुकी हूँ जिसका आज तक रिजल्ट नहीं आया। मैं उस चीज़ से मैं आज छात्र को देख रही हूँ, तो कुछ समय पहले था जब मैं भी इस चीज़ से गुजरती थी, वो दर्द मुझे हुआ, तो आज मैं छात्रों के साथ आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाने का
1: आपको
5: काम कर रही हूं।
1: आपको आपको ऐसा लगा था कि आज आपको मार्च डालने दिया जाएगा, या फिर जो लाठी चार्ज हुआ उसके बारे में आप क्या कहें?
5: सबसे पहली बात कि अगर ये दो राउंड की बात हुई है, अगर ये फर्स्ट राउंड में ही हमारी बातें मांग पूरी हो जाती तो हमें आज विधानसभा घेराव करने का जरूरत नहीं पड़ता, पर सरकार ये मांग चाहती नहीं है। सरकार कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी छुपाने के लिए ये दिन पर दिन टाइम लेते जा रही है।
6: तो देखिए मैम, पहले तो बात ये है कि जो सरकार है, आप ऐसे सोचिए, सरकार हमारी दुश्मन नहीं है, या फिर ना हम सरकार के दुश्मन हैं, सरकार को हम ही ने चुन के लाया था, हमें इन पे पूरा भरोसा ही टूट गया है। एक भी, जैसे 26 साल हो गए झारखंड को, आज़ाद हुए, होने चाहिए 26 जेपीएससी, लेकिन चल कितने रहे 14। आप उसको समझिए, हमारी लड़ाई किस चीज़ से, पूरे सिस्टम से लड़ाई है। अगर मान लिया आज कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल की बात हो रही है, कर देते हैं, दोबारा क्या गारंटी है कि ये सही से करेंगे? ये भी एक डर बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग को काम है कि जो सिस्टम के अंदर है उनको पहले साफ करें, और उसके बाद जो चोरी हुई है उसको रद्द करें। बस
4: एज अ वॉइस ऑफ स्टूडेंट, एज अ वॉइस ऑफ यूथ, हमारा यही आवाज़ है कि हम किसी भी पार्टी स्पेसिफिक को टारगेट नहीं करना चाहते हैं। हम एक पर्टिकुलर रिफॉर्म लाना चाहते हैं जिसमें हर एक पार्टी, हर एक गवर्नमेंट, हर एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव ये बात को, अगर उनके पास पावर हमने दिया है तो वो ज़रूर पहुँचाए, और ये चेंजेस जरूर विधानसभा पे भी लाया जाए और चेंजेस भी लाए जाए।
7: मैम, आज झारखंड को अलग हुए 26 साल हो गया है, और झारखंड एक युवा झारखंड है, और इस युवा झारखंड में मैडम 26 साल में 26 जेपीसी होना चाहिए था, लेकिन केवल 8 जेपीसी हुआ है। केवल सिर्फ उसको लेयर में बढ़ा दिया गया है कि एक साथ हमने 3 कर दिया, 4 कर दिया, लेकिन उतना नहीं हो पाया मैम। और इस बीच में मैम, जो हम लोगों ने सरकार से वार्ता बार बार करा, तो सरकार ने हमारे कुछ मतलब जेन्युइन मांग को भी फुलफिल नहीं करा।
1: पर अब आज के बाद क्या होगा? अब आज तो जो अगर
7: मांग है मैम कि TDPL कंपनी के द्वारा जितने भी
1: एग्जाम तो है आपकी, ठीक, आपका नाम क्या है?
7: मेरा नाम गुलाम हुसैन।
1: हाँ, क्योंकि अब जब आपने मार्च निकाला, उन्होंने कह दिया है कि भाई हमने इसको भंग कर दिया है, तीनों मेंबर्स ने रिजाइन कर दिया है, उनको हमने अरेस्ट कर लिया है। मार्च में जहाँ तक सवाल था, आप मार्च आपको रोक दिया गया, अब आगे क्या करो?
7: मैम अभी आमरण अनशन चल ही रहा है, हमारे अनशन में बैठे दो बहने, दो भाई बैठे हुए हैं। जब तक मांग पूरा नहीं होगा ना, कोई आमरण से उठेगा नहीं।
1: बताइए दुबे जी, आप
8: ये तो 10 साल से, जितना साल से हो रहा है धांधली, या तो सीट बिकना या तो एग्जाम रद्द होना, ये तो पिछले हमेशा से यही हो रहा है ना।
1: अब अगर आप इनकी बात सुनेंगे, एक सेकेंड, अब आपने सारी आवाजें सुनी, इन्होंने कहा है कि आप भले से ही इनका मार्च रोक लेंगे, अनशन पे तो ये बैठे रहेंगे ना, कभी तो आगे आ करके आपको इनकी मांगे माननी ही पड़ेंगी।
2: मैडम फिर आप बायस्ड होके बोल रही हैं। बच्चों को कभी भी आंदोलन करने से नहीं रोका गया है, कभी भी नहीं रोका गया है। बच्चे प्रदर्शन कर सकते हैं, घेराव कर सकते हैं।
9: आज अगर आंदोलन से नहीं बच्चों को रोका गया तो आंसू गैस क्यों छोड़ा गया?
2: गलत बात मत करें, नंबर वन। नंबर दूसरा, हमारे पार्टी के द्वारा नहीं आने के बावजूद मैं इन्हीं बच्चों के लिए आया हूँ, और मैं छात्र राजनीति का उपज हूँ। आज भी मेरे शरीर पर कई जगह पुलिस के लाठियों के निशान है, 31 मुकदमे हुए हैं मेरे ऊपर।
1: वही निशान किसी बच्चे के,
2: बच्चों के लिए आया हूँ। और मैं मानता हूँ कि हेमंत सोरेन की सरकार न सिर्फ संवेदनशील है, बल्कि बच्चों के साथ पूरी ईमानदारी के साथ।
1: आपको पूरी छूट मिली हुई है यहाँ पर प्रदर्शन करने की?
10: यस मैम,
1: ये कह रहे हैं कि प्रदर्शन करने की पूरी तरीके।
6: मैम हमारी डिमांड है रिफॉर्म के लिए, ये लोग बात घुमा रहे हैं, बात को आप समझिए मैम, ये बातों को घुमा रहे हैं।
1: आप बताइए,
11: झारखंड बने हुए अभी 25 से 26 साल हो गए, यहाँ नियमित रूप से चुनाव होते हैं, लेकिन यहाँ नियमित रूप से एग्जाम क्यों नहीं होते हैं? हम हेमंत सोरेन जी को यही कहना चाहेंगे, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। हेमंत सोरेन जी, हम विद्यार्थी हैं, हम भारत माँ की संतान हैं, हम दिसोम गुरु के वंशज हैं, उनके अनुयायी हैं, जयपाल सिंह मुंडा जी के अनुयायी हैं। आपको समझना होगा, यह झारखंड केवल और केवल आपकी जागीर नहीं है। एक और हमारे मंत्री इरफान अंसारी जी कहते हैं कि मेरा बेटा बहुत टैलेंटेड है, मैं इसको जेपीएससी के एग्जाम में नहीं बैठाऊंगा। इरफान अंसारी जी रिम्स में अपने बेटे को बिना किसी क्वालिफिकेशन के उसको भेज देते हैं ऐसे ही, और हमें कहते हैं कि हम कीड़े मकोड़े हैं।
1: नहीं, पर ये तो कह रहे हैं ना कि आपको पूरा हक है प्रदर्शन करने का, कोई नहीं रोक।
11: मैम प्रदर्शन ये तो यही चाह रहे हैं, ये तो यही चाह रहे हैं मैम, कि हम केवल प्रदर्शन करके रहे, यहाँ बैठे रहे, और हेमंत सोरेन जी अपने घर में एसी की हवा खाते रहे, और विद्यार्थी यहाँ धूप में बीए करते रहे और बारिश में भीगते रहे।
1: अब इसका
2: नेताजी से पूछिए कि सीबीआई जांच से क्या दिक्कत है, जो इनके मंत्री जी क्या बोलते हैं कि झारखंड में पेपर लीक हुआ ही नहीं। जो भी वैसे मंत्री बोलते हैं जो स्वास्थ्य को पूरे झारखंड को संभाल रहे हैं, वो बोलते हैं पेपर लीक हुआ ही नहीं। अरे भाई सीबीआई जांच से क्या दिक्कत है, जेएसएससी सीजीएल से क्या दिक्कत है? अब रद्द कीजिए, आप जो साफ है तो रद्द कीजिए। सीआईडी जांच हो रही है कि नहीं हो रही है? एक सेकेंड हो रही है सीबीआई के रिजल्ट को हमने देखा है, सीबीआई के रिजल्ट को हमने देखा है। बाबूलाल जी अर्जुन मुंडा के समय में जो सीबीआई जांच भेजे गए थे वो अब तक नहीं हुए।
11: अगर इनके अंदर डर नहीं है, इनको अगर लग रहा है, एक्चुअली बात ये नहीं है, सॉरी चोरी छोटी हो या बड़ी ये मायने नहीं रखती, चोरी चोरी होती है। मेरा कहना ये है अगर आप सीआईडी के लिए हामी भर रहे हैं तो आप सीबीआई के लिए भी हामी भरिए। क्या आपको इसमें असंकोच क्यों है? कहीं आपके घर में खुद का ये खोटा होगा, आपके घर का खुद का सिक्का खोटा होगा, यही इशू होगा।
1: ये बच्चा दो सवाल पूछना चाहता है, हमारे चिल्ला चिल्ली मत कीजिए, दो सवाल है, आराम
7: से सर, आराम से आप सुनिएगा, मेरा दो तीन क्वेश्चन है बस। अभी जेपीएससी का बात नहीं हो रहा है, खाली जेपीएससी एसएससी या बच्चों का गवर्नमेंट स्कूल का स्थिति, कहीं पे भी आप चले जाओ, गांव में, मैं गांव से गवर्नमेंट स्कूल से आता हूं, गवर्नमेंट स्कूल का स्थिति झारखंड में आप जाके देख लो।
1: सवाल क्या है आप?
7: सवाल ये है कि वहां पे भी चोरी हो रहा, बच्चों का साइकिल और अंडा और ये मार रहे हो, और जेपीएससी में पेपर और सीट का घोटाला कर रहे हो। आप लोग एक जगह घोटाला नहीं कर रहे हो, और ये हेमंत सरकार नहीं, बीजेपी के टाइम में भी हुआ और हेमंत सरकार के भी टाइम में हो रहा है, और ये सुधार नहीं रहा। ये
11: वो लोग एक दूसरे पे, अगर सेंट्रल में होगी तो दूसरे ऑपोजिशन को घेरे, जो विपक्ष में पार्टी है उसको बोलेगी, उसके ऊपर थोपेगी। जो अभी
1: देखिए जो सिस्टमिक प्रॉब्लम्स है, और यहाँ पर यही लोग जो है ये सही चीज बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं सिस्टमिक। आप जब यहाँ पे आते हैं, एक बात है कि आपका जो एक पॉलिटिक्स होती है कि उन्होंने लाठी चार्ज करवाया, आप उनके ऊपर हावी हो गए, अब आप आज चुप है, अब आप कह रहे हैं कि सब कुछ बहुत चंगा है, रांची में कुछ भी नहीं हुआ, ना वाटर कैनन चला, ना लाठी चली, लोग ऐसे ही गिर गए सड़क के ऊपर। यहाँ बच्चे बता रहे हैं कि आपकी भी जब सरकार थी तब भी प्रॉब्लम्स थी, तब आप चुप क्यों बैठे?
0: देखिए ऐसा नहीं है, जेपीएससी 1 और 2 की जहाँ तक बात है, सीबीआई उसको टेक ओवर की, और सीबीआई ने टेक ओवर किया, चार्जशीट 6 साल
1: बोलने दीजिए, बीच में मत बोलो।
3: देखिए ऐसे वाटर बॉटरी करते रहो, बचाते रहो, पिछले सरकार में क्या हुआ, फिलहाल हम अभी के सिस्टम से लड़ेंगे ना, अभी क्या।
1: ये देखिए ये यहाँ का छात्र है जो पीछे हुए, ये दो नेता खड़े हैं।

0: क्या है? छात्र तो रिफॉर्म जेपीएससी की बात कर रहे हैं, छात्र यही बात कर रहे हैं रिफॉर्म जेपीएससी की बात कर रहे हैं और सिस्टम की रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, वही तो हम भी बात कर रहे हैं। देखिए बात होती है अकाउंटेबिलिटी की, जवाबदेही की। देखिए हम कंपेयर नहीं करेंगे, अभी छात्र की भावना है कि सिर्फ यही की बात होनी चाहिए, हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं कि जब पूरे झारखंड के छात्र बात कर रहे हैं कि जेपीएससी जेएससी और टीडीपीएल के द्वारा जो 19 से लेकर 26 तक जितने एग्जाम कराए गए उसको रद्द करें, रद्द करें और सीबीआई और सीबीआई और
1: सीबीआई एंड आई डोंट नो इफ यू हर्ड वन ऑफ द पीपल आई डोंट नो इफ यू हर्ड वन ऑफ द स्टूडेंट्स देयर सेड वेरी सिंपल दैट द डिबेट शुड स्टॉप अबाउट हु इज कल्पेबल दिस फिंगर पॉइंटिंग वन साइड एंड द अदर If you want the truth to be out there, हमें डिबेट नहीं चाहिए, हमें सीबीआई चाहिए। ये बोल यहाँ पर आवाज आप सुन रहे हैं सीबीआई की, और बार बार जब एक ही मांग लेकर के छात्र वापस आपके पास आते हैं और आप कहते हैं कि नहीं सब कुछ करेंगे पर ये नहीं करेंगे, तो क्यों
2: मैडम अभी
1: वहीं आके फंस जाए
2: एकदम? आप लोग, आपने कहा दिल्ली जंतर मंतर का, मैंने सुनो भाई दिल्ली के मीडिया ने जंतर मंतर को कवर नहीं किया, झारखंड को कवर करने के लिए आप लोगों की बहुत चिंता है। सरकार ने रिफॉर्म्स की बात कही है। आपका बारी आगा बोलिएगा। सरकार ने रिफॉर्म्स की बात कही है, उन्होंने कहा एक्सएलआरआई आईआईएम सबके साथ
1: नहीं चाहिए एक्सएलआरआई आईआईएम, जब आदमी सीबीआई रट रहा है।
2: एक इंक्वायरी अभी हमने ईडी तक को दे दिया, ईडी को दे दिया कि ईडी को भी इन्वॉल्व हो जाए, ईडी को भी इन्वॉल्व।
1: यहाँ पे सिर्फ आपसे पूछूंगी, यहाँ पे कितने लोग, एक सेकेंड, यहाँ पर कितने लोग सीआईडी से संतुष्ट है अपने हाथ उठाइए। यहाँ पर कितने लोग चाहते हैं कि सीबीआई की जांच हो?
2: कि कितने लोग सीआईडी से संतुष्ट भी हैं?
1: नहीं तो पूछा मैंने, कितने लोग सीआईडी से संतुष्ट हैं? I'm going to leave it at this because if there is one thing that you've seen in the public mood here, it's absolutely clear that this kind of browbeating and gaslighting is simply not going to work anymore. There's been a singular demand that these students have had right from the beginning, that this rot has gone on for too long, it has gone too deep, and if a complete cleanup is needed, there should be a centralized investigation so that people who are hand in glove with the corruption that has happened all of this while should be brought to book and should be thrown out of the system. That's when there will be actual justice for the students, not just the ones you're hearing right now, not just the ones who took lathis and tear gas today, but also the ones who continue to sit in agitation over there. For the time being, aap sabka bahut bahut dhanyawad yahan aane ke liye aur hamse judne ke liye bahut dhanyawad.
3: Thank you ma'am.
1: That is the month of Savan. It is very, very auspicious time, and you've got locals who have come here after going to the temple, and they are putting a tilak with all these people who are now headed out. You know, they are going to the Vidhan Sabha, they are going for a Vidhan Sabha gherao, and they are here, you know, putting that small tilak on the head of all of these young men before they leave this stadium. Ma'am, aapka naam kya hai?
4: Hamara naam Suman Kumari hai, aur main Rati si hoon. और आज सोमवार का दिन है, मैंने सावन पे फास्टिंग रखा है। आज हमारे लिए, इन जेपीएससी के बच्चों के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज मैं सुबह उठते साथ भोले बाबा के पास पूजा करते ही अपने भाइयों को, अपने बहनों को आके तिलक दे के उन्हें मैं आंदोलन के लिए भेज रही हूँ।
1: तो क्यों, आपको क्यों लगा यहाँ आकर के आप तिलक क्यों लगा रही हैं?
4: भाई लोग जा नहीं सकते हैं तो उनके लिए मुझे आना पड़ा, मुझे आना ज़रूरी था।
1: If you just see the cross section of people who are over here, you've on the one hand got among the four people who are sitting on a fast unto death, you've got an Umme Habiba also, and you've got a Savita also, because it is across barriers, across caste, but pretty much the same class that they are fighting against, the class that is trying to get their dues, their rights, and just fight for a simple job. Habiba, pehle ye bataiye, aap kidhar se hain?
5: Ji, main Bokaro se hoon.

0: यहाँ पर आप क्यों इस आंदोलन का हिस्सा बनी?
1: क्योंकि मैम हमारे अधिकारों का हनन हुआ है, सिर्फ मेरा नहीं, यहाँ पे जितने अभ्यर्थी हैं, इनफैक्ट पूरे झारखंड के बच्चे के अधिकारों का हनन किया गया है, दुरुपयोग किया गया है। संविधान हमें अवसर की समानता देती है, इक्वालिटी देती है, लेकिन हमारे अवसर को छीना गया है। आर्टिकल 16 जब हमें अवसर दे रहा है, यहाँ पे अवसर की समानता दे रहा है, जॉब करने नौकरी करने की समानता दे रहा है, लेकिन ये लोग हमारे नौकरी को खा जा रहे हैं, हमारी अवसर को ये लोग छीन रहे हैं। तो ये सारी विडंबनाएं हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से हम अभ्यर्थियों को मजबूरन यहाँ पर आकर के धरना प्रदर्शन करना पड़ा। और इतना ही नहीं, धरना प्रदर्शन आज हमारा यहाँ पे 17वां दिन होने को जा रहा है, लेकिन मैं बता दूं कि उतने दिनों से कुछ भी सरकार नहीं सुन रही थी हमारी। जो भी धरना प्रदर्शन हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे थे, इवन देन वो अनसुनी कर रही थी, और इसलिए हम लोगों को अनशन करना पड़ा। एक मात्र
0: आप यहाँ पर 17 दिन से अनशन पर बैठी हुई हैं, घर वालों ने कहा नहीं कि भाई तबीयत बिगड़ जाएगी, लड़की हो वहाँ पर आंदोलन पर बैठी हो?
1: मैम अनशन का आज हमारा 7वां दिन है, धरना प्रदर्शन का 17वां दिन है। तो मैं बता दूँ कि जब मैं प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर आई थी, तब घर वालों फैमिली को नहीं पता थी, मैं और मेरे भैया आए हुए थे कि नहीं लड़ना है इस बार। उसके बाद में फिर मम्मी पापा को पता चल गया, और अनशन जब कर रही थी ये चीज़ नहीं बताई थी, इनफेक्ट उन लोगों को कल पता चली है जी। उससे पहले उन्हें पता चली थी, मेरा एक वीडियो देखे थे वो लोग, डॉक्टर्स आए थे चेकअप करने के लिए, तो बता दिया था कि बेहोश हो गई थी। तो ऐसे सारे मतलब माँ बाप से झूठ बोलना पड़ रहा है इस करप्ट सिस्टम की वजह से। और मम्मी जब जान गई तो बहुत ज़्यादा निराश भी हुई, रो भी रही थी, क्योंकि वो एक पल अपने बच्चे को भूखा नहीं छोड़ सकती है। माँ की ममता ऐसी होती है। और पिछले 7 दिनों से मैं यहाँ पे अनशन पे हूँ, भूखी बैठी हुई हूँ, तो उनके दिल को कितनी आहत पहुँचती होगी। और मेरा कहना माननीय मुख्यमंत्री जी से भी है कि हम उनके बच्चे नहीं हैं, क्या वो हमारे गार्जियन नहीं है? हम उन्हें अपना गार्जियन मानते हैं, अभिभावक की तरह मानते हैं, तो क्या उनके दिल को आहत नहीं पहुँच रही अभी तक से कि हमारे यहाँ राज्य के बच्चे भूखे पड़े हुए हैं? वो क्या हमसे आकर के वार्तालाप नहीं कर सकते? क्यों नहीं आ रहे वो? हम चाहते हैं कि वो आए और हमसे वार्तालाप करें।
0: आपको लगता है कि सरकार को लग रहा है कि वो तोड़ देंगे, आपका मनोबल तोड़ देंगे? कितने दिन बैठोगे यहाँ पे, उसके बाद सब भूल जाएंगे?
2: ये मैम जो हम लोगों ने भूख हड़ताल किया है, इस सर पर कफन बांध कर किया है कि यहाँ से जब तभी हटेंगे जब हम लोग के जीतने से चुतोगे, क्योंकि हम लोग किसी का अपना हक मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं।
0: जब आप दिल्ली के जो प्रोटेस्ट थे वो आपने देखे, वो भी देखे मैंने, वहाँ पे भी बहुत लड़कियाँ थी, यहाँ पर कम हैं बट हैं, ये देख के बहुत अच्छा लगा कि यहाँ भी लड़कियाँ हैं। जब आप उसको देखते थे और अपना प्रोटेस्ट देखते हो, तो आपको क्या अलग लगता है?
3: जी अलग दो चीज़ें हैं। पहली बात तो हमारा जो ये प्रोटेस्ट है बिल्कुल गांधीवादी तरीके से संवैधानिक है ना यहाँ पे। और एक चीज़ कि यहाँ पे जो हमने मर्यादा का ख्याल रखा हुआ है, जो एक संविधान भी ये कहता है कि किसी के लिए अभद्र लैंग्वेज का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो ये चीज़ है जो हमारे जिसको हमने सत्ता में बैठाया, जिन्हें हम अपना गार्जियन बनाया है, तो उनकी भी एक ओहदा है, इज्जत है, तो उस चीज़ का हमने ख्याल रखा है, मर्यादाओं का ख्याल रखा है। तो बिल्कुल संवैधानिक तौर तरीके से हमारे प्रोटेस्ट चल रहा है।
0: आपके लिए ज़रूरी क्यों था? क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि जगह जगह पर यहाँ कोड ऑफ कॉन्डक्ट आया हुआ है, मंच पर किसी प्रकार का राजनीतिक धार्मिक जातिगत वक्तव्य ना दें, मूल उद्देश्यों पर अपनी बातें रखें, व्यवस्था में सुधार के लिए है, किसी को आरोपित ना करें, अब शब्दों का प्रयोग, ये इतना ज़रूरी क्यों था कि जगह जगह पे ऐसे पोस्टर लगाए?
3: जी बिल्कुल, देखिए हम लोग यहाँ पे इस लड़ाई में हमारी सबसे बड़ी मजबूती है संविधान, क्योंकि ये संविधान हमें हक देता है, जिससे हमारा हक हनन हुआ और हम उसी हक को लेने आए हैं, तो ये हक ही हमें संविधान देता है। और हक अगर नहीं मिल रहा तो उसके लिए प्रोटेस्ट करने का भी हक हमें संविधान देता है। तो हम पूरी तरह संविधान में दिए गए मतलब उनके जो बताई गई जो बातें हैं संविधान में, जिस तरह से चलने के लिए हमें जो रास्ता बताया गया, हम उसी रास्ते पे चल रहे, एकदम बिल्कुल विशुद्ध गांधीवादी तरीके से और संवैधानिक तरीके से। तो इसलिए हमने ये सब लिखा हुआ है, क्योंकि जैसे यहाँ पे ये जो प्रोटेस्ट है पूर्ण छात्रों का प्रोटेस्ट है।
0: आपके घर में आप पहली हैं जिन्होंने सरकारी नौकरी का कोशिश किया?
4: जी मैम, मैं तो पहली हूँ जो घर से निकल के बाहर पढ़ने का कोशिश की, और यहाँ पे जिस तरह पेपर लीक हो गया उस तरह मैं तो एक भी रिजल्ट नहीं कर पाई। अब एक उम्मीद टूटा हुआ लग रहा है अब नहीं निकाल पाऊँगी। जिस तरह पेपर को बेचा जाता है खुलेआम, हम तो 2019 से तैयारी कर रहे हैं, उस समय 2 साल तो कोरोना हो गया था, उसके बाद फिर इधर वैकेंसियाँ निकलने लगी, जितनी भी वैकेंसियाँ निकली 2021 के बाद सारी की सारी बिक गई। और 2021-22 की वैकेंसी अभी 24-25 में एग्ज़ाम लिया जा रहा है, जब तक सीटें बिक नहीं जाती तब तक एग्ज़ाम भी नहीं लिया जाता मैम।
0: पापा आपके क्या करते हैं?
4: मेरे पापा किसान हैं।
0: तो घर में वो नहीं हुआ कि आप घर छोड़ के पढ़ने जा रही हो? सारी बाकी दीदी तो की तो शादी हो गई, आप अकेली नौकरी करने की?
4: मैम घर में हुआ था, मेरा घर तो यहाँ, मैं तो रांची में रहती हूँ, यहाँ टाउन में मेरा घर गांव तरफ है, तो मेरा घर में बोला भी गया था, समाज से भी हमको लड़ना पड़ा उस समय जब निकल रही थी, उस समय बोल रही कि लड़कियाँ यहाँ से भाग गई, और भाई भी बोला था कि तुम यहाँ पे रांची की हो और यहाँ बगल में सामने जाके उधर लॉज में जाके रहोगी, समाज क्या बोलेगा? हम बोले समाज कुछ भी बोले, वो हमको ले दे के नहीं चलाता है, स्ट्रगल करना तो मेरा फर्ज है, और मैं इतना दिन से पढ़ी हूँ और ऐसे बिना इतना पढ़ी हो के और घर में बैठी रहूँगी तो मुझसे नहीं हो सकता, तो मैं तो घर से भी लड़ी थी, समाज से भी लड़ी थी, बहुत स्ट्रगल की थी मैम, तब जाके यहाँ पे पहुँची थी। घर गांव तरफ सब बोल दिया था कि लड़की भाग गई।
0: एंड अगेन एंड अगेन, यू नो, मेनी पीपल आर सेइंग दैट व्हेन यू टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन व्हाट वाज सीन इन दिल्ली एंड व्हाट इज सीन इन झारखंड, इट्स एन अटेम्प्ट टू डिवाइड। नो, इफ देयर इज एनी वन मैसेज ऑफ यूनिटी यू सी हियर राइट ऑन दिस स्टेज वेयर पीपल फ्रॉम अक्रॉस कम्युनिटीज आर सिटिंग टुगेदर, बट वन थिंग दैट दे हैव इन कॉमन एंड एवरीवेयर ऑन दिस ग्राउंड और इवन अमंग द पीपल हु आर मार्चिंग टुवर्ड्स द विधानसभा, यू विल सी दिस हैपनिंग, अ कोड ऑफ कॉन्डक्ट दैट हैज बीन स्पेल्ट आउट टू एवरी सिंगल पार्टिसिपेंट, एंड दिस रियली स्टैंड्स आउट इन दिस प्रोटेस्ट। दे से डोंट गिव इट एनी पोलिटिकल, एनी कम्यूनल और एनी कास्टिस्ट कलर, धार्मिक, राजनीतिक, जातिगत वक्तव्य नहीं दें, आंदोलन के मूल उद्देश्यों पर अपनी बातें रखें, बी वेरी क्लियर दैट इट इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ दिस एजिटेशन दैट यू अडियर टू। हमारी लड़ाई व्यवस्था में सुधार की है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को मंच से आरोपित ना करें। दिस इज़ नॉट अबाउट टारगेटिंग एनी वन इंडिविजुअल, आस्किंग फॉर एनी वन पर्सन रेजिग्नेशन। यू जस्ट हर्ड द यंग लेडी, शी सेड वी नो दैट इट इज़ द चीफ मिनिस्टर हु इज गोइंग टू आंसर आर प्रॉब्लम्स, सो वी रिक्वेस्ट हिम टू फिक्स इट, टू नॉट बी एरोगेंट, टू नॉट मेक इट अ मैटर ऑफ ईगो, प्लीज लिसन टू अस। एंड फाइनली, अपने वक्तव्य में अब शब्दों का प्रयोग ना करें। Nowhere on this platform you will ever have seen anyone being abusive, being abrasive, making any personal slurs, and that really is the fundamental nature, because the people who are over here, they also know that they want to be a part of the same system. Tomorrow they are going to be a part of that system. They don't want to demolish that system. They just want to reform it. Imagine, here is somebody who was sitting on dharna against JPSC irregularities 10 years ago. Even today, he is carrying around a poster saying that when he sat on dharna, Hemant Soren, who was the chief minister 10 years ago, had broken his fast. This gentleman's fast. Kya naam hai aap?
5: Safi Imam. लेकिन मेरा नाम इमाम सफ़ी है, मीडिया हमें सफ़ी इमाम नाम दिया क्योंकि मैंने।
0: तो शफी जी, ये बताइए कि 10 साल पहले भी आप धरना कर रहे थे इसी चीज़ के लिए, 10 साल बाद भी अभी है।
5: आज हमारे बहन लोग, भाई लोग यहाँ पर अनशन में हैं और वहाँ भी अनशन है, मेरा ही स्टूडेंट हैं सारे, और जो विधायक जी या तमाम लोग जो यहाँ झारखंड में यदि अनशन के परिपाटी को शुरू करने में भी मैंने प्रयास किया था, क्योंकि आज से 15 साल।
0: The chief minister came, told Imam Shafi 10 years ago that we will listen to your demands, you call off your fast. And 10 years later, his sisters have to sit on dharna with the same demand because all of those promises were simply broken. Now think about why these people would have any trust in the government. You've got, in fact, the very symbols of Jharkhand that have been put up on stage everywhere. You've got tricolor, you've got Shibu Soren, and then you've got a code of conduct. You've got Birsa Munda. So they're saying, we are not here for anarchy. We are anti-corruption. We are not anti-establishment. We are not anti any party. And this is just years and years of what they have been through. JSSC student, ab to naukri pakki hai. Paper leak, itna atmavishwas achha nahi hota. Azad Bharat ka sabse bada niyukti ghotala. माध्यमिक आचार्य 2025 परीक्षा रद्द करो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट इट्स नॉट जस्ट जेपीएससी और यू नो द एसएससी, जेएसएससी एग्जाम्स, यू हैव गॉट एनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन दैट टेक्स प्लेस, वेदर इट बी फॉर अ ड्राइवर एट द डिस्ट्रिक्ट जेल, वेदर इट बी द माध्यमिक आचार्य विच इज़ द गवर्नमेंट टीचर्स जॉब, एवरी सिंगल एग्जाम दैट टेक्स प्लेस, you've got about 20, 30, 140 vacancies. 50,000 people apply for it. They feel we've qualified. They even go for the interviews. And then suddenly it just disappears. They don't know.

0: message with the police. Don't let things get out of hand.
1: So finally now, things are under control. For a bit there, it looked like the situation was getting tense.
2: मेरा नाम संजय महतो और हम हजारीबाग से आए हुए हैं। हम जे पी एस सी के छात्र हैं।
0: आपको लाठी लगी?
2: लाठी पूरा पैर से माथा तक, माथा तक इतना जोरदार लाठी था कि मेरा सर पूरा फट गया है।
0: आप कहा?
2: हम यहीं थे, यहीं पीछे थे और लाठीचार्ज स्टार्ट कर दी और पूरा इतना बेरहम नहीं मारना चाहिए, इतना निरंकुश सरकार नहीं होना चाहिए कि झारखंडी छात्र को लाठी से मतलब मारना चाहिए।
0: पर आपने तो कहा था कि आप यहाँ पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, शांतिपूर्वक करेंगे।
2: ये पीसफुल ही थी, हम लोग कुछ नहीं बोलिए किसी को, आज एक हम लोग हाथ चलाए हैं और ढेला फेंके या किसी तरह से गाली दिए हैं। हम लोग शांतिपूर्ण विधानसभा जा रहे थे मार्च करते हुए और हम लोग को विधानसभा पहुँचे भी नहीं दिया और हम लोग को मार के यही सारा माथा।
0: ये आपके क्या खून लगा हुआ है?
2: खून लगा हुआ है, देख लीजिए आप।
0: क्या आपके आपके ये ऑलराइट, सो ही इज शोइंग, ही इज गॉट अ ब्लड स्टेन कैप हियर।
2: पूरा पूरा देखिए, ये ब्लर देखिए, मेरा शर्ट देखिए, शर्ट से पूरा बांधे हुए थे और इस तरह से अगर ठंडी छात्र अगर प्रशासन मारेगी तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग मर जाए, हम लोग को हक अधिकार ना चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए। बताइए हमें सोरेन, तुम झारखंडी है कि नहीं है? बाहरियों के दबाव से तुम हम लोग को बर्बाद कर देगा क्या? 26 वर्ष हो गया झारखंड का, लेकिन आज तक नौकरी नहीं कर पाए यहाँ के व्यवस्था के चलते। बताइए हम लोग क्या करें?
0: आपका नाम?
3: चंडी तिवारी मैम नाम है मेरा।
0: चंडी बताइए क्या हुआ?
3: जितना जुल्म सरकार कर रहा है मैम, करने दीजिए, उतना हम लोग को सहने के ताकत मजबूत मिल रहा है, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए। अगर हम न जीते तो झारखंड का भविष्य मर जाएगा। सभी पुलिस वालों को बोलते हैं हम न जीते, इन लोग हट जाओ यार, और सब ड्यूटी अपना निभाओ, हम लोग जीतने वाले हैं, आप लोग भविष्य को अंधकार कर रहे हैं, इसलिए हट जाइए आप लोग, हट जाइए आप लोग।
0: Is that point where there is a face-off right now between the students on one side and the police, which is on the other. A while ago, there was a lathi charge, the water cannon was used. Remember, what had happened this morning was that the organizers of this protest had said that you have to march from the old Vidhan Sabha towards the new Vidhan Sabha, but it should be done in a peaceful fashion. Somewhere along the way, the story changed. The police says that there was aggression on part of the protesters. The marching students say that they were subjected to a lathi charge. One such person is here with me. आप वहाँ से मार्च करते हुए आ रहे थे, फिर क्या हुआ?
4: हम लोग पीसफुल तरीके से मार्च करते आ रहे थे मैम। हम लोग का जो जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच है, उस मंच से भी अनाउंसमेंट किया गया था कि हम लोग पीसफुल तरीके से आंदोलन करेंगे, हम लोग शांति मार्च लेकर आ रहे थे। और जो एसपी सर से बात हुई थी कि जो आप लोग का जो एरिया है जहाँ पे हम लोग डिसाइड किए बैठने के लिए, वहाँ पे बैठ जाइएगा। हम लोग बैठने के लिए हम बच्चे को समझा रहे थे, उसी बीच में इधर से पुलिस की तरफ से पूरा लाठी चार्ज करके जिस तरह से हमको समझाने के दौरान हमको भी चोट लगी है, दो तीन जगह, इधर भी अब पैर में भी मारा है, पीठ में भी, देखिए यहाँ भी चोट लगा है, यहाँ भी चोट लगा है, देखिए कट भी गया है। मैम हम बताना चाहते हैं कि हम लोग किसी भी तरह से, हम लोग छात्र हैं और किसी भी
0: आपको पैर में लाठी मारी है?
4: हाँ, ये देखिए पूरा लाल है। ये आपका सरकार के द्वारा से हम लोग का जो आंदोलन है उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार के जब हम लोग बोल दिए कि पीसफुल तरीका से, तो लाठी चार्ज करने की क्या जरूरत है?
0: पर वो कह रहे हैं वहाँ से पत्थर चले।
4: हम लोग किसी भी प्रकार से पत्थर नहीं चलाया है मैम, हम लोग जेनुअल छात्र हैं और छात्र में ही तो जो मांग कर रहे हैं वो हम लोग छात्र का ही, हम लोग किसी भी प्रकार पत्थरबाजी न किसी प्रकार से कोई भी डंटा उंटा से हम लोग मारने की है।
0: ओके, सो देव एक्चुअली ओके, देव गॉट वीडियोस ओवर हियर, हियर दे आर शोइंग समबडी हु हैज बीन हिट ऑन द बैक। अर्लियर वी हैड मेट समबडी हु वाज बीइंग टेकन अवे इन एन एम्बुलेंस, हियर दे आर शोइंग। All right, so there's this young man who was hit on the back and is lying unconscious on the road, hit by a water cannon.
5: पुलिस ने चला करके लाठी, मतलब हम लोग वो दौड़ा करके लाठी चार्ज की है मैम, इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं।
0: Okay, so they're showing evidence, they're saying that we were trying to get people to settle down, which is when the lathi charge started unprovoked. And most of the people you will see over here will be those who are walking around with a tricolor. In the distance also, the one image that will stand out is that of a tricolor. While we are walking there,
1: just to give you an idea of just how big the deployment of the police is over here.

0: देश का टायर जेके टायर।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: 와우, 마마, 가스 파티!
1: 어디 미리 가자?
2: Electricity bill paid.
3: Really?
2: Your mobile recharge is done.
3: How?
2: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to rupees 300 every month. Use Bheem app to pay.
3: It's the Mahi way.
4: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज
5: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है वक्त तराशता है जिसे तो जाने क्या क्या ना करता है जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन ना बन जाए आराम के लिए नहीं ठहरता है जब तक लाजवाब ना बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है तभी तो रिचमन बनना नहीं आसान है
6: Celebrating excellence across Germany.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
3: Just few inches away is POK.
2: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग चार लोगों के पास है
2: कुछ इससे भी अनोखा
1: कमला पसंद सिर्फ एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान मसाला।
3: Celebrating excellence across journalism and innovation, NDTV steals the spotlight at the 12th BCS Ratna Awards 2025-26. Best English News Channel of the Year, NDTV 24/7. Best News App of the Year, NDTV. Best Election Coverage of the Year, West Bengal Election Coverage. Best Podcast Show of the Year, NDTV Control All Defense. Best Primetime Anchor of the Year, Sayed Suhail. Best Female Anchor of the Year, Vasudha Venugopal. Best On-Ground Coverage of the Year, Operation Sindoor Coverage. NDTV, the Network of Impact.

बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब न बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है। तभी तो रिचमन बनना नहीं आसान है।

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: TOK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज TOK।
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?

जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है?
4: अरे मेरे राजा।

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज POK।
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?

0: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात.
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है.
3: अरे मेरे राजा,

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज POK.
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं. Is it fire?

0: of disaster zones to fighter jet cockpits and the world's most defining interviews.
1: It's incredible.
0: He has seen history break live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
1: Welcome to Left, Right, and Center.
0: Hard facts.
2: War-struck country.
0: Hard questions.
2: In the Ukraine.
0: 30 years of trust.
3: In the Kargil area.
2: North Ukraine.
1: In France. In Italy.
2: At Srinagar.
1: I am Mr. France.
2: Vishnu Shom for NDTV.
0: Vishnu Shom. Only on NDTV.
4: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक.
5: बैठ सकते आपके साथ, खाइए ना प्लीज. आप कहाँ से हैं?
6: हरियाणा.
5: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
6: डेढ़ महीने पे.
5: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
6: 3 साल.
5: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
6: बहुत.
5: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
6: श्रीनगर तक अलाउड.
5: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है.
4: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो.

0: Ladies and gentlemen, it's been nearly 2 weeks since the parliament has been functioning, and there has been a continuous logjam in the parliament. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has said that the centre is ready for a discussion over these issues that are concerning the students, and that the Home Minister Amit Shah is willing to respond on the floor of the House as well. Rijiju said that the government has made an offer for a full and detailed discussion, but the opposition must allow the House to function. He said that the opposition must listen to the Home Minister's response in the parliament and then participate in the discussions. Here are some reactions that we got earlier today from the parliament on that topic.
1: अभी तक तो केवल एक मांग थी रोज कि गृहमंत्री जवाब दे, और अगर सरकार कह रही कि गृहमंत्री जवाब दे रहे हैं, चर्चा हो, अब उससे भी भाग रहे हैं, तो इससे साफ है कि विपक्ष इस सदन को जानबूझ करके नहीं चलने दे रहा है। पूरा मानसून सेशन जो वॉश आउट हुआ, इनकी सोची समझी रणनीति है, और ये इस सदन को जनता के सवालों या ज्वलंत समस्याओं से माननीय सदस्य क्वेश्चन आवर जीरो आवर से केवल वंचित नहीं हुए, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं, केवल इसका इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं।
2: कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी पहले दिन से ये मांग कर रहे थे कि गृहमंत्री अमित शाह जी को स्टेटमेंट देना चाहिए। मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार के ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है, और स्टेटमेंट ही नहीं, छात्र का मामला को लेकर के पूरा चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृहमंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैं अनुरोध करता हूं कांग्रेस पार्टी और इनको,
3: राहुल गांधी संसद में और देश के नैरेटिव में हर दिन अपना गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। उनका उद्देश्य संवाद करना नहीं है, बल्कि अराजकता फैलाना है। पहले उन्होंने संसद शुरू होते समय नीट पर चर्चा मांगी। जब हम नीट पर चर्चा के लिए तैयार हुए तो वह राम मंदिर न्यास का विषय उठाकर के लिए आए, और उसके बाद फिर गृह मंत्री जंतर मंतर के घटना पर बयान दे इस बात पर अड़े। देखा जाए तो उनका कोई भी इरादा हाउस को न चलने देने का है, वह नहीं चाहते कि हाउस चले, और इसलिए पिछले 15 दिनों से वो हाउस को, सदन को बाधित कर रहे हैं, और बाधित करने के साथ साथ वो इस बात का भी प्रयास कर रहे हैं कि जंतर मंतर के विषय पर चर्चा हो। आज जब इस बात पर चर्चा होकर के तय हुआ कि जंतर मंतर के विषय पर चर्चा होगी, तो वह अब लोगों को गुमराह कर रहे हैं और गुमराह देश को कर रहे हैं कि संसद में जंतर मंतर में गोली चली, बल्कि वहां कोई गोली नहीं चली है, और गृह मंत्री हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
4: How Mr. Amit Shah suddenly saying that he is ready to speak? We're not interested in his fantasy conversations, or didn't authorize the shooting of our children. First, he should make that abundantly clear. After that, the question of any discussion arises. That is the situation. And that is what the opposition is demanding. That is what we've been demanding for the last 15 days. And that is what we are continuing to demand.
0: And while the deadlock is continuing in the parliament and there are several key bills in the pipeline, Finance Minister Nirmala Sitharaman today criticized the opposition over disruptions and walkouts in the parliament, accusing the communists of being total cowards and of being unable to face the facts. She alleged that the opposition would continue to keep on delaying the proceedings while defending the government's legislative agenda as comprising of very reformatory bills. Nirmala Sitharaman said that the opposition should take interest in participate in the discussions on the bills, and even expressed disappointment that the opposition members were walking out during debates on what she described as important reforms. Here's what the finance minister had to say in the parliament today.
5: Sir, actually, before I respond to the discussion points, These are the kind of bills on which the opposition should actually take interest and participate, sir. These are very reformatory. These are going to help the country to move forward fast. And these are steps on which no one can have a difference of opinion, except if they want to suggest improvements on it. So it's such a sad state, sir, that our opposition chooses to walk out on these kind of important debates.
0: Let's now touch upon another very crucial debate that's raging in the parliament. This is about the government's proposal to send the FCRA bill to a parliamentary committee. This has now become another flashpoint in the ongoing monsoon session. The government has reached out to the opposition over the Foreign Contribution Regulation Act or the FCRA bill amid the ongoing stormy monsoon session of the parliament. Now, according to top opposition sources, the government has proposed sending the FCRA bill to a parliamentary committee for further consideration. However, the opposition has rejected the move and it's demanding that the bill will be withdrawn altogether. The law tightens oversight over the use of foreign contributions and aims to improve transparency in the utilization of these funds. Some political reactions coming in on that story as well.
1: यहाँ पे हाउस नहीं चलने दे रहे आज चार बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है एफ सी आर ए हो डिलिमिटेशन हो महिला आरक्षण के लिए सरकार कटिबद्ध है तो ये तो पूरा मानसून सत्र अगर वॉश आउट हुआ है तो इसके लिए केवल राहुल गांधी जिम्मेदार है केवल अखिलेश है विपक्ष जिम्मेदार है
6: मेन थिंग इज टू लुक एट द टेक्स्ट सी हाउ दे मॉडिफाइड इट एंड देन वी विल डिसाइड व्हाट नीड्स टू बी डन आई थिंक आवर प्रिंसिपल एट द मोमेंट इज वेरी क्लियर What we know about the bills, what we've seen of the bills, we are not going to agree to either of them. So we are committed to opposing very strongly.
7: For this FCRA issues, with one voice, I've asked for either withdrawal of FCRA bill and repeal of Section 15 of 2010 Act. If not, then refer it to the Joint Parliamentary Committee. So therefore, the stand of our leader and DMK party is synchronizing with the demands of a Joint Action Forum on minorities and whatever the leader said in the beginning still continues.
8: FCRA केवल minorities को परेशान करने के लिए, केवल संदेश देने के लिए कि हम ये कठोर कार्रवाई कर रहे हैं आतंकवाद और इस तरह उधर जो फाइनेंस होता है पैसा लेकिन सच्चाई ये है कि भारत का पैसा कितना बाहर चला गया अगर 10 साल में 1,00,000 करोड़ आया होगा एफसीआरए में वो तो कानून है बैंक से आता है नियम है उसके नियम फॉलो करते हैं तो ये सरकार के पास जब कुछ नहीं बचता है
0: And now let's get to an important story that's making headlines down south. Tamil Nadu Chief Minister Vijay has moved a resolution in the State Assembly over the Tamil state anthem. Vijay has said that the state anthem is a symbol of Tamil identity and asserted that the sanctity of the mother tongue must be protected. He has stressed that Tamil Nadu cannot compromise on its pride and language identity. The Chief Minister also said that the state and its people will stand united in protecting Tamil pride. The DMK has supported the resolution and also suggested that it should be drafted as a law to avoid unnecessary repetition whenever there is a change in the order or arrangement. Here's what the Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay said in the assembly today.
9: பேசன வர ஓசை மட்டுமல்ல திரும்பவும் சொல்றேன் தமிழ் ஒரு மொழி மட்டுமல்ல அது நம்ம உயிர் அது நம்ம உணர்வு நம்மள பெத்த தாய அம்மான்னு சொல்றப்பெல்லாம் பாசமும் சொந்தமும் நம்மளை அறியாமலே உயிரா உறவா உணர்வா தானா உள்ளுக்குள்ள தோணும்ல அதே மாதிரி ஏன் இன்னும் ஒரு படி மேலே போயே சொல்லலாம் தமிழ்னு சொன்னாலே எப்படி இருக்கும் என்ன ஆகும்னு சொல்லவா வேணும் தாய் எப்படி ஒரு மிகப்பெரிய புனிதமோ அப்படிதாங்க தாய்மொழியும் அதுலேயும் நம்ம தாய்மொழி தமிழ் மொழி இப்படி சொல்றதே போதும் எல்லாருக்கும் நம்ம தாய்மொழி உணர்வை பத்தி புரியும்னு நினைக்கிறோம் எழுபது பத்தி இருந்துச்சு ஆனா நம்ம தமிழ்நாட்டில் 1970களில் இருந்து தமிழ்தாய் வாழ்த்து எல்லா அரசு நிகழ்ச்சிகள்லையும் கல்வி நிறுவனங்கள்லையும் தமிழ்தாய் வாழ்த்து முதல்ல பாடுறது ஒரு மரபாவே இருக்கு அதுக்கான அரசாணையும் இருக்கு மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே தமிழ் நமது உயிர் மூச்சு தமிழ் மொழி நமது அடையாளம் தமிழ் பண்பாடு நமது பெருமை அதனால தமிழ்தாய் வாழ்த்தின் மரியாதையை பாதுகாப்பதில் தமிழக வெற்றி கழக அரசு ஒருபோதும் சமரசம் செய்யவே செய்யாது
0: All right. right, from Tamil Nadu, let's now grow across to Bengal, where the BJP versus TMC face-off has intensified in West Bengal after an attack on Mamata's convoy during the North 24 Parganas visit. She was visiting the family of a victim who TMC claims died in police custody. Mamata Banerjee's convoy was allegedly attacked with shoes, bottles and stones. The former chief minister and TMC supremo claimed that she could have died in the attack if not for the windshield. But West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari has blamed Mamata, accusing her of not informing the police about her visit. But he added that the adequate security was provided to her.
10: We are currently at the location where Mamata Banerjee's vehicles were attacked en route to a family member of Trinamool Congress Party who was allegedly killed in police custody. And what we know, that this particular juncture was the location while Mamata Banerjee's vehicle was stopped by a group of unruly mob. They pelted mud and sleepers. Following that, a lot of politics is unfolding in Bengal.

0: from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at
1: Welcome back. Thank you for staying with NDTV. Well, Commonwealth Game heroes are back home, and this time they had a special audience. Prime Minister Narendra Modi met the CWG medalists and applauded their grit, dedication and the standout performances in Glasgow, where India finished with 39 medals and fourth place in the overall tally. We leave you with this snippet of that interaction that the CWG medalist had with Prime Minister Narendra Modi today.
2: मेरे फ्रेंड्स सर्कल मुझे वो बोलते थे कि तू के मोदी से मिल रही है तो आज मैं आपसे मिली हूँ सर मैं उनको बोल पाऊंगी कि हाँ मैं मोदी जी से मिली हूँ
3: इतने आंसू टपक रहे थे मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा है क्या हुआ वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी उस मैप पर नजर जाना मैं सच बताता हूँ लंबे समय तक लोगों को याद
4: 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी वो फाइट तो मैं जीत गया और फिर वो मेरे को बोला कि बोला भाईजान आपका नाम नरेंद्र है आपके कोच का नाम नरेंद्र है आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है
3: मेरे यहाँ मुझे यहाँ लगभग 12-13 साल हो गए इसी मकान में अगर मैंने रेगुलरली और हर बार किसी को रिसीव किया है किसी को मैं मिला हूँ तो खिलाड़ी है पिछले 10-12 सालों के आप लोगों के पुरुषार्थ के कारण भारत को लगातार विजय दिलाने के आपके प्रयासों के कारण और उत्तरोत्तर सफलता में नई ऊंचाइयां पार करने की परंपरा के कारण जो काम शायद हम स्कूलों में जाके कहें कि नहीं नहीं वे खेलना चाहिए ये करना चाहिए वो काम स्कूलों में जाकर के हम कर सकते थे उससे ज़्यादा आपका मेडल उनको इंस्पायर करता है तुमने मुझे वादा किया था पिछली बार कि तुम्हारी दोनों बेटियां खिलाड़ी बन जाएगी
5: हाँ जी अभी वे उम्र की छोटी है अगले कॉमनवेल्थ में एक घर में 3 मेडल ला के दिखाएंगे
3: पक्का
6: जब मैं दौड़ रहा था जब मेरा इवेंट था 29 को तो उस दिन गुरु पूर्णिमा थी तो उस दिन मेरे गुरु को मैंने एक गिफ्ट दे दिया
3: बड़ी शान बढ़ाई आपने इतने आंसू टपक रहे थे मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा है
7: मैं बहुत ज़्यादा खुशी थी इमोशनल भी थे उसी दिन खुशी ज़्यादा था और मैं इसलिए रोई थी कि मेरा पेरिस ओलंपिक में मेरे 1 kg में मेडल रह गई थी और एक प्लेयर्स की लाइफ में क्या क्या हमको फेस करना पड़ते हैं तो ये 4 साल के अंदर मैं कितना क्या क्या कुछ मैंने फेस किया था हर टाइम इंजरी ही चल रहे थे और फैमिली प्रॉब्लम वो सब हो रहा था तो बहुत मुश्किल से मैं ये 4 साल फेस किया था तो वो सब जब पोडियम में जब मैं खड़ी थे सर और हमारी जो फ्लैग ऊपर जाते हैं और हमारे नेशनल एंथम जब बजते हैं तो सर हम रुक नहीं सकते सर
3: क्या हुआ वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी
8: हम लोगों का तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस था लास्ट डे था और सब जीत के गए थे और पूरा इंडिया के लोग थे तो थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा था तो मैंने उनको अच्छे से बोला रिक्वेस्ट किया था सर फिर उन्होंने मान भी लिया अभी चेंज भी हो गया सर
3: इस विजय की परिस्थिति खुशी आनंद अपने साथियों के साथ और गेम पूरे हो चुके हैं तो एक हंसी मजाक मस्ती का मूड ऐसे समय उस मैप पर नजर जाना और उसको रजिस्टर करना और तुरंत सिर्फ मेडल लेते समय देश खड़ा हो जाता है ऐसा नहीं भीतर से देश का भाव मैं सच बताता हूँ ये वीडियो सामान्य नहीं है आपका लंबे समय तक लोगों को याद रहे
4: 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी और वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे तो मिलिट्री वाले को फ़ोन आया कि भाई पाकिस्तान से नहीं आना है तो फिर मैं फर्स्ट राउंड 4-1 से जीत गया, सेकंड राउंड 3-2 से जीत गया, पर दोनों के सर लग गए आपस में, तो दोनों के लग गए कट, वो फाइट तो मैं जीत गया। उसके बाद फिर दोनों चले गए हॉस्पिटल में टाके लगवाने के लिए। फिर 2014 में आप फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री जी मिले थे, और जो हमारे साथ आर्मी का कोच गया हुआ था उसका नाम नरेंद्र राणा था, और फिर वो कई देर तक सोच के मेरे को बोला कि भाईजान एक बात बोलूँ, वहाँ बोलो, बोला भाईजान आपका नाम नरेंद्र है, आपके कोच का नाम नरेंद्र है, आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है, तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है।
3: सिर्फ आपने मेडल की संख्या बढ़ाई ऐसा नहीं है, आपने एक पीढ़ी को तैयार किया। स्पोर्ट्स व्यवस्था एक बात है, लेकिन देश मेडल तब प्राप्त करता है जब देश में स्पोर्ट्स कल्चर बनता है। दोस्तों, आपने बहुत बड़ा काम किया है, देश का नाम रोशन किया है, आपको मैं बहुत बधाई देता हूं, और आप विश्वास कीजिए आगे भी आप विजयी होंगे, और फिर से एक बार यहीं पर हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
9: ये लगातार तीसरी बार देश को मेडल दिलवाया है, बहुत आशीर्वाद बेटा।
10: और थैंक यू सो मच, मैं सर के हाथ से मिला।

0: ऑन दैट टॉपिक।
1: अभी तक तो केवल एक मांग थी रोज कि गृहमंत्री जवाब दें, और अगर सरकार कह रही कि गृहमंत्री जवाब दे रहे हैं, चर्चा हो, अब उससे भी भाग रहे हैं, तो इससे साफ है कि विपक्ष इस सदन को जानबूझ करके नहीं चलने दे रहा। पूरा मानसून सेशन जो वॉश आउट हुआ, इनकी सोची समझी रणनीति है, और ये इस सदन को जनता के सवालों या ज्वलंत समस्याओं से माननीय सदस्य क्वेश्चन आवर जीरो आवर से केवल वंचित नहीं हुए, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं, केवल इसका इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं।
2: कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी पहले दिन से ये मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह जी को स्टेटमेंट देना चाहिए। मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार की ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है, और स्टेटमेंट ही नहीं, छात्र का मामला को लेकर के पूरा चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैं अनुरोध करता हूं कांग्रेस पार्टी और इनको कि गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, पूरा सुनना पड़ेगा।
3: राहुल गांधी संसद में और देश के नैरेटिव में हर दिन अपना गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। उनका उद्देश्य संवाद करना नहीं है, बल्कि अराजकता फैलाना है। पहले उन्होंने संसद शुरू होते समय नीट पर चर्चा मांगी। जब हम नीट पर चर्चा के लिए तैयार हुए तो वह राम मंदिर न्यास का विषय उठा करके ले आए, और उसके बाद फिर गृह मंत्री जंतर मंतर के घटना पर बयान दे इस बात पर अड़े। देखा जाए तो उनका कोई भी इरादा हाउस को न चलने देने का है, वह नहीं चाहते कि हाउस चले, और इसलिए पिछले 15 दिनों से वो हाउस को, सदन को बाधित कर रहे हैं, और बाधित करने के साथ साथ वो इस बात का भी प्रयास कर रहे हैं कि जंतर मंतर के विषय पर चर्चा हो। आज जब इस बात पर चर्चा होकर के तय हुआ कि जंतर मंतर के विषय पर चर्चा होगी, तो वह अब लोगों को गुमराह कर रहे हैं और गुमराह देश को कर रहे हैं कि संसद में जंतर मंतर में गोली चली, बल्कि वहां कोई गोली नहीं चली है, और गृह मंत्री हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
4: Now Mr. Amit Shah suddenly saying that he is ready to speak, we're not interested in his fantasy conversations. We're interested in whether he authorized or didn't authorize the shooting of our children. First, he should make that abundantly clear. After that, the question of any discussion arises. That is the situation. And that is what the opposition is demanding. That is what we've been demanding for the last 15 days. And that is what we are continuing to demand.
0: And while the deadlock is continuing in the parliament and there are several key bills in the pipeline, Finance Minister Nirmala Sitharaman today criticized the opposition over disruptions and walkouts in the parliament, accusing the communists of being total cowards and of being unable to face the facts. She alleged that the opposition would continue to keep on delaying the proceedings while defending the government's legislative agenda as comprising of very reformatory bills. Nirmala Sitharaman said that the opposition should take interest in participate in the discussions on the bills, and even expressed disappointment that the opposition members were walking out during debates on what she described as important reforms. Here's what the finance minister had to say in the parliament today.
5: So actually, before I respond to the discussion points, these are the kind of bills on which the opposition should actually take interest and participate, sir. These are very reformatory. These are going to help the country to move forward fast. And these are steps on which no one can have a difference of opinion, except if they want to suggest improvements on it. So it's such a sad state, sir, that our opposition chooses to walk out on these kind of important debates.
0: Let's now touch upon another very crucial debate that's raging in the parliament. This is about the government's proposal to send the FCRA bill to a parliamentary committee.

0: This has now become another flashpoint in the ongoing monsoon session. The government has reached out to the opposition over the Foreign Contribution Regulation Act or the FCRA bill amid the ongoing stormy monsoon session of the parliament. Now, according to top opposition sources, the government has proposed sending the FCRA bill to a parliamentary committee for further consideration. However, the opposition has rejected the move and it's demanding that the bill will be withdrawn altogether. The law tightens oversight over the use of foreign contributions and aims to improve transparency in the utilization of these funds. Some political reactions coming in on that story as well.
1: यहाँ पे house नहीं चलने दे रहे। आज चार bill introduce हो रहा है। FCRA हो, delimitations हो, महिला आरक्षण के लिए सरकार कटिबद्ध है। तो ये तो पूरा मानसून सत्र अगर वॉश आउट हुआ है तो इसके लिए केवल राहुल गांधी जिम्मेदार है, केवल अखिलेश है, विपक्ष जिम्मेदार है।
2: मेन थिंग इज टू लुक एट द टेक्स्ट, सी हाउ दे मॉडिफाइड इट एंड देन वी विल डिसाइड व्हाट नीड्स टू बी डन। आई थिंक आवर प्रिंसिपल एट द मोमेंट इज वेरी क्लियर। What we know about the bills, what we've seen of the bills, we are not going to agree to either of them. So we are committed to opposing very strongly.
3: For this FCRA issues, with one voice, I've asked for either withdrawal of FCRA bill and repeal of Section 15 of 2010 Act. If not, then refer it to the Joint Parliamentary Committee. So therefore, the stand of our leader and DMK party is synchronizing with the demands of a Joint Action Forum on minorities, and whatever the leader said in the beginning still continues.
4: FCRA केवल minorities को परेशान करने के लिए, केवल संदेश देने के लिए कि हम ये कठोर कार्रवाई कर रहे हैं आतंकवाद और इस तरह उधर जो फाइनेंस होता है पैसा। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत का पैसा कितना बाहर चला गया। अगर 10 साल में 1,00,000 करोड़ आया होगा FCRA में, वो तो कानून है, बैंक से आता है, नियम है, उसके नियम फॉलो करते हैं। तो ये सरकार के पास जब कुछ नहीं बचता है।
0: Now let's get to an important story that's making headlines down south. Tamil Nadu Chief Minister Vijay has moved a resolution in the state assembly over the Tamil state anthem. Vijay has said that the state anthem is a symbol of Tamil identity and asserted that the sanctity of the mother tongue must be protected. He has stressed that Tamil Nadu cannot compromise on its pride and language identity. The Chief Minister also said that the state and its people will stand united in protecting Tamil pride. The DMK has supported the resolution and also suggested that it should be drafted as a law to avoid unnecessary repetition whenever there is a change in the order or arrangement. Here's what the Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay said in the assembly today.
5: பேசுன வர்ற ஓசை மட்டுமல்ல, திரும்பவும் சொல்றேன், தமிழ் ஒரு மொழி மட்டுமல்ல, அது நம்ம உயிர், அது நம்ம உணர்வு. நம்மளை பெத்த தாய அம்மான்னு சொல்றப்பெல்லாம் பாசமும் சொந்தமும் நம்மளை அறியாமலே உயிரா உறவா உணர்வா தானா உள்ளுக்குள்ள தோணும்ல. அதே மாதிரி ஏன் இன்னும் ஒரு படி மேலே போயே சொல்லலாம், தமிழ்னு சொன்னாலே எப்படி இருக்கும், என்ன ஆகும்னு சொல்லவா வேணும். தாய் எப்படி ஒரு மிகப்பெரிய புனிதமோ அப்படிதாங்க தாய்மொழியும். அதுலேயும் நம்ம தாய்மொழி தமிழ்மொழி இப்படி சொல்கிறதே போதும், எல்லாருக்கும் நம்ம தாய்மொழி உணர்வை பற்றி புரியும்னு நினைக்கிறோம். 70 பற்றி இருந்துச்சு, ஆனால் நம்ம தமிழ்நாட்டில் 1970களில் இருந்து தமிழ் தாய் வாழ்த்து எல்லா அரசு நிகழ்ச்சிகள்லையும் கல்வி நிறுவனங்கள்லையும் தமிழ் தாய் வாழ்த்து முதல்ல பாடுறது ஒரு மரபாகவே இருக்குது, அதுக்கான அரசாணையும் இருக்குது. மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, தமிழ் நமது உயிர் மூச்சு, தமிழ் மொழி நமது அடையாளம், தமிழ் பண்பாடு நமது பெருமை. அதனால் தமிழ் தாய் வாழ்த்தின் மரியாதையை பாதுகாப்பதில் தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு ஒருபோதும் சமரசம் செய்யவே செய்யாது.
0: Right, from Tamil Nadu, let's now grow across to Bengal, where the BJP versus TMC face-off has intensified in West Bengal after an attack on Mamata's convoy during the North 24 Parganas visit. She was visiting the family of a victim who TMC claims died in police custody. Mamata Banerjee's convoy was allegedly attacked with shoes, bottles and stones. The former chief minister and TMC supremo claimed that she could have died in the attack if not for the windshield. But West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari has blamed Mamata, accusing her of not informing the police about her visit. But he added that the adequate security was provided to her.
6: We are currently at the location where Mamata Banerjee's vehicles were attacked en route to a family member of Trinamool Congress Party who was allegedly killed in police custody. And what we know, that this particular juncture was the location while Mamata Banerjee's vehicle was stopped by a group of, unruly mob. They pelted mud and sleepers. Following that, a lot of politics is unfolding in Bengal. Trinamool Congress, including Trinamool Chief and the former Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, has alleged it was and planned assassination attempt on her. However, Chief Minister of West Bengal, day after this this very shocking incident unfolded in North Chobbish Parana, himself visited the same place and also met the family, reassured all kind of stalked action against the perpetrators with regard to the alleged custodial death of a TMC worker, and said that there was no involvement of Bharatiya Janata Party worker as per the attack on Mamata Banerjee's vehicle is concerned. What we know, an elaborate security arrangement has been done over here following this incident, but it is simmering the politics in Bengal as, very shockingly, Mamata Banerjee, for the first time while she stepped out of Kolkata, her vehicle came under attack on Sunday. With camera person Ruth Tripathi, this is Riktik for NDTV.
7: चेरीबेल वो है मेरे को गाड़ी में बड़े बड़े पत्थर मारा गया बाहर से एंटी सोशल पुलिस का सामने हमको इतना गाड़ी को अटक किया था हम गाड़ी का कांच शीशा खुला रखता तो हमारा माथा फट जाता हम लोग सब मर जाता ऐसा पुलिस का सामने में हुआ हम कभी ऐसा हमला नहीं देखा
8: क्या कर रहे इतना पुलिस
7: बीजेपी को प्रोटेक्शन दे रहा है
9: ढूके चाइसन जे রকা পে মেরে দিয়েছে বিজেপি মেরে দিয়েছে তৃণমূলের সম্পদ আর বাড়ির লোক বলছে যে আমার তো প্রশাসন পুলিশের উপরে স্যাটিসফাই আমরা রহস্য উন্মোচন হোক চাই রকা পে ছিল সেই অবস্থায় পিটিয়ে মেরেছেন অসুস্থ বিচার চাই এবং লোকাল সরকার এবং পুলিশই আমাকে বিচার দিতে পারবে মমতা ব্যানার্জি বিচার দিতে পারবে না তার বাড়ির লোক বলছে আর আপনি ওখানে ছুটির দিন একজন লয়ালকে সঙ্গে নিয়ে রাজনীতি করতে গেছেন পুলিশকে না জানিয়ে পুলিশ তো এত বড় অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছে দেখলাম যেটা তো ওনার পাওয়া উনি এখন ওই ক্যাটাগরিতে পড়েন কিনা সন্দেহ আছে আমাদের নির্দেশ আছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী 15 বছর ছিলেন বয়সও হয়েছে ওনাকে যতটা সম্ভব পূর্ণ নিরাপত্তা এবং ওনার সম্মান রাখা উচিত সে কাজ পুলিশ করেছে পুলিশ কিন্তু খারাপ কিছু করেনি তো ওনাকে বলবো আপনাকে ওই বাড়ির লোক দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে আপনি বলছেন যে না আমি দরজা ভেঙে ঢুকবো এই কাজগুলো করবেন আপনার আপনার কাছ থেকে যদি কেউ সাহায্য চায় আপনার যদি কেউ হস্তক্ষেপ চায় আপনি নিশ্চয়ই করুন কিন্তু আপনি অহেতু এখন উন্নয়নের সময় এই সময় আপনি দয়া করে কোনো জায়গায় গিয়ে এমন কিছু করবেন না যাতে স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত হয়।
0: If you're planning your next travel by Air India, this story will be of umpteen importance to you. Well, the probe into Air India turbulence incident involving the flight AI2379 is widening, with both Indian and the French air accident investigation bodies now set to join the probe. Airbus, remember, will also support the turbulence investigation, providing technical assistance by sending a team of specialists. It was earlier Air India which had written to Airbus flagging the issues reported by the pilots during the flight. The airline in a statement had said that the investigation is being conducted under the Accident Investigation Bureau and that it will extend full cooperation in the probe. Meanwhile, questions remain over the pilots' medical test. The Civil Aviation Ministry said yesterday that the pilots were tested as per prescribed norms. The result of the pilot in command requires a retest with the sample sent to a laboratory for confirmation. For now, the investigation is widening on multiple fronts, from the aircraft's sudden plunge to the turbulence encountered mid-air, and now the questions surrounding the pilot's

0: BOK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
1: Welcome back. Thank you for staying with NDTV. Well, Commonwealth Game Heroes are back home, and this time they had a special audience. Prime Minister Narendra Modi met the CWG medalists and applauded their grit, dedication and the standout performances in Glasgow, where India finished with 39 medals and fourth place in the overall tally. We leave you with this snippet of that interaction that the CWG medalist had with Prime Minister Narendra Modi today.
2: मेरे फ्रेंड्स सर्कल मुझे वो बोलते थे कि तू के मोदी से मिल रही है, तो आज मैं आपसे मिली हूँ सर, मैं उनको बोल पाऊंगी कि हाँ मैं मोदी जी से मिली हूँ।
3: इतने आंसू टपक रहे थे, मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा है। क्या हुआ, वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी? उस मैप पर नजर जाना, मैं सच बताता हूँ, लंबे समय तक लोगों को याद।
4: 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी, वो फाइट तो मैं जीत गया और फिर वो मेरे को बोला कि मतलब भाईजान आपका नाम नरेंद्र है, आपके कोच का नाम नरेंद्र है, आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है, तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है।
3: मेरे यहाँ मुझे यहाँ लगभग 12-13 साल हो गए इसी मकान में, अगर मैंने रेगुलरली और हर बार किसी को रिसीव किया है, किसी को मैं मिला हूँ, तो खिलाड़ी है। पिछले 10-12 सालों के आप लोगों के पुरुषार्थ के कारण, भारत को लगातार विजय दिलाने के आपके प्रयासों के कारण, और उत्तरोत्तर सफलता में नई ऊंचाइयां पार करने की परंपरा के कारण, जो काम शायद हम स्कूलों में जाके कहें कि नहीं नहीं भाई खेलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो काम स्कूलों में जाकर के हम कर सकते थे, उससे ज़्यादा आपका मेडल उनको इंस्पायर करता है। तुमने मुझे वादा किया था पिछली बार कि तुम्हारी दोनों बेटियां खिलाड़ी बन जाएगी।
5: हाँ जी, अभी वे उम्र की छोटी है, अगले कॉमनवेल्थ में एक घर में 3 मेडल ला के दिखाई।
3: पक्का?
6: जब मैं दौड़ रहा था, जब मेरा इवेंट था 29 को, तो उस दिन गुरु पूर्णिमा थी, तो उस दिन मेरे गुरु को मैंने एक गिफ्ट दे दिया।
3: बड़ी शान बढ़ाई आपने। इतने आंसू टपक रहे थे, मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा है।
7: मैं बहुत ज़्यादा खुशी थी, इमोशनल भी थे उसी दिन, खुशी ज़्यादा था, और मैं इसलिए रोई थी कि मेरा पेरिस ओलंपिक में मेरे 1 kg में मेडल रह गई थी, और एक प्लेयर्स की लाइफ में क्या क्या हमको फेस करना पड़ते हैं, तो ये 4 साल के अंदर मैं कितना क्या क्या कुछ मैंने फेस किया था, हर टाइम इंजरी ही चल रहे थे और फैमिली प्रॉब्लम वो सब हो रहा था, तो बहुत मुश्किल से मैं ये 4 साल फेस किया था, तो वो सब जब पोडियम में जब मैं खड़ी थी सर, और हमारी जो फ्लैग ऊपर जाते हैं और हमारे नेशनल एंथम जब बजते हैं, तो सर हम रुक नहीं सकते सर।
3: क्या हुआ, वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी?
8: हम लोगों का तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, लास्ट डे था और सब जीत के गए थे और पूरा इंडिया के लोग थे, तो थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा था। तो मैंने उनको अच्छे से बोला, रिक्वेस्ट किया था सर, फिर उन्होंने मान भी लिया, अभी चेंज भी हो गया सर।
3: इस विजय की परिस्थिति, खुशी आनंद अपने साथियों के साथ और गेम पूरे हो चुके हैं, तो हंसी मजाक मस्ती का मूड, ऐसे समय उस मैप पर नजर जाना और उसको रजिस्टर करना और तुरंत सिर्फ मेडल लेते समय देश खड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं, भीतर से देश का भाव, मैं सच बताता हूँ, ये वीडियो सामान्य नहीं है, आपका लंबे समय तक लोगों को याद रहे।
4: 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी, और वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे तो मिलिट्री वाले को फ़ोन आया कि भाई पाकिस्तान से नहीं आना है। तो फिर मैं फर्स्ट राउंड 4-1 से जीत गया, सेकेंड राउंड 3-2 से जीत गया, पर दोनों के सर लग गए आपस में, तो दोनों के लग गए कट, वो फाइट तो मैं जीत गया। उसके बाद फिर दोनों चले गए हॉस्पिटल में टाके लगवाने के लिए। फिर 2014 में आप फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री जी बने थे, और जो हमारे साथ आर्मी का कोच गया हुआ था उसका नाम नरेंद्र राणा था। और फिर वो कई देर तक सोच के मेरे को बोला कि भाईजान एक बात बोलूँ। वहाँ बोलो, बोला भाईजान आपका नाम नरेंद्र है, आपके कोच का नाम नरेंद्र है, आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है, तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है।
3: सिर्फ आपने मेडल की संख्या बढ़ाई ऐसा नहीं है, आपने एक पीढ़ी को तैयार किया। स्पोर्ट्स व्यवस्था एक बात है, लेकिन देश मेडल तब प्राप्त करता है जब देश में स्पोर्ट्स कल्चर बनता है। दोस्तों, आपने बहुत बड़ा काम किया है, देश का नाम रोशन किया है, आपको मैं बहुत बधाई देता हूं। और आप विश्वास कीजिए, आगे भी आप विजयी होंगे और फिर से एक बार यहीं पर हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
9: ये लगातार तीसरी बार देश को मेडल दिलवाया है, बहुत आशीर्वाद बेटा।
10: और थैंक यू सो मच, मैं सर के हाथ से मेरा बर्थडे था तो आज सर की
9: बहुत बधाई। वाह,
10: देखिए
9: मेडल सगर देखा।

0: Ladies and gentlemen, it's been nearly 2 weeks since the parliament has been functioning, and there has been a continuous logjam in the parliament. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has said that the centre is ready for a discussion over these issues that are concerning the students, and that the Home Minister Amit Shah is willing to respond on the floor of the House as well. Rijiju said that the government has made an offer for a full and detailed discussion, but the opposition must allow the House to function. He said that the opposition must listen to the Home Minister's response in the parliament and then participate in the discussions. Here are some reactions that we got earlier today from the parliament on that topic.
1: अभी तक तो केवल एक मांग थी रोज कि गृहमंत्री जवाब दें, और अगर सरकार कह रही कि गृहमंत्री जवाब दे रहे हैं, चर्चा हो, अब उससे भाग रहे हैं, तो इससे साफ है कि विपक्ष इस सदन को जानबूझ करके नहीं चलने दे रहा। पूरा मानसून सेशन जो वॉश आउट हुआ, इनकी सोची समझी रणनीति है, और ये इस सदन को जनता के सवालों या ज्वलंत समस्याओं से माननीय सदस्य क्वेश्चन आवर जीरो आवर से केवल वंचित नहीं हुए, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं, केवल इसका इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं।
2: कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी पहले दिन से ये मांग कर रहे थे कि गृहमंत्री अमित शाह जी को स्टेटमेंट देना चाहिए। मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार के ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामला

0: लेकर के चर्चा के लिए तैयार है। और स्टेटमेंट ही नहीं, छात्र के मामला को लेकर के पूरा चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैं अनुरोध करता हूं कांग्रेस पार्टी और इनको कि गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, पूरा सुनना पड़ेगा।
1: राहुल गांधी संसद में और देश के नैरेटिव में हर दिन अपना गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। उनका उद्देश्य संवाद करना नहीं है बल्कि अराजकता फैलाना है। पहले उन्होंने संसद शुरू होते समय नीट पर चर्चा मांगी। जब हम नीट पर चर्चा के लिए तैयार हुए तो वह राम मंदिर न्यास का विषय उठा करके ले आए और उसके बाद फिर गृह मंत्री जंतर मंतर के घटना पर बयान दे इस बात पर अड़े। देखा जाए तो उनका कोई भी इरादा हाउस को न चलने देने का है, वह नहीं चाहते कि हाउस चले और इसलिए पिछले 15 दिनों से वो हाउस को सदन को बाधित कर रहे हैं और बाधित करने के साथ साथ वो इस बात का भी प्रयास कर रहे हैं कि जंतर मंतर के विषय पर चर्चा हो। आज जब इस बात पर चर्चा होकर के तय हुआ कि जंतर मंतर के विषय पर चर्चा होगी तो वह अब लोगों को गुमराह कर रहे हैं और गुमराह देश को कर रहे हैं कि संसद में जंतर मंतर में गोली चली, बल्कि वहां कोई गोली नहीं चली है और गृह मंत्री हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
2: नाउ मिस्टर अमित शाह सडनली सेइंग दैट ही इज रेडी टू स्पीक, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हिज फैंटेसी कॉन्वर्सेशंस। वी आर इंटरेस्टेड in whether he authorized or didn't authorize the shooting of our children. First, he should make that abundantly clear. After that, the question of any discussion arises. That is the situation. And that is what the opposition is demanding. That is what we've been demanding for the last 15 days. And that is what we are continuing to demand.
3: And while the deadlock is continuing in the parliament and there are several key bills in the pipeline, Finance Minister Nirmala Sitharaman today criticized the opposition over disruptions and walkouts in the parliament, accusing the communists of being total cowards and of being unable to face the facts. She alleged that the opposition would continue to keep on delaying the proceedings while defending the government's legislative agenda as comprising of very reformatory bills. Nirmala Sitharaman said that the opposition should take interest in participate in the discussions on the bills and even expressed disappointment that the opposition members were walking out during debates on what she described as important reforms. Here's what the finance minister had to say in the parliament today.
4: So actually, before I respond to the discussion points, these are the kind of bills on which the opposition should actually take interest and participate, sir. These are very reformatory. These are going to help the country to move forward fast. And these are steps on which no one can have a difference of opinion, except if they want to suggest improvements on it. So it's such a sad state, sir, that our opposition chooses to walk out on these kind of important debates.
3: Let's now touch upon another very crucial debate that's raging in the parliament. This is about the government's proposal to send the FCRA bill to a parliamentary committee. This has now become another flashpoint in the ongoing monsoon session. The government has reached out to the opposition over the Foreign Contribution Regulation Act or the FCRA bill amid the ongoing stormy monsoon session of the parliament. Now, according to top opposition sources, the government has proposed sending the FCRA bill to a parliamentary committee for further consideration. However, the opposition has rejected the move and it's demanding that the bill will be withdrawn altogether. The law tightens oversight over the use of foreign contributions and aims to improve transparency in the utilization of these funds. Some political reactions coming in on that story as well.
5: यहाँ पे house नहीं चलने दे रहे। आज चार bill introduce हो रहा है। FCRA हो, डिलिमिटेशन हो, महिला आरक्षण के लिए सरकार कटिबद्ध है। तो ये तो पूरा मानसून सत्र अगर वॉश आउट हुआ है तो इसके लिए केवल राहुल गांधी जिम्मेदार है, केवल अखिलेश है, विपक्ष जिम्मेदार है।
6: मेन थिंग इज टू लुक एट द टेक्स्ट।

0: Welcome back. Thank you for staying with NDTV. Well, Commonwealth Game Heroes are back home, and this time they had a special audience. Prime Minister Narendra Modi met the CWG medalists and applauded their grit, dedication and the standout performances in Glasgow, where India finished with 39 medals and fourth place in the overall tally. We leave you with this snippet of that interaction that the CWG medalist had with Prime Minister Narendra Modi today.
1: मेरे फ्रेंड सर्कल मुझे वो बोलते थे कि तू के मोदी से मिल रही है तो आज मैं आपसे मिली हूँ सर मैं उनको बोल पाऊंगी कि हाँ मैं मोदी जी से मिली हूँ
2: इतने आंसू टपक रहे थे मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा है क्या हुआ वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी उस मैप पर नजर जाना मैं सच बताता हूँ लंबे समय तक लोगों को याद
3: 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी वो फाइट तो मैं जीत गया और फिर वो मेरे को बोला कि मतलब भाईजान आपका नाम नरेंद्र है आपके कोच का नाम नरेंद्र है आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है
2: मेरे यहाँ मुझे यहाँ लगभग 12-13 साल हो गए इसी मकान में अगर मैंने रेगुलरली और हर बार किसी को रिसीव किया है किसी को मैं मिला हूँ तो खिलाड़ी है पिछले 10-12 सालों के आप लोगों के पुरुषार्थ के कारण भारत को लगातार विजय दिलाने के आपके प्रयासों के कारण और उत्तरोत्तर सफलता में नई ऊंचाइयां पार करने की परंपरा के कारण जो काम शायद हम स्कूलों में जाके कहें कि नहीं नहीं भाई खेलना चाहिए ये करना चाहिए वो काम स्कूलों में जाकर के हम कर सकते थे उससे ज़्यादा आपका मेडल उनको इंस्पायर करता है तुमने मुझे वादा किया था पिछली बार कि तुम्हारी दोनों बेटियां खिलाड़ी बन जाएगी
4: हाँ जी अभी वे उम्र की छोटी है अगले कॉमनवेल्थ में एक घर में 3 मेडल ला के दिखाई
2: पक्का
5: जब मैं दौड़ रहा था जब मेरा इवेंट था 29 को तो उस दिन गुरु पूर्णिमा थी तो उस दिन मेरे गुरु को मैंने एक गिफ्ट दे दिया
2: बड़ी शान बढ़ाई आपने इतने आंसू टपक रहे थे मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा है
6: मैं बहुत ज़्यादा खुशी थी इमोशनल भी थे उसी दिन खुशी ज़्यादा था और मैं इसलिए रोई थी कि मेरा पेरिस ओलंपिक में मेरे 1 kg में मेडल रह गई थी और एक प्लेयर्स की लाइफ में क्या क्या हमको फेस करना पड़ता है तो ये 4 साल के अंदर मैं कितना क्या क्या कुछ मैंने फेस किया था हर टाइम इंजरी ही चल रहे थे और फैमिली प्रॉब्लम वो सब हो रहा था तो बहुत मुश्किल से मैं ये 4 साल फेस किया था तो वो सब जब पोडियम में जब मैं खड़ी थी सर और हमारी जो फ्लैग ऊपर जाते हैं और हमारे नेशनल एंथम जब बजते हैं तो सर हम रुक नहीं सकते सर
2: क्या हुआ वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी
7: हम लोगों का तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस था लास्ट डे था और सब जीत के गए थे और पूरा इंडिया के लोग थे तो थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा था तो मैंने उनको अच्छे से बोला रिक्वेस्ट किया था सर फिर उन्होंने मान भी लिया अभी चेंज भी हो गया सर
2: इस विजय की परिस्थिति खुशी आनंद अपने साथियों के साथ और गेम पूरे हो चुके हैं तो हंसी मजाक मस्ती का मूड ऐसे समय उस मैप पर नजर जाना और उसको रजिस्टर करना और तुरंत सिर्फ मेडल लेते समय देश खड़ा हो जाता है ऐसा नहीं भीतर से देश का भाव मैं सच बताता हूँ ये वीडियो सामान्य नहीं है आपका लंबे समय तक लोगों को याद रहे
3: 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी और वर्ल्ड मिलिट्री गेम था तो मिलिट्री वाले को फ़ोन आया कि भी पाकिस्तान से नहीं आना है तो फिर मैं फर्स्ट राउंड 4-1 से जीत गया सेकेंड राउंड 3-2 से जीत गया पर दोनों के सर लग गए आपस में तो दोनों के लग गए कट वो फाइट तो मैं जीत गया उसके बाद फिर दोनों चले गए हॉस्पिटल में टाके लगवाने के लिए फिर 2014 में आप फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री जी मिले थे और जो हमारे साथ आर्मी का कोच गया हुआ था उसका नाम नरेंद्र राणा था और फिर वो कई देर तक सोच के मेरे को बोला कि भाईजान एक बात बोलूँ वहाँ बोलो मतलब भाईजान आपका नाम नरेंद्र है आपके कोच का नाम नरेंद्र है, आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है, तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है।
2: सिर्फ आपने मेडल की संख्या बढ़ाई ऐसा नहीं है, आपने एक पीढ़ी को तैयार किया। स्पोर्ट्स व्यवस्था एक बात है, लेकिन देश मेडल तब प्राप्त करता है जब देश में स्पोर्ट्स कल्चर बनता है। दोस्तों, आपने बहुत बड़ा काम किया है, देश का नाम रोशन किया है, आपको मैं बहुत बधाई देता हूं। और आप विश्वास कीजिए, आगे भी आप विजयी होंगे और फिर से एक बार यहीं पर हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
8: ये लगातार तीसरी बार देश को मेडल दिलवाया है, बहुत आशीर्वाद बेटा।
9: और थैंक यू सो मच, मैं सर के हाथ से मेरा बर्थडे था तो आज सर की
8: बहुत बधाई।
9: ये

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज POK।
0: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: thanks very much for joining us here on NDTV. I'm Padmaja Joshi, and as always, on the biggest story of the day, the buck stops here. And today, the buck will stop at the door of the Hemant Soren government in Jharkhand. The day saw students who were protesting against the irregularities that have taken place in entrance exams. They are saying that there has been a large-scale irregularity, jobs have been sold. They marched to the Vidhan Sabha with a huge face-off where there was lathi charge, tear gas shelling was done. There was even students who said that they had been beaten completely unprovoked. And now the question being asked is, despite all the action that has been taken, yes, you had the chief of the JPSC who was arrested today. Yes, you've got the entire commission being dissolved after the resignation of three members. And yes, the chief minister has said that we are willing to have any further investigation. A preliminary FIR or an ECIR has also been filed by the Enforcement Directorate. But the main question, the distance between Jantar Mantar and Jharkhand. If a lathi charge by the police was bad in Delhi, how can it be acceptable in Ranchi? Joining us today from the stadium where for close to 3 weeks now, students have been sitting on dharna demanding their rights. Joining us is Alok Dubey, who is a leader of the Congress in Jharkhand. We also have Ashok Barak, who is a leader of the BJP. And we have an audience of students. The students, the supporters that they have got over here, people who have appeared for the JPSC, who have problems, who have complaints with the entire examination system. Let's begin by asking Alok Dubey ji, लोग तो ये पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने आज तो ट्वीट करके ये भी कह दिया कि जो रांची में हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था, पर ये कंडेम करके क्या होगा? आप तो सरकार में ना है यहाँ पे।
1: मैडम, एक तो सबसे पहले आप बिल्कुल रॉन्ग बोल रही हैं। छात्रों को यहाँ आंदोलन करने का पूरी आज़ादी है। आज 17 दिन हो गए संवेदनशीलता का एक एग्जाम्पल दिया है झारखंड की सरकार ने, एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ के बच्चों ने कि हमें संस्कार भी मालूम है और हमें राजनीति को समझना है और बच्चों की समस्याओं को। अगर लाठी चार्ज की बात होती तो बच्चे विधानसभा कैंपस के 100 मीटर अंदर तक पहुँच गए थे। ये संवेदनशीलता है प्रशासन की
0: कि लाठीचार्ज तो 100 मीटर से पहले ही,
1: 6 ब्रैकेटिंग तोड़ने के बावजूद, और यहाँ तक कि आंदोलनकारी बच्चों का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि उपद्रवी लोग घुस गए थे जिन्होंने उपद्रव करने की कोशिश की। ये
0: यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो कि वहाँ पर विधानसभा में मौजूद थे। कौन कौन थे विधानसभा में वहाँ पर? क्या वहाँ पे उपद्रवी थे जो कि घुस गए थे?
2: नहीं, हम लोग वहाँ नहीं
3: थे। ये चला है और लाठी चार्ज भी हुआ है वहाँ पर, हम गए थे।
2: गिरा है, गोलामारी है,
0: नहीं, एक सेकेंड, वहाँ पर लाठी चार्ज जो हुआ है, आप बताइए क्या संवेदनशीलता थी?
4: नहीं, लाठी चार्ज हुई है, आंसू गैस भी छोड़े गए हैं, मेरे पास वीडियो है, आप बकायदा देख सकते हैं छात्रों के साथ। ये देखिए, आप वीडियो देखिए, क्लियरली आपको सेलिंग देखिए।
0: नहीं नहीं, पर वो हाँ, टियर गैस शेलिंग तो हुई है, पर ये
4: चार्ज का भी मैं आपको वीडियो,
0: हाँ, पर वो तो कह रहे हैं क्योंकि कुछ उपद्रवी छात्र थे, कुछ उपद्रवी लोग थे, घुस गए थे।
4: अब कुछ लोगों के कारण सबको तो नहीं पीटा जा सकता ना, अब थे कि नहीं थे ये कौन जानता है।
0: बताइए आलोक जी, आप कह रहे हैं कि संवेदनशीलता दिखाई गई है, वो पूछ रहे हैं कि आपने शुरू से ही जब तीसरा बैरिकेड टूटा लाठियां क्यों मारनी शुरू कर दी?
1: 6 ब्रैकेटिंग टूटा और संवेदनशीलता की इससे बड़ा उदाहरण नहीं है कि एक हवा में टीयर गैस छोड़ना और एक पैलेट गन से टारगेट करके छोड़ना, देयर इज ए बिग डिफरेंस।
0: और वो गलत है तो ये भी सही।
1: मंतर में जो हुआ था वहाँ बच्चियों के जो प्राइवेट पार्ट्स थे उसमें डंटा मारा गया था, और यहाँ पर जो बच्चे बच्चियाँ आंदोलन आगे करके गेट तोड़ते चले गए, यहाँ के जिला प्रशासन ने उनको बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन एक वो कार्रवाई नहीं थी। वो बताया गया कि आपको एक सेंसिटिव जगह है विधानसभा, जहां 100 मीटर की दूरी पर आप पहुंच रहे हैं।
0: ये सेंसिटिव तो संसद भी है ना, सेंसिटिव तो पार्लियामेंट भी है।
1: बिल्कुल है।
0: तो पार्लियामेंट में जब मार्च जा रहा था तो उसको कैसे जस्टिफाई कर रहे थे?
1: हम तो बोल रहे हैं कि हमने जो रोकने की कोशिश की है, हमने बच्चों के साथ कोई अमानवीय और बर्बरता पूर्वक कार्रवाई नहीं की है, ये 17 दिनों का उदाहरण है।
0: अच्छा, कोई अमानवीय बर्बरता पूर्वक कार्रवाई नहीं हुई, वो तो जब बिल्कुल 100 मीटर दूरी पर पहुंच गए तभी पुलिस ने रोका।

0: देखिए, आज जिस प्रकार से झारखंड में जो घटनाएं हुई है, ये लोकतंत्र के लिए काला दिन है। एक तरह से डेमोक्रेसी को कुचला गया है इस सरकार के द्वारा में। आज भगवान बिरसा मुंडा जी के वंशज, युवा शक्ति, छात्र शक्ति, जब अपने हक हुकुम को लेकर, अपने न्याय मांगने को लेकर, जब हजारों लाखों की तादाद में, वो भी जेन्युइन मांग को लेकर विधानसभा मार्च करते हैं, और भी पूरी की पूरी शांतिपूर्वक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपने जेन्युइन मांग, वो मांग क्या थी कि जेपीएससी जेएससी में जो
1: देखिए फोटो दिखा रहे हैं, वो अपने व्हाट्सएप पे फोटो लेकर के आए हैं, क्या दिखा रहे हैं?
0: एक भी झंडा आज का कोई कार्यक्रम में, पूरे नेशनल टेलीविजन में एक भी झंडा नहीं था। ये पुराना फेक एडिट करके बनाया गया है, और मैं कह सकता हूं कि ये कांग्रेस अलग अलग स्टेट में इनके सिद्धांत और इनकी आइडियोलॉजी बदल जाती है। आज राहुल गांधी जी से यहां जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो 16 दिनों से छात्र यहां अनशन कर रहे, वो पूछ रहे हैं राहुल गांधी जी तुम कब आओगे। लेकिन राहुल गांधी जी के लिए जंतर मंतर का मंत्र जयपाल सिंह मुंडा आते आते हो जाता है छू मंतर। ये डबल स्टैंडर्ड राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, जेएमएम और जितने विपक्षी लोगों को, देश के छात्र देख रहे हैं कि किस तरह से आज
1: बताइए आप कह रहे हैं पत्थर चल।
2: देखिए, यहाँ सब काम राहुल गांधी को नहीं करना है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के बच्चों को, जिन्होंने शालीनता, सभ्यता और संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए शांतिपूर्वक आंदोलन किया, और उस शांतिपूर्वक आंदोलन को डिस्टर्ब करना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के उपद्रवी परेशान करना चाहते थे।
1: एक सेकंड, बात रखिए, एक तो रास्ते में मत आइए, रुकिए। आप गए थे वहाँ पर, मार्च में गए थे, आप अपनी बात रखिए, आप वहाँ पर मार्च करते हुए गए थे, क्या आपके ऊपर वाटर कैनन हुआ?
3: देखिए, ये वाटर कैनन आंसू गैस चलाया गया है, ठीक है, मेरा आग में भी अभी मतलब लहर रहा है। हम यही ये चीज मतलब बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट का न्याय की बात हो, न कि आरोप और प्रत्यारोप। आरोप प्रत्यारोप के लिए ये मंच नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट का हर मुद्दे पे न्याय होना चाहिए। जितने भी पेपर लीक हुए हैं, चाहे मतलब सीट बेचा गया हो, चाहे पूरा एकदम भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, सबका न्याय होना चाहिए। बस
1: देखिए, यहाँ पर बहुत सारे नाराज हैं, जो लड़के हैं नाराज हो रहे हैं, नाराज होने की जरूरत नहीं है। और बिल्कुल आप सही बात कर रहे हो कि छात्रों की बात होनी चाहिए, छात्रों की बात होनी चाहिए। आप किधर से आए?
4: मैं स्टूडेंट हूँ, मैं किसी के साइड से आया नहीं।
1: अरे, किसी जगह से आए होंगे?
4: मैं ये रांची में रहता हूँ।
1: आपका जो आज मार्च हुआ था, उसमें लगता है कि कुछ हासिल हुआ?
4: हासिल ये हुआ कि छात्र जिस चीज के लिए आंदोलन कर रहे थे, है ना, वो उन्होंने मतलब जो आज शांतिपूर्ण चीजों को करा, ये नहीं बोलूंगा कि हाँ ठीक है लाठीचार्ज की बात चीजें हुई, लेकिन मेरे को यहाँ पे ये सही नहीं लग रहा कि यहाँ पे लोग शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे, बट एक दूसरे से वहाँ क्या हुआ, ये कंपैरिजन अच्छा नहीं लग रहा ना मेरे को।
1: शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट था, पर उसके ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, क्यों
4: लाठी चार्ज हुआ, मैं मानता हूँ वो गलत हुआ, बट आप यहाँ पे आकर के ये चीज जो कर रहे हो, ये मेरे को बिल्कुल सही नहीं लग रहा।
1: आई आगे चल के, लेट्स गो बैक एंड वॉच,
5: कौन नहीं बैठा,
1: जो आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं, और उन्होंने बकायदा ट्वीट करके कहा है कि जो यहाँ पर हुआ झारखंड में, वो गलत हुआ। वो कह रहे हैं कि बल प्रयोग नहीं होना चाहिए।
0: देखिए, छात्रों की भावना है, यहाँ जितने छात्र हैं सबकी भावनाएं हैं कि छात्र हित की बात होनी चाहिए। हम शुद्ध 100% 24 कैरेट गोल्ड के साथ हम बोलेंगे कि छात्र हित की यहाँ चर्चा होनी चाहिए। हम भी इनकी बात से सहमत है। चर्चा ये होनी चाहिए कि जिस अभय तिवारी, जो 10 से 13 परीक्षा पास करता है, ब्लैकलिस्टेड एजेंसी TDPL के माध्यम से जो 13-13 एग्जाम कराता है, अपने पत्नी, अपने भाई और अपने साला को परीक्षा में पास कराता है, नौकरी लगाता है, और खुद रैंक 2 लाकर यहाँ अधिकारी बन बैठता है, तो छात्र की मांग वही है कि जो गांव गरीब किसान मजदूर का बेटा, आदिवासी बुलवासी का बच्चा, जब गांव देहात से माड़ भात साग रोटी खाकर, जब जमीन गिरवी रखकर पढ़ता है, लिखता है, जब एग्जाम लिखता है, तो अभय तिवारी जैसे लोग सीट को खरीद के वो आदिवासी बुलवासी, वो किसान गरीब का बेटा का सपना को चकनाचूर करने का काम करता है। तो छात्र की मांग यही है कि TDPL को रद्द करे, जेपीएससी जेएससी 2019 से लेकर
1: जब आप कूद जाते हैं ना बीच में,
0: पूरी रद्द करे और सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए।
1: जब आप बीच में कूद जाते हैं तो लोगों को डर लगता है कि उसका राजनीतिकरण हो जाए।
0: कोई राजनीतिकरण नहीं कर रहा है, हम छात्र हित के लिए हैं, थे और भविष्य में भी रहेंगे।
2: 2014 से 2019 के बीच में रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, आज उनका बयान आपके टीवी पर सुन रहा था। 5 साल में जो मुख्यमंत्री एक जेपीएससी एग्जाम नहीं कर पाता है वो नैतिकता की बात करता है? अगर जेपीएससी को बर्बाद करने का किसी को श्रेय जाता है तो 2 मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा, जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को भर्ती करवाया जेपीएससी में, संथाल परगना के 20 में 16 लोगों को भर्ती करवाया इन दोनों ने, लेकिन हम उसको जस्टिफाई ये नहीं करते हैं कि अगर सरकार ने किया तो हम भी यही करेंगे।
1: तो आलोक जी आप ऐसा कीजिए ना,
6: सरकार कहते हैं इसको वाटर बॉटरी कहते हैं। आपको एक बात बता दूं, बात हमेशा वर्तमान समय की होती है, सत्य बताता हूँ। लास्ट सेवन ईयर्स 22 पेपर लीक्स हुए मैम, जो आप देही से बचने के लिए इस सरकार में ये हुआ, इस सरकार में 7 साल में 22 पेपर लीक हुए हैं। हेमंत सरकार सोरेन की सरकार थी। आज सर आप जिस तरीके से बयानबाजी दे रहे हैं ना, साफ साफ लग रहा है कि आप अपने अकाउंटेबिलिटी से बच रहे हैं।
1: आप एक काम कीजिए, अकाउंटेबिलिटी आप ही की नहीं, हर सरकार की होनी चाहिए। आप सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन करा के भाजपा के लोगों को भी जेल में डलवा दो ना, डलवा दो आप उनको।
2: सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन दो जेपीएससी में हुए, वो रिजल्ट अब तक नहीं आए और वो सुप्रीम कोर्ट में है। भारत की सरकार कह दे कि सीबीआई के जो है रिजल्ट जो 2 जेपीएससी के हमारे पास आए हैं, हम उसको जारी कर देते। रह गई सीआईडी की बात, सीआईडी ने सरकार ने आंदोलन में आने से पहले बच्चों के लिए,
6: बात बच्चों की होनी चाहिए, बात ट्रांसपेरेंसी की होनी चाहिए, बात अकाउंटेबिलिटी की होनी चाहिए। आप हर बार दूसरे लोगों को बीच में लाकर हर बार मुद्दे से भटक
1: बच्चे की बात।
7: आई हैव बीन अ स्टूडेंट हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल बी अ वेरी वेरी डिसेंटली, आप लोग पहले शांत रह लीजिए। आई अभी मैं वहां से आ रहा हूँ, अभी हम लोग जहाँ पे विधानसभा में गए हुए थे, आई हैव बीन देयर, आई वॉज स्टैंडिंग देयर। और जब वहाँ पे जो छात्र नेता वहाँ पे एंटर करते हैं, उसके बाद 6 बजे जब बारिश होनी शुरू होती है, तब हम वहाँ से लौट रहे हैं। आई हैव बीन एक्सपीरियंसिंग इट एंड आई हैव बीन विटनेसिंग इट सिंस। प्रॉब्लम ये है ना सर, कि हम सरकार के विरुद्ध नहीं है, हम सरकार का सहायता चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट है ना, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि गवर्नमेंट कौन है। हमारा क्वेश्चन है ब्यूरोक्रेसी से। आखिर जेपीएससी के चेयरमैन किसी सरकार के आदमी नहीं थे, ये अभय तिवारी किसी सरकार के आदमी नहीं है। अगर ये सरकार के आदमी नहीं है तो आज अगर सरकार ये बात बोलती है कि जेएसएससी के जो भी लोग आज रिक्रूट हुए हैं उनको बुरा लगेगा या भला लगेगा, या जो रिक्रूटमेंट हो चुकी है ये रद्द नहीं हो सकता है, तो ये सरकार सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? सरकार हमारे साथ खड़े होने चाहिए। हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार आप हमारे साथ खड़े हो, एंड यू अगेन क्वेश्चन ऑल दिस ब्यूरोक्रेसी, या कुछ भी अगर डिस्क्रिपेंसीज हो रही हैं, कुछ भी अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आप हमारा साथ दीजिए ना, तभी तो हम आपको कल अपने रिप्रेजेंटेटिव की तरह आइडेंटिफाई करेंगे। आप तो रिप्रेजेंटेटिव हो ही नहीं हमारे, आप तो हमारे अगेंस्ट हो रहे हो, आप हमारे पर क्यों लाठीचार्ज कर रहे हो?
1: बहुत बढ़िया बोला, नाम क्या है?
7: चंदन।
1: चंदन बताइए, चंदन ने सभ्यता से बहुत शालीनता से अपनी बात रखी और वो ये कह रहे हैं, देखिए कई जगह होती अगर राजनीति करनी होती तो कहते फलां इस्तीफा दो, धमाका सरकार गिरा दो। ये कह रहा है सरकार आप हमारे साथ खड़े होकर के बस हमारी नौकरी एक पारदर्शी तरीके से हमें दिलवाइए। उसमें अगर आप राजनीति करके इसने ऐसा क्यों नहीं किया, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, मान लीजिए ना एक पारदर्शी तरीके से आप इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए।
2: 2 मिनट का मुझे भी विनम्रता से बोलने की इजाजत दीजिएगा। आंदोलन में जाने से पहले सरकार ने सीआईडी गठित की, चेयरमैन इस्तीफा दिए, आज चेयरमैन सलाखों के पीछे हैं। 4 मंत्रिमंडल की उच्च स्तरीय कमेटी गठित की, बच्चों के साथ 4 मरतबा राउंड टेबल पर बैठक हुई, सरकार ने कहा 23
1: इन बच्चों के साथ दो बार
2: दूसरों 23-25
1: अब एनएसयूआई के साथ बैठेंगे तो वो बैठक किसी काम की,
2: पहले से सब कुछ जान के बैठे हैं, मुझे बोलने भी दीजिए। 23-25 का बैकलॉग और 2000 ये आपका 14वां जेपीएससी, सरकार ने बोल दिया कि हम इसको खत्म करते हैं। अब रह गया आपका कि जो सीजीएल और जेएसएससी है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो है वो मामले चल रहे हैं।
1: छोटा सा सवाल पूछती हूँ, ठीक है? एक सेकंड ये बोलेंगे, हाँ एक सेकंड ये बोलेंगे अभी, इसके बाद मैं एक छोटा सा चीज पूछती हूँ। ये तर्क जो है ना दिल्ली में भी दिए जा रहे थे, उन्होंने भी कहा कि हमने 13 लोगों को गिरफ्तार कर दिया, हमने रीनीट करा दिया। वहां पर सैद्धांतिक तौर पर एक मांग थी

0: कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, तो सरकार ने कहा ठीक है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। यहाँ पर एक सैद्धांतिक तौर पर वो कह रहे हैं कि आप सीबीआई का जांच करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी, जो बीजेपी सरकार में धांधली हुई है उसको भी जेल में डालिए, जो आपकी सरकार में धांधली हुई है उसको भी जेल में डालिए।
1: बहुत अच्छा,
0: ये उनकी मांग
1: है। बहुत अच्छा सवाल किया मैंने आपने मैडम, वो सरकार काउंटेबल नहीं है जो बच्चों की बात नहीं सुन रही है, जो सरकार बच्चों की बात सुनने को तैयार है, जो सरकार बच्चों के लिए काम करने को तैयार है, जो सरकार मंत्री बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, पूरी जेपीएससी भंग कर दी गई, सलाखों के पीछे चले गए।
0: यहीं पे आप पलट गए ना अभी अच्छी खासी, एक सेकंड ये बोला,
2: इंडिया इज अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे ये जो तीन टीयर्स हैं वो डिवाइड होती है, इसमें बहुत सही तरीके से डिवीजन है, जिसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का डिवीजन है। हमारा प्रॉब्लम लेजिस्लेचर से है ही नहीं, हम चाहते हैं लेजिस्लेचर हमारे साथ आए ताकि हम एग्जीक्यूटिव्स को उनके अकाउंटेबिलिटी पे क्वेश्चन कर सकें। हम कहीं पे भी लेजिस्लेचर को ना ला रहे हैं, ना उनसे किसी भी तरीके से हम ना उन पे क्वेश्चन कर रहे हैं, ना उनसे जवाब चाहते हैं।
0: आप मुझे बस इतना बताइए, अभी अगर जांच होगी तो ये दूर तक जाएगी, तब मत बोलिएगा कि बीजेपी के खिलाफ विछंड क्या क्यों हो रहा है। आप ये खड़े होने के लिए तैयार हैं छात्रों के साथ कि फुल फ्लेज्ड इन्वेस्टिगेशन हो जाए, जो आपकी सरकार में हुआ है उसकी भी जांच हो, जो इनकी सरकार में हुआ है उसकी भी।
3: देखिए इसमें कोई बोलने वाली कोई बात नहीं है, मैं एक झारखंडी हूं और मैं ट्राइबल आदिवासी झारखंडी हूँ, और मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि इस चीज़ से प्रभावित मेरा परिवार के लोग भी है। तो हम एक बीजेपी का प्रवक्ता नहीं, एक झारखंडी होने के नाते और एक झारखंडी युवा होने के नाते, युवा भावनाओं के अनुरूप ये सरकार को अकाउंटेबिलिटी लेते हुए सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी चाहिए। आज क्यों आज लाखों की तादाद में छात्र मार्च निकाले, क्योंकि वार्ता तो सरकार से हो रही थी। सरकार से जब वार्ता हो रही थी तो टेबल पर कौन सा ऐसा मामला कर फंसा कि जिसको लेकर आज छात्र बारिश में भींगे भींगे लाठी खाए, टीआरएस के घास छोड़े गए, दौड़ा दौड़ा कर उनको आतंकवादी गुरुजी सब मारा गया। इसलिए क्योंकि झारखंड में जितने भी पेपर हुई है सभी की सीबीआई जांच होनी चाहिए, और ये सरकार सीबीआई जांच से भाग रही है।
0: ठीक है, और एक चीज जो है, एक पैमाना वैसा ही होना चाहिए, लाठी अगर कोई उपद्रवी हो तो उसके ऊपर आप करें तो एक सेकंड ये मैं इनसे पूछ लेती हूँ, आप अभ्यर्थी हैं?
4: मैं अभ्यर्थी से त्रस्त हूँ, मैं एग्जाम दे चुकी हूँ, मैं 2-3 बार एसएससी का एग्जाम दे चुकी हूँ जिसका आज तक रिजल्ट नहीं आया। मैं उस चीज़ से मैं आज छात्र को देख रही हूँ, तो कुछ समय पहले था जब मैं भी इस चीज़ से गुजरती थी, वो दर्द मुझे हुआ, तो आज मैं छात्रों के साथ आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाने का काम कर रही हूं।
0: आपको आपको ऐसा लगा था कि आज आपको मार्च निकालने दिया जाएगा, या फिर जो लाठी चार्ज हुआ उसके बारे में आप क्या कहें?
4: सबसे पहली बात कि अगर ये दो राउंड की बात हुई है, अगर ये फर्स्ट राउंड में ही हमारी बातें मांग पूरी हो जाती तो हमें आज विधानसभा घेराव करने का जरूरत नहीं पड़ता, पर सरकार ये मांग चाहती नहीं है। सरकार कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी छुपाने के लिए ये दिन पर दिन टाइम लेते जा रही है।
5: तो देखिए मैम, पहले तो बात ये है कि जो सरकार है, आप ऐसे सोचिए, सरकार हमारी दुश्मन नहीं है, या फिर ना हम सरकार के दुश्मन हैं, सरकार को हम ही ने चुन के लाया था, हमें इन पे पूरा भरोसा ही टूट गया है। एक भी जैसे 26 साल हो गए झारखंड को आज़ाद हुए, होने चाहिए 26 जेपीएससी, लेकिन चल कितने रहे 14, आप उसको समझिए। हमारी लड़ाई किस चीज़ से, पूरे सिस्टम से लड़ाई है। अगर मान लिया आज कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल की बात हो रही है, कर देते हैं, दोबारा क्या गारंटी है कि ये सही से करेंगे? ये भी एक डर बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग को काम है कि जो सिस्टम के अंदर है उनको पहले साफ करें, और उसके बाद जो चोरी हुई है उसको रद्द करें। बस
2: एज अ वॉइस ऑफ स्टूडेंट, एज अ वॉइस ऑफ यूथ, हमारा यही आवाज़ है कि हम किसी भी पार्टी स्पेसिफिक को टारगेट नहीं करना चाहते हैं, हम एक पर्टिकुलर रिफॉर्म लाना चाहते हैं जिसमें हर एक पार्टी, हर एक गवर्नमेंट, हर एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव ये बात को, अगर उनके पास पावर हमने दिया है तो वो ज़रूर पहुँचाए, और ये चेंजेस जरूर विधानसभा पे भी लाया जाए, और चेंजेस भी लाए।
6: मैम आज झारखंड को अलग हुए 26 साल हो गया है, और झारखंड एक युवा झारखंड है, और इस युवा झारखंड में मैडम 26 साल में 26 जेपीसी होना चाहिए था, लेकिन केवल 8 जेपीसी हुआ है, केवल सिर्फ उसको लेयर में बढ़ा दिया गया है कि एक साथ हमने 3 कर दिया, 4 कर दिया, लेकिन उतना नहीं हो पाया मैम। और इस बीच में मैम जो हम लोगों ने सरकार से वार्ता बार बार करा, तो सरकार ने हमारे कुछ मतलब जेन्युइन मांग को भी फुलफिल नहीं करा।
0: पर अब आज के बाद क्या होगा? अब आज तो जो अगर
6: मांग है मैम कि TDPL कंपनी के द्वारा जितने भी
0: एग्जाम तो है आपकी, ठीक, आपका नाम क्या है?

0: हाँ, क्योंकि अब जब आपने मार्च निकाला, उन्होंने कह दिया है कि भाई हमने इसको भंग कर दिया है, तीनों मेंबर्स ने रिजाइन कर दिया है, उनको हमने अरेस्ट कर लिया है। मार्च में जहां तक सवाल था, आप मार्च आपको रोक दिया गया, अब आगे क्या करो?
1: मैम अभी आमरण अनशन चल ही रहा है, हमारे अनशन में बैठे दो बहने दो भाई बैठे हुए हैं, जब तक मांग पूरा नहीं होगा ना, कोई आमरण से उठेगा नहीं।
0: बताइए दुबे जी, अब
2: ये तो 10 साल से जितना साल से हो रहा है धांधली, या तो सीट बिकना या तो एग्जाम रद्द होना, ये तो पिछले हमेशा से यही हो रहा है ना।
0: देखिए अब अगर आप इनकी बात सुनेंगे, एक सेकेंड, अब आपने सारी आवाजें सुनी, इन्होंने कहा है कि आप भले से ही इनका मार्च रोक लेंगे, अनशन पे तो ये बैठे रहेंगे ना, कभी तो आगे आ करके आपको इनकी मांगे माननी ही पड़ेगी।
3: मैडम फिर आप बास्ट होके बोल रही हैं, बच्चों को कभी भी आंदोलन करने से नहीं रोका गया, कभी भी नहीं रोका गया है, बच्चे प्रदर्शन कर सकते हैं, घेराव कर सकते।
4: आज अगर आंदोलन से नहीं बच्चों को रोका गया तो आंसू गैस क्यों छोड़ा गया?
3: गलत बात मत करें, नंबर वन। नंबर दूसरा, हमारे एक सेकंड, हमारे पार्टी के द्वारा नहीं आने के बावजूद मैं इन्हीं बच्चों के लिए आया हूं, और मैं छात्र राजनीति का उपज हूं। आज भी मेरे शरीर पर कई जगह पुलिस के लाठियों के निशान है, 31 मुकदमे हुए हैं मेरे ऊपर,
0: वही निशान किसी बच्चे के,
3: बच्चों के लिए आया हूँ। और मैं मानता हूँ कि हेमंत सोरेन की सरकार न सिर्फ संवेदनशील है बल्कि बच्चों के साथ पूरी ईमानदारी के साथ।
0: आपको पूरी छूट मिली हुई है यहाँ पर प्रदर्शन?
5: यस मैम,
0: ये कह रहे हैं कि प्रदर्शन करने की पूरी तरीके।
6: मैम हमारी डिमांड है रिफॉर्म के लिए, ये लोग बात घुमा रहे हैं, बात को आप समझिए मैम, ये बातों को घुमा रहे हैं।
0: आप बताइए,
7: झारखंड बने हुए अभी 25 से 26 साल हो गए, यहाँ नियमित रूप से चुनाव होते हैं, लेकिन यहाँ नियमित रूप से एग्जाम क्यों नहीं होते हैं? हम हेमंत सोरेन जी को यही कहना चाहेंगे, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। हेमंत सोरेन जी, हम विद्यार्थी हैं, हम भारत माँ की संतान हैं, हम दिसोम गुरु के वंशज हैं, उनके अनुयायी हैं, जयपाल सिंह मुंडा जी के अनुयायी हैं। आपको समझना होगा, यह झारखंड केवल और केवल आपकी जागीर नहीं है। एक और हमारे मंत्री इरफान अंसारी जी कहते हैं कि मेरा बेटा बहुत टैलेंटेड है, मैं इसको जेपीएससी के एग्जाम में नहीं बैठाऊंगा। इरफान अंसारी जी रिम्स में अपने बेटे को बिना किसी क्वालिफिकेशन के उसको भेज देते हैं ऐसे ही, और हमें कहते हैं कि हम कीड़े मकोड़े हैं।
0: नहीं, पर ये तो कह रहे हैं ना कि आपको पूरा हक है प्रदर्शन करने का, कोई नहीं रोक।
7: मैम प्रदर्शन ये तो यही चाह रहे हैं, मैम कि हम केवल प्रदर्शन करके रहे, यहां बैठे रहे, और हेमंत सोरेन जी अपने घर में एसी की हवा खाते रहे, और विद्यार्थी यहां धूप में बीए करते रहे और बारिश में भीगते रहे।
0: अब इसका
3: नेताजी से पूछिए कि सीबीआई जांच से क्या दिक्कत है, जो इनके मंत्री जी क्या बोलते हैं कि झारखंड में पेपर लीक हुआ ही नहीं, जो भी वैसे मंत्री बोलते हैं जो स्वास्थ्य को पूरे झारखंड को संभाल रहे हैं, वो बोलते हैं पेपर लीक हुआ ही नहीं। अरे भाई सीबीआई जांच से क्या दिक्कत है, जेएसएससी सीजीएल से क्या दिक्कत है, आप रद्द कीजिए, आप जो साफ है तो रद्द कीजिए। सीआईडी जांच हो रही है कि नहीं हो रही है? एक सेकेंड, हो रही है
8: बच्चों में।
3: सीबीआई के रिजल्ट को हमने देखा है, सीबीआई के रिजल्ट को हमने देखा है, बाबूलाल जी अर्जुन मुंडा के समय में जो सीबीआई जांच भेजे गए थे वो अब तक नहीं हुए।
5: अगर इनके अंदर डर नहीं है, इनको अगर लग रहा है, एक्चुअली बात ये नहीं है, सॉरी चोरी छोटी हो या बड़ी ये मायने नहीं रखती, चोरी चोरी होती है। मेरा कहना ये है, अगर आप सीआईडी के लिए हामी भर रहे हैं तो आप सीबीआई के लिए भी हामी भरिए, क्या आपको इसमें असंकोच क्यों है? कहीं आपके घर में खुद का ये खोटा होगा, आपके घर का खुद का सिक्का खोटा होगा, यही इशू होगा।
0: ये बच्चा दो सवाल पूछना चाहता है हमारे, चिल्ला चिल्ली मत कीजिए, दो सवाल है आराम
2: से, सर आराम से आप सुनिएगा, मेरा दो तीन क्वेश्चन है बस। अभी जेपीएससी का बात नहीं हो रहा है, खाली जेपीएससी एसएससी या बच्चों का गवर्नमेंट स्कूल का स्थिति, कहीं पे भी आप चले जाओ, गांव में, मैं गांव से गवर्नमेंट स्कूल से आता हूं, गवर्नमेंट स्कूल का स्थिति झारखंड में आप जाके देख लो।
0: सवाल क्या है?
2: सवाल ये है कि वहां पे भी चोरी हो रहा, बच्चों का साइकिल और अंडा और ये मार रहे हो, और जेपीएससी में पेपर और सीट का घोटाला कर रहे हो। आप लोग एक जगह घोटाला नहीं कर रहे हो, और हेमंत सरकार ने बीजेपी के टाइम में भी हुआ और हेमंत सरकार के भी टाइम में हो रहा है, और ये सुधार नहीं रहा है। ये
8: वो लोग एक दूसरे पे, अगर सेंट्रल में होगी तो दूसरे ऑपोजिशन को घेरे, जो विपक्ष में पार्टी है उसको बोलेगी, उसके ऊपर थोपेगी। जो अभी
0: देखिए जो सिस्टमिक प्रॉब्लम्स है, और यहाँ पर यही लोग जो हैं ये सही चीज बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं सिस्टमिक। आप जब यहाँ पे आते हैं, एक बात है कि आपका जो एक पॉलिटिक्स होती है कि उन्होंने लाठी चार्ज करवाया, आप उनके ऊपर हावी हो गए, अब आप आज चुप है, अब आप कह रहे हैं कि सब कुछ बहुत चंगा है, रांची में कुछ भी नहीं हुआ, ना वाटर कैनन चला, ना लाठी चली, लोग ऐसे ही गिर गए सड़क के ऊपर। यहाँ बच्चे बता रहे हैं कि आपकी भी जब सरकार थी तब भी प्रॉब्लम्स थी, तब आप चुप क्यों बैठे?
9: देखिए ऐसा नहीं है, जेपीएससी 1 और 2 की जहाँ तक बात है, सीबीआई उसको टेक ओवर की, और सीबीआई ने टेक ओवर किया, चार्जशीट छः साल
0: बोलने दीजिए, बीच में मत बोलो।
10: देखिए ऐसे वाटर बॉटरी करते रहो, बचाते रहो, पिछले सरकार में क्या हुआ, फिलहाल हम अभी के सिस्टम से लड़ेंगे ना, अभी क्या।
0: ये देखिए ये यहाँ का छात्र है जो पीछे हुए, ये दो नेता खड़े हैं और ये छात्र इन सबके ऊपर खड़े होकर के अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं।
9: देखिए मैम, छात्रों की जो भावनाएं हैं, उस भावनाओं का मैं व्यक्तिगत रूप से भी कदर करता हूं, करनी भी चाहिए। पूरा देश ने, पूरा दुनिया रांची पर निगाहें बना के रखा हुआ है कि कैसे छात्रों के प्रति जो सरकार को संवेदनहीन होना चाहिए था, वो पूरी की पूरी एक तरह से तानाशाही रवैया अपनाने का काम कर रही है। छात्रों की मांग क्या है? छात्र तो रिफॉर्म जेपीएससी की बात कर रहे हैं, छात्र यही बात कर रहे हैं, रिफॉर्म जेपीएससी की बात कर रहे हैं और सिस्टम की रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, वही तो हम भी बात कर रहे हैं। देखिए बात होती है अकाउंटेबिलिटी की, जवाबदेही की। देखिए हम कंपेयर नहीं करेंगे, अभी छात्र की भावना है कि सिर्फ यही की बात होनी चाहिए, हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं कि जब पूरे झारखंड के छात्र बात कर रहे हैं कि जेपीएससी जेएससी और टीडीपीएल के द्वारा जो 19 से लेकर 26 तक जितने एग्जाम कराए गए उसको रद्द करें और सीबीआई और सीबीआई और सीबीआई।
0: देखिए एंड आई डोंट नो इफ यू हर्ड वन ऑफ द पीपल, आई डोंट नो इफ यू हर्ड वन ऑफ द स्टूडेंट्स देयर सेड वेरी सिंपल दैट द डिबेट शुड स्टॉप अबाउट हु इज कल्पेबल, दिस फिंगर पॉइंटिंग वन साइड एंड द अदर। If you want the truth to be out there, हमें डिबेट नहीं चाहिए, हमें सीबीआई चाहिए। ये बोल यहाँ पर आवाज आप सुन रहे हैं सीबीआई की, और बार बार जब एक ही मांग लेकर के छात्र वापस आपके पास आते हैं और आप कहते हैं कि नहीं सब कुछ करेंगे पर ये नहीं करेंगे, तो क्यों
3: मैडम? अभी
0: वही आके फंस जाए
3: एकदम। आप लोग, आपने कहा दिल्ली जंतर मंतर का, मैंने सुनो भाई दिल्ली के मीडिया ने जंतर मंतर को कवर नहीं किया, झारखंड को कवर करने के लिए आप लोगों की बहुत चिंता है। सरकार ने रिफॉर्म्स की बात कही है। आपका बारी आगा, बोलिएगा। सरकार ने रिफॉर्म्स की बात कही है, उन्होंने कहा एक्सएलआरआई आईआईएम सबके साथ
0: नहीं चाहिए, एक्सएलआरआई आईआईएम जब आदमी सीबीआई रट रहा है।
3: एक इंक्वायरी अभी हमने ईडी तक को दे दिया, ईडी को दे दिया कि ईडी को भी इन्वॉल्व हो जाए, ईडी को भी इन्वॉल्व।
0: यहाँ पे सिर्फ आपसे पूछूंगी, यहाँ पे कितने लोग, एक सेकेंड, यहाँ पर कितने लोग सीआईडी से संतुष्ट है, अपने हाथ उठाइए। यहाँ पर कितने लोग चाहते हैं कि सीबीआई की जांच हो?
3: पूछिए कि कितने लोग सीआईडी से संतुष्ट भी हैं?
0: नहीं तो पूछा नहीं, कितने लोग सीआईडी से संतुष्ट हैं? I'm going to leave it at this because if there is one thing that you've seen in the public mood here, it's absolutely clear that this kind of browbeating and gaslighting is simply not going to work anymore. There's been a singular demand that these students have had right from the beginning, that this rot has gone on for too long, it has gone too deep, and if a complete cleanup is needed, there should be a centralized investigation so that people who are hand in glove with the corruption that has happened all of this while should be brought to book and should be thrown out of the system. That's when there will be actual justice for the students, not just the ones you're hearing right now, not just the ones who took lathis and tear gas today, but also the ones who continue to sit in agitation over there. For the time being, aap sabka bahut bahut dhanyawad yahan aane ke liye aur humse judne ke liye bahut dhanyawad.
11: Thank you, ma'am.
12: Thank you, ma'am. Thank you.

0: नहीं मिलेगी आपको, लड़कियों को मारा जा रहा है।
1: Now this is the month of Savan. It is very, very auspicious time, and you've got locals who have come here after going to the temple, and they are putting a tilak with all these people who are now headed out. You know, they are going to the Vidhan Sabha. They are going for a Vidhan Sabha gherao, and they are here, you know, putting that small tilak on the head of all of these young men before they leave this stadium. Ma'am, आपका नाम क्या है?
2: हमारा नाम सुमन कुमारी है, और मैं रांची से हूँ। और आज सोमवार का दिन है, मैंने सावन पे फास्टिंग रखा है। आज हमारे लिए, इन जेपीएससी के बच्चों के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज मैं सुबह उठते साथ भोले बाबा के पास पूजा करते ही अपने भाइयों को, अपने बहनों को आके तिलक देके उन्हें मैं आंदोलन के लिए भेज रही हूँ।
1: तो क्यों, आपको क्यों लगा यहाँ आकर के आप तिलक क्यों लगा रही हैं?
2: भाई लोग जा नहीं सकते हैं, तो उनके लिए मुझे आना पड़ा, मुझे आना ज़रूरी था।
1: If you just see the cross section of people who are over here, you've on the one hand got among the four people who are sitting on a fast unto death, you've got an Umme Habiba also, and you've got a Savita also, because it is across barriers, across caste, but pretty much the same class that they are fighting against, the class that is trying to get their dues, their rights, and just fight for a simple job. Habiba, pehle ye bataiye, aap kidhar se hain?
3: Ji, main Bokaro se hoon.
1: यहाँ पर आप क्यों इस आंदोलन का हिस्सा बनी?
3: क्योंकि मैम, हमारे अधिकारों का हनन हुआ है। सिर्फ मेरा नहीं, यहाँ पे जितने अभ्यर्थी हैं, इनफैक्ट पूरे झारखंड के बच्चे के अधिकारों का हनन किया गया है, दुरुपयोग किया गया है। संविधान हमें अवसर की समानता देती है, इक्वालिटी देती है, लेकिन हमारे अवसर को छीना गया है। आर्टिकल 16 जब हमें अवसर दे रहा है, यहाँ पे अवसर की समानता दे रहा है, जॉब करने, नौकरी करने की समानता दे रहा है, लेकिन ये लोग हमारे नौकरी को खा जा रहे हैं, हमारी अवसर को ये लोग छीन रहे हैं। तो ये सारी विडंबनाएं हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से हम अभ्यर्थियों को मजबूरन यहाँ पर आकर के धरना प्रदर्शन करना पड़ा। और इतना ही नहीं, धरना प्रदर्शन आज हमारा यहाँ पे 17वां दिन होने को जा रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि उतने दिनों से कुछ भी सरकार नहीं सुन रही थी हमारी। जो भी धरना प्रदर्शन हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे थे, इवन देन वो अनसुनी कर रही थी, और इसलिए हम लोगों को अनशन करना पड़ा। एक मात्र
1: आप यहाँ पर 17 दिन से अनशन पर बैठी हुई हैं, घर वालों ने कहा नहीं कि भाई तबीयत बिगड़ जाएगी, लड़की हो वहाँ पर आंदोलन पर बैठी हो?
3: मैम, अनशन का आज हमारा 7वां दिन है, धरना प्रदर्शन का 17वां दिन है। तो मैं बता दूं कि जब मैं प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर आई थी, तब घर वालों, फैमिली को नहीं पता थी, मैं और मेरे भैया आए हुए थे कि नहीं लड़ना है इस बार। उसके बाद में फिर मम्मी पापा को पता चल गया, और अनशन जब कर रही थी ये चीज़ नहीं बताई थी। इनफैक्ट उन लोगों को कल पता चली है जी, उससे पहले उन्हें पता चली थी, मेरा एक वीडियो देखे थे वो लोग, डॉक्टर्स आए थे चेकअप करने के लिए, तो बता दिया था कि बेहोश हो गई थी। तो ऐसे सारे, मतलब माँ बाप से झूठ बोलना पड़ रहा है इस करप्ट सिस्टम की वजह से। और मम्मी जब जान गई तो बहुत ज़्यादा निराश भी हुई, रो भी रही थी, क्योंकि वो एक पल अपने बच्चे को भूखा नहीं छोड़ सकती है। माँ की ममता ऐसी होती है। और पिछले 7 दिनों से मैं यहाँ पे अनशन पे हूँ, भूखी बैठी हुई हूँ, तो उनके दिल को कितनी आहत पहुँचती होगी। और मेरा कहना माननीय मुख्यमंत्री जी से भी है कि हम उनके बच्चे नहीं हैं, क्या वो हमारे गार्जियन नहीं है? हम उन्हें अपना गार्जियन मानते हैं, अभिभावक की तरह मानते हैं, तो क्या उनके दिल को आहत नहीं पहुँच रही अभी तक से कि हमारे यहाँ राज्य के बच्चे भूखे पड़े हुए हैं? वो क्या हमसे आकर के वार्तालाप नहीं कर सकते? क्यों नहीं आ रहे वो? हम चाहते हैं कि वो आए और हमसे वार्तालाप करें।
1: आपको लगता है कि सरकार को लग रहा है कि वो तोड़ देंगे, आपका मनोबल तोड़ देंगे? कितने दिन बैठोगे यहाँ पे, उसके बाद सब भूल जाएंगे?
4: ये मैम, जो हम लोग ने भूख हड़ताल किया है, इस सर पर कपन बांध कर किया है कि यहाँ से जब तभी हटेंगे जब हम लोग के जीतने से होगी, क्योंकि हम लोग किसी का अपना हक मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं।
1: जब आप दिल्ली के जो प्रोटेस्ट थे वो आपने देखे, वो भी देखे मैंने, वहाँ पे भी बहुत लड़कियाँ थीं, यहाँ पर कम हैं बट हैं, ये देख के बहुत अच्छा लगा कि यहाँ भी लड़कियाँ हैं। जब आप उसको देखते थे और अपना प्रोटेस्ट देखते हो, तो आपको क्या अलग लगता है?
0: जी, अलग दो चीज़ें हैं। पहली बात तो हमारा जो ये प्रोटेस्ट है, बिल्कुल गांधीवादी तरीके से संवैधानिक है ना यहाँ पे। और एक चीज़ कि यहाँ पे जो हमने मर्यादा का ख्याल रखा हुआ है, जो एक संविधान में भी ये कहता है कि किसी के लिए अभद्र लैंग्वेज का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो ये चीज़ है जो हमारे जिसको हमने सत्ता में बैठाया, जिन्हें हम अपना गार्जियन बनाया है, तो उनकी भी एक ओहदा है, इज्जत है, तो उस चीज़ का हमने ख्याल रखा है, मर्यादाओं का ख्याल रखा है। तो बिल्कुल संवैधानिक तौर तरीके से हमारे प्रोटेस्ट चल रहा है।
1: आपके लिए ज़रूरी क्यों था? क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि जगह जगह पर यहाँ कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगाया हुआ है, मंच पर किसी प्रकार का राजनीतिक, धार्मिक, जातिगत वक्तव्य ना दें, मूल उद्देश्यों पर अपनी बातें रखें, व्यवस्था में सुधार के लिए है, किसी को आरोपित ना करें, अब शब्दों का प्रयोग, ये इतना ज़रूरी क्यों था कि जगह जगह पे ऐसे पोस्टर लगाए गए?
0: जी बिल्कुल, देखिए हम लोग यहाँ पे इस लड़ाई में हमारी सबसे बड़ी मजबूती है संविधान, क्योंकि ये संविधान हमें हक देता है जिससे हमारा हक हनन हुआ और हम उसी हक को लेने आए हैं, तो ये हक ही हमें संविधान देता है। और हक अगर नहीं मिल रहा है तो उसके लिए प्रोटेस्ट करने का भी हक हमें संविधान देता है। तो हम पूरी तरह संविधान में दिए गए, मतलब उनके जो बताई गई जो बातें हैं संविधान में, जिस तरह से चलने के लिए हमें जो रास्ता बताया गया, हम उसी रास्ते पे चल रहे, एकदम बिल्कुल विशुद्ध गांधीवादी तरीके से और संवैधानिक तरीके से। तो इसलिए हमने ये सब लिखा हुआ है, क्योंकि जैसे यहाँ पे ये जो प्रोटेस्ट है पूर्ण छात्रों का प्रोटेस्ट है।
1: आपके घर में आप पहली हैं जिन्होंने सरकारी नौकरी का कोशिश किया?
5: जी मैम, मैं तो पहली हूँ जो घर से निकल के बाहर पढ़ने का कोशिश की, और यहाँ पे जिस तरह पेपर लीक हो गया उस तरह मैं तो एक भी रिजल्ट नहीं कर पाई। अब एक उम्मीद टूटा हुआ लग रहा है अब नहीं निकाल पाऊँगी। जिस तरह पेपर को बेचा जाता है खुलेआम, हम तो 2019 से तैयारी कर रहे हैं, उस समय 2 साल तो कोरोना हो गया था, उसके बाद फिर इधर वैकेंसियाँ निकलने लगी, जितनी भी वैकेंसियाँ निकली 2021 के बाद सारी की सारी बिक गई, और 2021-22 की वैकेंसी अभी 24-25 में एग्ज़ाम लिया जा रहा है। जब तक सीटें बिक नहीं जाती तब तक एग्ज़ाम भी नहीं लिया जाता मैम।
1: पापा आपके क्या करते हैं?
5: मेरे पापा किसान हैं।
1: तो घर में वो नहीं हुआ कि आप घर छोड़ के पढ़ने जा रही हो? सारी बाकी दीदी तो की तो शादी हो गई, आप अकेली नौकरी करने की?
5: मैम घर में हुआ था, मेरा घर तो यहाँ, मैं तो रांची में रहती हूँ, यहाँ टाउन में, और मेरा घर गांव तरफ है, तो मेरा घर में बोला भी गया था, समाज से भी हमको लड़ना पड़ा। उस समय जब निकल रही थी उस समय बोल रही कि लड़कियाँ यहाँ से भाग गई, और भाई भी बोला था कि तुम यहाँ पे रांची की हो और यहाँ बगल में सामने जाके उधर लॉज में जाके रहोगी, समाज क्या बोलेगा? हम बोले समाज कुछ भी बोले वो हमको ले दे के नहीं चलाता है, स्ट्रगल करना तो मेरा फर्ज है, और मैं इतना दिन से पढ़ी हूँ और ऐसे बिना इतना पढ़ी हो के और घर में बैठी रहूँ तो मुझसे नहीं हो सकता। तो मैं तो घर से भी लड़ी थी, समाज से भी लड़ी थी, बहुत स्ट्रगल की थी मैम, तब जाके यहाँ पे पहुँची थी। घर गांव तरफ सब बोल दिया था कि लड़की भाग गई।
1: And again and again, you know, many people are saying that when you talk about the difference between what was seen in Delhi and what is seen in Jharkhand, it's an attempt to divide. No, if there is any one message of unity you see here right on this stage where people from across communities are sitting together, but one thing that they have in common and everywhere on this ground or even among the people who are marching towards the Vidhan Sabha, you will see this happening. A code of conduct that has been spelt out to every single participant, and this really stands out in this protest. They say don't give it any political, any communal or any कास्टिस्ट कलर, धार्मिक राजनीतिक जातिगत वक्तव्य नहीं दें, आंदोलन के मूल उद्देश्यों पर अपनी बातें रखें, बी वेरी क्लियर दैट इट इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ दिस एजिटेशन दैट यू अडियर टू। हमारी लड़ाई व्यवस्था में सुधार की है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को मंच से आरोपित ना करें। दिस इज़ नॉट अबाउट टारगेटिंग एनी वन इंडिविजुअल, आस्किंग फॉर एनी वन पर्सन्स रेजिग्नेशन। यू जस्ट हर्ड द यंग लेडी, शी सेड वी नो दैट इट इज़ द चीफ मिनिस्टर हु इज़ गोइंग टू आंसर आवर प्रॉब्लम्स, सो वी रिक्वेस्ट हिम टू फिक्स इट, टू नॉट बी एरोगेंट, टू नॉट मेक इट अ मैटर ऑफ ईगो, प्लीज़ लिसन टू अस। एंड फाइनली अपने वक्तव्य में अब शब्दों का प्रयोग ना करें। Nowhere on this platform you will ever have seen anyone being abusive, being abrasive, making any personal slurs, and that really is the fundamental nature, because the people who are over here, they also know that they want to be a part of the same system. Tomorrow they are going to be a part of that system. They don't want to demolish that system. They just want to reform it. Imagine, here is somebody who was sitting on dharna against JPSC irregularities 10 years ago. Even today he is carrying around a poster saying that when he sat on dharna, Hemant Soren, who was the chief minister 10 years ago, had broken his fast, this gentleman's fast. Kya naam hai aap?
6: Safi Imam. लेकिन मेरा नाम इमाम सफ़ी है, मीडिया हमें सफ़ी इमाम नाम दिया क्योंकि मैंने।
1: तो सफ़ी जी ये बताइए कि 10 साल पहले भी आप धरना कर रहे थे इसी चीज़ के लिए, 10 साल बाद भी अभी है।
6: आज हमारे बहन लोग भाई लोग यहाँ पर अनशन में हैं और वहाँ भी अनशन है, मेरा ही स्टूडेंट हैं सारे, और जो विधायक जी या तमाम लोग जो यहाँ झारखंड में यदि अनशन के परिपाटी को शुरू करने में भी मैंने प्रयास किया था, क्योंकि आज से 15 साल।
1: The chief minister came, told Imam Shafi 10 years ago that we will listen to your demands, you call off your fast. And 10 years later, his sisters have to sit on dharna with the same demand because all of those promises were simply broken. Now think about why these people would have any trust in the government. You've got, in fact, the very symbols of Jharkhand that have been put up on stage everywhere. You've got tricolor, you've got Shibu Soren, and then you've got a code of conduct. You've got Birsa Munda. So they're saying, we are not here for anarchy. We are anti-corruption. We are not anti-establishment. We are not anti any party. And this is just years and years of what they have been through. JSSC student, ab to naukri pakki hai, paper leak, itna atmavishwas achha nahi hota. Azad Bharat ka sabse bada niyukti ghotala. Madhyamik Acharya 2025 pariksha radd karo. What I'm trying to tell you is that it's not just JPSC or, you know, the SSC, JSSC exams. You've got any government examination that takes place, whether it be for a driver at the district jail, whether it be the Madhyamik Acharya, which is the government teacher's job. Every single exam that takes place, you've got about 20, 30, 140 vacancies. 50,000 people apply for it. They feel we've qualified. They even go for the interviews. And then suddenly it just disappears. They don't know where those jobs went. And that is why they feel when this is so well entrenched, when it is so deep rooted over the decades, how can anything but a full cleanup, a full shake-up ensure that there is transparency and there is honesty, there is any possibility in the future? Sir, ye rasta kab khola jayega?
7: Nahi nahi.
1: Ye rasta band kyu kar diya gaya hai? Yahan pe to prohibitory orders nahi hai na. To vehicles ko jaane ki ijazat nahi di ja rahi hai jahan dharna ka site hai wahan tak. सर क्या सारी सड़कें बंद कर दी जाएंगी तो लोग जाएंगे कैसे?
7: अरे नहीं नहीं नहीं, ये सारी सड़कें नहीं हैं, ये ऑप्शनल रास्ता है।
1: सर शहर के अंदर तो सारी सड़क बंद थी।
7: नहीं नहीं हम
1: ये सड़क भी बंद कर देंगे तो फिर लोग जाएंगे कैसे वहां तक? All right, so there you see, that pretty much is what you see as far as access is concerned. The access to this area has been completely cut off in order to ensure that any more people who are coming from the outside do not make their way even anywhere close to the assembly. And this, by the way, is not an exception. We have seen people who we met in the morning who were trying to come from places like Bokaro, from Giridi, when they were on buses, they showed us videos and said that the police is just asking the buses to pull over and park on the side. And anyone who seemingly is headed towards Ranchi was stopped overnight from even entering the city limits. And even within the city, the truth is right there in front of you of how people's access, the movement of people and vehicles is being restricted. One of the protesters who was sitting on a hunger strike is now being taken away in an ambulance. He had come here and he was still carrying his constitution in one hand. Ek second. Bhaiya, aapka naam?
8: Ji, mera naam Kush Mahato hai. Aur main aaj mera chhatha din hai hunger strike ka. और लगातार जो है कि छात्रों के साथ
1: क्या है, मांग बताओ अपनी भैया, मांग बताओ।
8: मांग हम लोग का जेपीएससी जेएसएससी में जो हमारे सीटें को बेची जा रही है वो हम लोग होने नहीं देंगे, और कभी हम लोग इसके खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ना पड़ेगा, जो जान भी देना पड़ेगा तो जान देने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग और सीट बेचने नहीं देंगे।
1: सो यू हर्ड बीइंग लेड अवे इन एन एम्बुलेंस देयर आफ्टर द लाठी चार्ज एंड द वाटर कैनन दैट हैज हैपेंड। दिस यंग मैन इज स्टिल सेइंग, clutching a copy of the constitution, he says that we want these six different examinations to be cancelled. A lathi charge being conducted over there, the protesters being pushed back. There you see right over there, people, the students who were trying to come to the front now, and there again at the back. All right, so you've got the cops here conducting a lathi charge here, right here. One cop unfortunately has been injured. This is very, very, very disturbing turn of events, and it is really not something that this protest needed. One cop of the Jharkhand police, we're breaking right now on NDTV, has been injured. And I'll take you back to that site where this injury has taken place.

0: place. A couple of barricades here, you see, have been overturned by a few people. Remember in the morning, when we'd spoken to the organizers, they had said that a few unruly elements may try and infiltrate this agitation. It's gone on for an hour and a half right now. Two people being led away. One, a protester who's been taken away in an ambulance. He was on a drip, and he says while being led away that we want all of our demands to be met, for a CBI investigation to take place, and for the six exams that have been held by the TDPL over the last several years, their results to be cancelled, and a proper bahali, a proper appointment process being done, because they say that these jobs have been sold. This is really the point of the face-off. And I want to point out something very quickly over here. You've got two of the organizers who are now on top of a barricade, including a young lady. Now, they've got on top. We had some unfortunate scenes where the protester had flung slippers. These slippers and shoes had been flung in the direction of the police. So you see a lot of abandoned slippers which have been thrown at the cops over here. But after that, you see the organizers getting on top and asking people to settle down. Don't engage in violence. Don't engage with the police. Don't let things get out of hand. So finally now, things are under control. For a bit there, it looked like the situation was getting tense.
1: मेरा नाम संजय महतो और हम हजारीबाग से आए हुए हैं। हम जो पीएससी के छात्र हैं।
0: आपको लाठी लगी?
1: लाठी पूरा पैर से माथा तक, माथा पूरा गला देखिए, इतना जोरदार लाठी था कि मेरा सर पूरा फट गया है।
0: हमारी आप कहाँ?
1: हम यहीं थे, यहीं पीछे थे और लाठी चार्ज स्टार्ट कर दी और पूरा इतना बेरहम नहीं मारना चाहिए, इतना निरंकुश सरकार नहीं होना चाहिए कि झारखंडी छात्र को लाठी से मतलब मारना चाहिए।
0: और आपने तो कहा था कि आप यहाँ पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, शांतिपूर्वक करेंगे।
1: ये पीसफुल ही थी, हम लोग कुछ नहीं बोलिए किसी को, आज एक हम लोग हाथ चलाए हैं और ढेला फेंके या किसी तरह से गाली दिए हैं। हम लोग शांतिपूर्ण विधानसभा जा रहे थे मार्च करते हुए और हम लोग को विधानसभा पहुँचे भी नहीं दिया और हम लोग को मार के यही माथा।
0: ये आपके क्या खून लगा हुआ है?
1: खून लगा हुआ देख लीजिए आप
0: पूरा। क्या आपके आपके ये ऑलराइट, सो ही इज शोइंग, ही इज गॉट अ ब्लड स्टेन कैप हियर।
1: पूरा पूरा देखिए, ये ब्लर देखिए, मेरा शर्ट देखिए, शर्ट से पूरा बांधे हुए थे और इस तरह से अगर खंडी छात्र अगर प्रशासन मारेगी तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग मर जाए, हम लोग को हक अधिकार ना चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए। बताइए हेमंत सोरेन, तुम झारखंडी है कि नहीं है? बाहरियों के दबाव से तुम हम लोग को बर्बाद कर देगा क्या? 26 वर्ष हो गया झारखंड का, लेकिन आज तक नौकरी नहीं कर पाए यहाँ के व्यवस्था के चलते। बताइए हम लोग क्या करें?
0: आपका नाम?
2: चंडी तिवारी मैम नाम है मेरा।
0: चंडी बताइए क्या हुआ?
2: जितना जुल्म सरकार कर रहा है मैम, करने दीजिए, उतना हम लोग को सहने के ताकत मजबूत मिल रहा है, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए। अगर हम न जीते तो झारखंड का भविष्य मर जाएगा। सभी पुलिस वालों को बोलते हैं हम न जीते, इन लोग हट जाओ यार और सब ड्यूटी अपना निभाओ, हम लोग जीत रहे बोले, आप लोग भविष्य को अंधकार कर रहे हैं, इसलिए हट जाइए आप लोग, हट जाइए आप लोग।
0: Is that point where there is a face-off right now between the students on one side and the police, which is on the other. A while ago, there was a lathi charge, the water cannon was used. Remember, what had happened this morning was that the organizers of this protest had said that you have to march from the old Vidhan Sabha towards the new Vidhan Sabha, but it should be done in a peaceful fashion. Somewhere along the way, the story changed. The police says that there was aggression on part of the protesters. The marching students say that they were subjected to a lathi charge. One such person is here with me. आप वहाँ से मार्च करते हुए आ रहे थे, फिर क्या हुआ?
3: हम लोग पीसफुल तरीके से मार्च करते आ रहे थे मैम। हम लोग का जो पीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच है, उस मंच से भी अनाउंसमेंट किया गया था कि हम लोग पीसफुल तरीके से आंदोलन करेंगे, हम लोग शांति मार्च लेकर आ रहे थे। और जो एसपी सर से बात हुई थी कि जो आप लोग का जो एरिया है

0: जहाँ पे हम लोग डिसाइड किए हैं बैठने के लिए वहाँ पे बैठ जाएगा। हम लोग बैठने के लिए हम बच्चे को समझा रहे थे, उसी बीच में इधर से पुलिस की तरफ से पूरा लाठीचार्ज करके जिस तरह से हमको समझाने के दौरान हमको भी चोट लगी है, दो तीन जगह इधर भी, पैर में भी मारा है, पीठ में भी, देखिए यहाँ भी चोट लगा है, यहाँ भी चोट लगा है, देखिए कट भी गया है। मैम हम बताना चाहते हैं कि हम लोग किसी भी तरह से, हम लोग छात्र हैं और किसी भी,
1: आपको पैर में लाठी मारी है,
0: हाँ ये देखिए पूरा लाल है। ये आपका सरकार के द्वारा से हम लोग का जो आंदोलन है उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार के जब हम लोग बोल देंगे पीसफुल तरीका से तो लाठी चार्ज करने की क्या जरूरत है,
1: पर वो कह रहे हैं वहाँ से पत्थर चले।
0: हम लोग किसी भी प्रकार से पत्थर नहीं चलाया है, हम लोग जेनुअल छात्र हैं और छात्र में ही तो जो मांग कर रहे हैं वो हम लोग छात्र का ही, हम लोग किसी भी प्रकार पत्थरबाजी न किसी प्रकार से कोई भी डंटा उंटा से हम लोग मारने की है।
1: ओके सो देव एक्चुअली ओके देव गॉट वीडियोस ओवर हियर, हियर दे आर शोइंग समबडी हु हैज बीन हिट ऑन द बैक। अर्लियर वी हैड मेट समबडी who was being taken away in an ambulance. Here they are showing. All right, so there's this young man who was hit on the back and is lying unconscious on the road, hit by a water cannon.
2: Police ne chala karke lathi, matlab hum log daula karke lathi charge kiye ma'am. Is tarah se yahan pe aap dekh sakte hain.
1: Okay, so they're showing evidence, they're saying that we were trying to get people to settle down, which is when the lathi charge started unprovoked. And most of the people you will see over here will be those who are walking around with a tricolor. In the distance also, the one image that will stand out is that of a tricolor. While we are walking there, just to give you an idea of just how big the deployment of the police is over here.

0: सर खाइए ना, आप कहाँ से हैं?
1: हरियाणा।
0: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
1: डेढ़ महीने पे।
0: आपकी फैमिली है?
1: कौन?
0: बच्चे हैं?
1: 3 साल।
0: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
1: बहुत।
0: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
1: श्रीनगर तक अलाउड।
0: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
2: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल यू नो।

0: Home Minister Amit Shah is willing to respond on the floor of the House as well. Rijiju said that the government has made an offer for a full and detailed discussion, but the opposition must allow the House to function. He said that the opposition must listen to the Home Minister's response in the Parliament and then participate in the discussions. Here are some reactions that we got earlier today from the Parliament on that topic.
1: अभी तक तो केवल एक मांग थी रोज कि गृहमंत्री जवाब दें, और अगर सरकार कह रही कि गृहमंत्री जवाब दे रहे हैं, चर्चा हो, अब उससे भाग रहे हैं, तो इससे साफ है कि विपक्ष इस सदन को जानबूझ करके नहीं चलने दे रहा। पूरा मानसून सेशन जो वॉश आउट हुआ, इनकी सोची समझी रणनीति है, और ये इस सदन को जनता के सवालों या ज्वलंत समस्याओं से माननीय सदस्य क्वेश्चन आवर जीरो आवर से केवल वंचित नहीं हुए, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं, केवल इसका इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं।
2: कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी पहले दिन से ये मांग कर रहे थे कि गृहमंत्री अमित शाह जी को स्टेटमेंट देना चाहिए। मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार की ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है, और स्टेटमेंट ही नहीं, छात्र का मामला को लेकर के पूरा चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैं अनुरोध करता हूं कांग्रेस पार्टी और इनको कि गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, पूरा सुनना पड़ेगा।
3: राहुल गांधी संसद में और देश के नैरेटिव में हर दिन अपना गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। उनका उद्देश्य संवाद करना नहीं है, बल्कि अराजकता फैलाना है। पहले उन्होंने संसद शुरू होते समय नीट पर चर्चा मांगी। जब हम नीट पर चर्चा के लिए तैयार हुए तो वह राम मंदिर न्यास का विषय उठाकर के लिए आए, और उसके बाद फिर गृह मंत्री जंतर मंतर के घटना पर बयान दे इस बात पर अड़े। देखा जाए तो उनका कोई भी इरादा हाउस को न चलने देने का है, वह नहीं चाहते कि हाउस चले, और इसलिए पिछले 15 दिनों से वो हाउस को, सदन को बाधित कर रहे हैं, और बाधित करने के साथ साथ वो इस बात का भी प्रयास कर रहे हैं कि जंतर मंतर के विषय पर चर्चा हो। आज जब इस बात पर चर्चा होकर के तय हुआ कि जंतर मंतर के विषय पर चर्चा होगी, तो वह अब लोगों को गुमराह कर रहे हैं और गुमराह देश को कर रहे हैं कि संसद में जंतर मंतर में गोली चली, बल्कि वहां कोई गोली नहीं चली है, और गृह मंत्री हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
4: Now Mr. Amit Shah suddenly saying that he is ready to speak. We're not interested in his fantasy conversations. We're interested in whether he authorized or didn't authorize the shooting of our children. First, he should make that abundantly clear. After that, the question of any discussion arises. That is the situation. And that is what the opposition is demanding. That is what we've been demanding for the last 15 days. And that is what we are continuing to demand.
0: And while the deadlock is continuing in the parliament and there are several key bills in the pipeline, Finance Minister Nirmala Sitharaman today criticized the opposition over disruptions and walkouts in the parliament, accusing the communists of being total cowards and of being unable to face the facts. She alleged that the opposition would continue to keep on delaying the proceedings while defending the government's legislative agenda as comprising of very reformatory bills. Nirmala Sitharaman said that the opposition should take interest in participate in the discussions on the bills, and even expressed disappointment that the opposition members were walking out during debates on what she described as important reforms. Here's what the finance minister had to say in the parliament today.
5: So actually, before I respond to the discussion points, these are the kind of bills on which the opposition should actually take interest and participate, sir. These are very reformatory. These are going to help the country to move forward fast. And these are steps on which no one can have a difference of opinion, except if they want to suggest improvements on it.

0: So it's such a sad state, sir, that our opposition chooses to walk out on these kind of important debates.
1: Let's now touch upon another very crucial debate that's raging in the parliament. This is about the government's proposal to send the FCRA bill to a parliamentary committee. This has now become another flashpoint in the ongoing monsoon session. The government has reached out to the opposition over the Foreign Contribution Regulation Act or the FCRA bill amid the ongoing stormy monsoon session of the parliament. Now, according to top opposition sources, the government has proposed sending the FCRA bill to a parliamentary committee for further consideration. However, the opposition has rejected the move and it's demanding that the bill will be withdrawn altogether. The law tightens oversight over the use of foreign contributions and aims to improve transparency in the utilization of these funds. Some political reactions coming in on that story as well.
2: यहाँ पे house नहीं चलने दे रहे। आज चार bill introduce हो रहा है। एफ सी आर ए हो, डिलिमिटेशंस हो, महिला आरक्षण के लिए सरकार कटिबद्ध है, तो ये तो पूरा मानसून सत्र अगर वॉश आउट हुआ है तो इसके लिए केवल राहुल गांधी जिम्मेदार है, केवल अखिलेश है, विपक्ष जिम्मेदार है.
3: मेन थिंग इज टू लुक एट द टेक्स्ट, सी हाउ दे मॉडिफाइड इट एंड देन वी विल डिसाइड व्हाट नीड्स टू बी डन. आई थिंक आवर प्रिंसिपल एट द मोमेंट इज वेरी क्लियर. What we know about the bills, what we've seen of the bills, we are not going to agree to either of them. So we are committed to opposing very strongly.
4: For this FCRA issues, with one voice I've asked for either withdrawal of FCRA bill and repeal of Section 15 of 2010 Act. If not, then refer it to the Joint Parliamentary Committee. So therefore, the stand of our leader and DMK party is synchronizing with the demands of a Joint Action Forum on minorities, and whatever the leader said in the beginning still continues.
5: FCRA केवल minorities को परेशान करने के लिए, केवल संदेश देने के लिए कि हम ये कठोर कार्रवाई कर रहे हैं आतंकवाद और इस तरह उधर जो फाइनेंस होता है पैसा. लेकिन सच्चाई ये है कि भारत का पैसा कितना बाहर चला गया. अगर 10 साल में 1,00,000 करोड़ आया होगा एफसीआरए में, वो तो कानून है, बैंक से आता है, नियम है, उसके नियम फॉलो करते हैं. तो ये सरकार के पास जब कुछ नहीं बचता है.
1: Now let's get to an important story that's making headlines down south. Tamil Nadu Chief Minister Vijay has moved a resolution in the state assembly over the Tamil state anthem. Vijay has said that the state anthem is a symbol of Tamil identity and asserted that the sanctity of the mother tongue must be protected. He has stressed that Tamil Nadu cannot compromise on its pride and language identity. The Chief Minister also said that the state and its people will stand united in protecting Tamil pride. The DMK has supported the resolution and also suggested that it should be drafted as a law to avoid unnecessary repetition whenever there is a change in the order or arrangement. Here's what the Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay said in the assembly today.
6: பேசுன வர்ற ஓசை மட்டுமல்ல, திரும்பவும் சொல்றேன், தமிழ் ஒரு மொழி மட்டுமல்ல, அது நம்ம உயிர், அது நம்ம உணர்வு. நம்மளை பெத்த தாய அம்மான்னு சொல்றப்பெல்லாம் பாசமும் சொந்தமும் நம்மளை அறியாமலே உயிரா உறவா உணர்வா தானா உள்ளுக்குள்ளே தோணும்ல, அதே மாதிரி ஏன் இன்னும் ஒரு படி மேலே போயே சொல்லலாம், தமிழ்னு சொன்னாலே எப்படி இருக்கும் என்ன ஆகும்னு சொல்லவா வேணும். தாய் எப்படி ஒரு மிகப்பெரிய புனிதமோ அப்படி தாங்க தாய்மொழியும். அதுலேயும் நம்ம தாய்மொழி தமிழ்மொழி இப்படி சொல்கிறதே போதும், எல்லாருக்கும் நம்ம தாய்மொழி உணர்வை பற்றி புரியும்னு நினைக்கிறோம். 70 பற்றி இருந்துச்சு, ஆனால் நம்ம தமிழ்நாட்டில் 1970களில் இருந்து தமிழ்தாய் வாழ்த்து எல்லா அரசு நிகழ்ச்சிகள்லையும் கல்வி நிறுவனங்கள்லையும் தமிழ்தாய் வாழ்த்து முதல்ல பாடுறது ஒரு மரபாகவே இருக்குது, அதுக்கான அரசாணையும் இருக்குது. மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, தமிழ் நமது உயிர் மூச்சு, தமிழ் மொழி நமது அடையாளம், தமிழ் பண்பாடு நமது பெருமை. அதனால் தமிழ்தாய் வாழ்த்தின் மரியாதையை பாதுகாப்பதில் தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு ஒருபோதும் சமரசம் செய்யவே செய்யாது.
1: right, from Tamil Nadu, let's now grow across to Bengal, where the BJP versus TMC face-off has intensified in West Bengal after an attack on Mamata's convoy during the North 24 Parganas visit. She was visiting the family of a victim who TMC claims died in police custody. Mamata Banerjee's convoy was allegedly attacked with shoes, bottles and stones. The former chief minister and TMC supremo claimed that she could have died in the attack if not for the windshield. But West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari has blamed Mamata, accusing her of not informing the police about her visit. But he added that the adequate security was provided to her.
7: We are currently at the location where Mamata Banerjee's vehicles were attacked en route to a family member of Trinamool Congress Party who was allegedly killed in police custody. And what we know, that this particular juncture was the location while Mamata Banerjee's vehicle was stopped by a group of unruly mob. They pelted mud and sleepers. Following that, a lot of politics is unfolding in Bengal. Trinamool Congress, including Trinamool Chief and the former Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, has alleged it was an planned assassination attempt on her. However, Chief Minister of West Bengal, day after this this very shocking incident unfolded in North 24 Parganas, himself visited the same place and also met the family, reassured all kind of stalked action against the perpetrators with regard to the alleged custodial death of a TMC worker, and said that there was no involvement of Bharatiya Janata Party worker as per the attack on Mamata Banerjee's vehicle is concerned. What we know, an elaborate security arrangement has been done over here following this incident, but it is simmering the politics in Bengal as, very shockingly, Mamata Banerjee, for the first time while she stepped out of Kolkata, her vehicle came under attack on Sunday. With camera person Ruth Tripathi, this is Riktik for NDTV.
8: चेहरीदेल वो है मेरे को गाड़ी में बड़े बड़े पत्थर मारा गया बाहर से एंट्री सोशल पुलिस का सामने में आके हमको इतना गाड़ी को अटक किया अगर हम गाड़ी का कांच शीशा खुला रखता तो हमारा माथा फट जाता हम लोग सब मर जाता ऐसा पुलिस का सामने में हुआ हम कभी ऐसा हमला नहीं देखा
9: पुलिस क्या कर रहा है इतना
8: पुलिस पुलिस बीजेपी को प्रोटेक्शन दे रहा है
10: तो ढूके जयचंद जे রকাপে মেরে দিয়েছে বিজেপি মেরে দিয়েছে তৃণমূলের সম্পদ আর বাড়ির লোক বলছে যে আমার তো প্রশাসন পুলিশের উপরে স্যাটিসফাই আমরা রহস্য উন্মোচন হোক চাই লকআপে ছিল সেই অবস্থায় পিটিয়ে মেরেছেন অসুস্থ এর বিচার চাই এবং লোকাল সরকার এবং পুলিশই আমাকে বিচার দিতে পারবে মমতা ব্যানার্জি বিচার দিতে পারবে না তার বাড়ির লোক বলছে আর আপনি ওখানে ছুটির দিন একজন লয়ালকে সঙ্গে নিয়ে রাজনীতি করতে গেছেন পুলিশকে না জানিয়ে পুলিশ তো এত বড় অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছে দেখলাম যেটা তো উনি এখন ওই ক্যাটাগরিতে পড়েন কিনা সন্দেহ আছে না আমাদের নির্দেশ আছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী 15 বছর ছিলেন বয়সও হয়েছে উনাকে যতটা সম্ভব পূর্ণ নিরাপত্তা এবং উনার সম্মান রাখা উচিত সে কাজ পুলিশ করেছে পুলিশ কিন্তু খারাপ কিছু করেনি তো উনাকে বলবো আপনাকে ওই বাড়ির লোক দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে আপনি বলছেন যে না আমি দরজা ভেঙে ঢুকবো এই কাজগুলো করবেন আপনার আপনার কাছ থেকে যদি কেউ সাহায্য চায় আপনার যদি কেউ হস্তক্ষেপ চায় আপনি নিশ্চয়ই করুন কিন্তু আপনি অহেতু এখন উন্নয়নের সময় এই সময় আপনি দয়া করে কোনো জায়গায় গিয়ে এমন কিছু করবেন না যাতে স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত হয়
1: If you're planning your next travel by Air India, this story will be of umpteen importance to you. Well, the probe into Air India turbulence incident involving the flight AI-2379 is widening, with both Indian and the French Air Accident Investigation bodies now set to join the probe. Airbus, remember, will also support the turbulence investigation, providing technical assistance by sending a team of specialists. It was earlier Air India which had written to Airbus flagging the issues reported by the pilots during the flight. The airline in a statement had said that the investigation is being conducted under the Accident Investigation Bureau and that it will extend full cooperation in the probe. Meanwhile, questions remain over

0: Welcome back. Thank you for staying with NDTV. Well, Commonwealth Game heroes are back home, and this time they had a special audience. Prime Minister Narendra Modi met the CWG medalists and applauded their grit, dedication and the standout performances in Glasgow, where India finished with 39 medals and fourth place in the overall tally. We leave you with this snippet of that interaction that the CWG medalist had with Prime Minister Narendra Modi today.
1: मेरे फ्रेंड्स सर्कल मुझे वो बोलते थे कि तू के मोदी से मिल रही है तो आज मैं आपसे मिली हूँ सर मैं उनको बोल पाऊंगी कि हाँ मैं मोदी जी से मिली हूँ
2: इतने आंसू टपक रहे थे मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा है क्या हुआ वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी उस मैप पर नजर जाना मैं सच बताता हूँ लंबे समय तक लोगों को याद
3: 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी वो फाइट तो मैं जीत गया और फिर वो मेरे को बोला कि मतलब भाईजान आपका नाम नरेंद्र है आपके कोच का नाम नरेंद्र है आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है
2: मेरे यहाँ मुझे यहाँ लगभग 12-13 साल हो गए इसी मकान में अगर मैंने रेगुलरली और हर बार किसी को रिसीव किया है किसी को मैं मिला हूँ तो खिलाड़ी है पिछले 10-12 सालों के आप लोगों के पुरुषार्थ के कारण भारत को लगातार विजय दिलाने के आपके प्रयासों के कारण और उत्तरोत्तर सफलता में नई ऊंचाइयां पार करने की परंपरा के कारण जो काम शायद हम स्कूलों में जाके कहें कि नहीं नहीं वे खेलना चाहिए ये करना चाहिए वो काम स्कूलों में जाकर के हम कर सकते थे उससे ज़्यादा आपका मेडल उनको इंस्पायर करता है तुमने मुझे वादा किया था पिछली बार कि तुम्हारी दोनों बेटियां खिलाड़ी बन जाएगी
4: हाँ जी अभी वे उम्र की छोटी है अगले कॉमनवेल्थ में एक घर में 3 मेडल ला के दिखाएंगे
2: पक्का
5: जब मैं दौड़ रहा था जब मेरा इवेंट था 29 को तो उस दिन गुरु पूर्णिमा थी तो उस दिन मेरे गुरु को मैंने एक गिफ्ट दे दिया
2: बड़ी शान बढ़ाई आपने इतने आंसू टपक रहे थे मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा है
6: मैं बहुत ज़्यादा खुशी थी इमोशनल भी थे उसी दिन खुशी ज़्यादा था और मैं इसलिए रोई थी कि मेरा पेरिस ओलंपिक में मेरे 1 kg में मेडल रह गई थी और एक प्लेयर्स की लाइफ में क्या क्या हमको फेस करना पड़ते हैं तो ये 4 साल के अंदर मैं कितना क्या क्या कुछ मैंने फेस किया था हर टाइम इंजुरी ही चल रहे थे और फैमिली प्रॉब्लम वो सब हो रहा था तो बहुत मुश्किल से मैं ये 4 साल फेस किया था तो वो सब जब पोडियम में जब मैं खड़ी थे सर और हमारी जो फ्लैग ऊपर जाते हैं और हमारे नेशनल एंथम जब बजते हैं तो सर हम रुक नहीं सकते सर
2: क्या हुआ वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी
7: हम लोगों का तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस था लास्ट डे था और सब जीत के गए थे और पूरा इंडिया के लोग थे तो थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा था तो मैंने उनको अच्छे से बोला रिक्वेस्ट किया था सर फिर उन्होंने मान भी लिया अभी चेंज भी हो गया सर
2: इस विजय की परिस्थिति खुशी आनंद अपने साथियों के साथ और गेम पूरे हो चुके हैं तो हंसी मजाक मस्ती का मूड ऐसे समय उस मैप पर नजर जाना और उसको रजिस्टर करना और तुरंत सिर्फ मेडल लेते समय देश खड़ा हो जाता है ऐसा नहीं भीतर से देश का भाव मैं सच बताता हूँ ये वीडियो सामान्य नहीं है आपका लंबे समय तक लोगों को याद रहे
3: 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी और वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे तो मिलिट्री वाले को फ़ोन आया कि भाई पाकिस्तान से नहीं आना है तो फिर मैं फर्स्ट राउंड 4-1 से जीत गया सेकेंड राउंड 3-2 से जीत गया पर दोनों के सर लग गए आपस में तो दोनों के लग गए कट वो फाइट तो मैं जीत गया उसके बाद फिर दोनों चले गए हॉस्पिटल में टाके लगवाने के लिए फिर 2014 में आप फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री जी बने थे और जो हमारे साथ आर्मी का कोच गया हुआ था उसका नाम नरेंद्र राणा था और फिर वो कई देर तक सोच के मेरे को बोला कि भाईजान एक बात बोलूँ वहाँ बोलो मतलब भाईजान आपका नाम नरेंद्र है आपके कोच का नाम नरेंद्र है, आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है, तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है।
2: सिर्फ आपने मेडल की संख्या बढ़ाई ऐसा नहीं है, आपने एक पीढ़ी को तैयार किया। स्पोर्ट्स व्यवस्था एक बात है, लेकिन देश मेडल तब प्राप्त करता है जब देश में स्पोर्ट्स कल्चर बनता है। दोस्तों, आपने बहुत बड़ा काम किया है, देश का नाम रोशन किया है, आपको मैं बहुत बधाई देता हूं। और आप विश्वास कीजिए, आगे भी आप विजयी होंगे और फिर से एक बार यहीं पर हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
8: ये लगातार तीसरी बार देश को मेडल दिलवाया है, बहुत आशीर्वाद बेटा।
9: और थैंक यू सो मच, मैं सर के हाथ से मिला, मेरा बर्थडे था तो आज सर की
8: बहुत बधाई। वाह,
9: ओनली एक ही
8: मेडल।

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज POK।
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
1: So many attacks.
0: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
1: It's incredible.
0: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
1: Welcome to Left, Right and Center.
0: Hard facts.
1: War-struck country.
0: Hard questions.
1: In the Ukraine.
0: 30 years of trust.
2: In the Kargil area.
1: North Ukraine.
3: In France. In Italy.
1: At Srinagar.
3: I am Iskandar.
1: Vishnu Shom for NDTV.
0: Vishnu Shom. Only on NDTV.
4: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक
5: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना।
4: आप कहाँ से हैं?
5: हरियाणा।
4: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
5: डेढ़ महीने पे।
4: आपकी फैमिली है?
5: और
4: बच्चे हैं?
5: 3 साल।
4: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
5: बहुत।
4: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
5: श्रीनगर तक अलाउड।
4: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
6: See, the sacrifice is unbelievable, you know?

0: पार्टी और राहुल गांधी जी पहले दिन से ये मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह जी को स्टेटमेंट देना चाहिए। मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार की ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और स्टेटमेंट ही नहीं, छात्र का मामला को लेकर के पूरा चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैं अनुरोध करता हूं कांग्रेस पार्टी और इनको कि गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, पूरा सुनना पड़ेगा।
1: राहुल गांधी संसद में और देश के नैरेटिव में हर दिन अपना गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। उनका उद्देश्य संवाद करना नहीं है बल्कि अराजकता फैलाना है। पहले उन्होंने संसद शुरू होते समय नीट पर चर्चा मांगी, जब हम नीट पर चर्चा के लिए तैयार हुए तो वह राम मंदिर न्यास का विषय उठा करके ले आए और उसके बाद फिर गृह मंत्री जंतर मंतर के घटना पर बयान दे इस बात पर अड़े। देखा जाए तो उनका कोई भी इरादा हाउस को न चलने देने का है, वह नहीं चाहते कि हाउस चले और इसलिए पिछले 15 दिनों से वो हाउस को सदन को बाधित कर रहे हैं और बाधित करने के साथ साथ वो इस बात का भी प्रयास कर रहे हैं कि जंतर मंतर के विषय पर चर्चा हो। आज जब इस बात पर चर्चा होकर के तय हुआ कि जंतर मंतर के विषय पर चर्चा होगी तो वह अब लोगों को गुमराह कर रहे हैं और गुमराह देश को कर रहे हैं कि संसद में जंतर मंतर में गोली चली, बल्कि वहां कोई गोली नहीं चली है और गृह मंत्री हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
2: नाउ मिस्टर अमित शाह सडनली सेइंग दैट ही इज रेडी टू स्पीक, वी आर नॉट इंटरेस्टेड in his fantasy conversations. We are interested in whether he authorized or didn't authorize the shooting of our children. First, he should make that abundantly clear. After that, the question of any discussion arises. That is the situation. And that is what the opposition is demanding. That is what we've been demanding for the last 15 days. And that is what we are continuing to demand.
3: And while the deadlock is continuing in the parliament and there are several key bills in the pipeline, Finance Minister Nirmala Sitharaman today criticized the opposition over disruptions and walkouts in the parliament, accusing the communists of being total cowards and of being unable to face the facts. She alleged that the opposition would continue to keep on delaying the proceedings while defending the government's legislative agenda as comprising of very reformatory bills. Nirmala Sitharaman said that the opposition should take interest in participate in the discussions on the bills and even expressed disappointment that the opposition members were walking out during debates on what she described as important reforms. Here's what the finance minister had to say in the parliament today.
4: So actually, before I respond to the discussion points, these are the kind of bills on which the opposition should actually take interest and participate, sir. These are very reformatory. These are going to help the country to move forward fast. And these are steps on which no one can have a difference of opinion, except if they want to suggest improvements on it. So it's such a sad state, sir, that our opposition chooses to walk out on these kind of important debates.
3: Let's now touch upon another very crucial debate that's raging in the parliament. This is about the government's proposal to send the FCRA bill to a parliamentary committee. This has now become another flashpoint in the ongoing monsoon session. The government has reached out to the opposition over the Foreign Contribution Regulation Act or the FCRA bill amid the ongoing stormy monsoon session of the parliament. Now, according to top opposition sources, the government has proposed sending the FCRA bill to a parliamentary committee for further consideration. However, the opposition has rejected the move and it's demanding that the bill will be withdrawn altogether. The law tightens oversight over the use of foreign contributions and aims to improve transparency in the utilization

0: right from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
1: Launch control, 0 to 100.
2: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
3: This car makes no sense, yet it makes every sense.
4: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
2: Your friend said, yeah, Lily. We said, maybe not. Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
5: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of...
6: Welcome back. Thank you for staying with NDTV. Well, Commonwealth Game Heroes are back home, and this time they had a special audience. Prime Minister Narendra Modi met the CWG medalists and applauded their grit, dedication and the standout performances in Glasgow, where India finished with 39 medals and fourth place in the overall tally. We leave you with this snippet of that interaction that the CWG medalist had with Prime Minister Narendra Modi today.
7: मेरे फ्रेंड्स सर्कल मुझे वो बोलते थे कि तू के मोदी से मिल रही है तो आज मैं आपसे मिली हूँ सर मैं उनको बोल पाऊंगी कि हाँ मैं मोदी जी से मिली हूँ
8: इतने आंसू टपक रहे थे मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा है क्या हुआ वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी उस मैप पर नजर जाना मैं सच बताता हूँ लंबे समय तक लोगों को याद
9: 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी वो फाइट तो मैं जीत गया और फिर वो मेरे को बोला कि बोला भाईजान आपका नाम नरेंद्र है आपके कोच का नाम नरेंद्र है आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है
8: मेरे यहाँ मुझे यहाँ लगभग 12-13 साल हो गए इसी मकान में अगर मैंने रेगुलरली और हर बार किसी को रिसीव किया है किसी को मैं मिला हूँ तो खिलाड़ी है पिछले 10-12 सालों के आप लोगों के पुरुषार्थ के कारण भारत को लगातार विजय दिलाने के आपके प्रयासों के कारण और उत्तरोत्तर सफलता में नई ऊंचाइयां पार करने की परंपरा के कारण जो काम शायद हम स्कूलों में जाके कहें कि नहीं नहीं भाई खेलना चाहिए ये करना चाहिए वो काम स्कूलों में जाकर के हम कर सकते थे उससे ज़्यादा आपका मेडल उनको इंस्पायर करता है तुमने मुझे वादा किया था पिछली बार कि तुम्हारी दोनों बेटियां खिलाड़ी बन जाएगी
10: हाँ जी अभी वे उम्र की छोटी है अगले कॉमनवेल्थ में एक घर में 3 मेडल ला के दिखाई
8: पक्का
11: जब मैं दौड़ रहा था जब मेरा इवेंट था 29 को तो उस दिन गुरु पूर्णिमा थी तो उस दिन मेरे गुरु को मैंने एक गिफ्ट दे दिया
8: बड़ी शान बढ़ाई आपने इतने आंसू टपक रहे थे मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा है
12: मैं बहुत ज़्यादा खुशी थी इमोशनल भी थे उसी दिन खुशी ज़्यादा था और मैं इसलिए रोई थी कि मेरा पेरिस ओलंपिक में मेरा 1 kg में मेडल रह गई थी और एक प्लेयर्स की लाइफ में क्या क्या हमको फेस करना पड़ता है तो ये 4 साल के अंदर मैं कितना क्या क्या कुछ मैंने फेस किया था हर टाइम इंजरी ही चल रहे थे और फैमिली प्रॉब्लम वो सब हो रहा था तो बहुत मुश्किल से मैं ये 4 साल फेस किया था तो वो सब जब पोडियम में जब मैं खड़ी थी सर और हमारी जो फ्लैग ऊपर जाते हैं और हमारे नेशनल एंथम जब बजते हैं तो सर हम रुक नहीं सकते सर
8: क्या हुआ वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी
13: हम लोगों का तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस था लास्ट डे था और सब जीत के गए थे और पूरा इंडिया के लोग थे तो थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा था तो मैंने उनको अच्छे से बोला रिक्वेस्ट किया था सर फिर उन्होंने मान भी लिया अभी चेंज भी हो गया सर
8: इस विजय की परिस्थिति खुशी आनंद अपने साथियों के साथ और गेम पूरे हो चुके हैं तो एक हंसी मजाक मस्ती का मूड, ऐसे समय उस मैप पर नजर जाना और उसको रजिस्टर करना और तुरंत सिर्फ मेडल लेते समय देश खड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं भीतर से देश का भाव। मैं सच बताता हूँ, ये वीडियो सामान्य नहीं है, आपका लंबे समय तक लोगों को याद रहे।
9: 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी और वर्ल्ड मिलिट्री गेम था तो मिलिट्री वाले को फ़ोन आया कि भाई पाकिस्तान से नहीं आना है। तो फिर मैं फर्स्ट राउंड 4-1 से जीत गया, सेकंड राउंड 3-2 से जीत गया, पर दोनों के सर लग गए आपस में, तो दोनों के लग गए कट, वो फाइट तो मैं जीत गया। उसके बाद फिर दोनों चले गए हॉस्पिटल में टाके लगवाने के लिए। फिर 2014 में आप फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री जी बने थे और जो हमारे साथ आर्मी का कोच गया हुआ था उसका नाम नरेंद्र राणा था और फिर वो कई देर तक सोच के मेरे को बोला कि भाईजान एक बात बोलूँ। मैं हाँ बोलो। बोला भाईजान आपका नाम नरेंद्र है, आपके कोच का नाम नरेंद्र है, आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है, तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है।
8: सिर्फ आपने मेडल की संख्या बढ़ाई ऐसा नहीं है, आपने एक पीढ़ी को तैयार किया। स्पोर्ट्स व्यवस्था एक बात है लेकिन देश मेडल तब प्राप्त करता है जब देश में स्पोर्ट्स कल्चर बनता है। दोस्तों आपने बहुत बड़ा काम किया है, देश का नाम रोशन किया है, आपको मैं बहुत बधाई देता हूं और आप विश्वास कीजिए आगे भी आप विजयी होंगे और फिर से एक बार यहीं पर हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
14: ये लगातार तीसरी बार देश को मेडल दिलवाया है, बहुत आशीर्वाद बेटा।
15: और थैंक यू सो मच, मैं सर के हाथ से बर्थडे था तो आज सर की
14: बहुत बधाई।
15: ओनली एक ही
14: सर।

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
1: Just few inches away is POK.
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: Ladies and gentlemen, it's been nearly 2 weeks since the parliament has been functioning, and there has been a continuous logjam in the parliament. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has said that the centre is ready for a discussion over these issues that are concerning the students, and that the Home Minister Amit Shah is willing to respond on the floor of the House as well. Rijiju said that the government has made an offer for a full and detailed discussion, but the opposition must allow the House to function. He said that the opposition must listen to the Home Minister's response in the parliament and then participate in the discussions. Here are some reactions that we got earlier today from the parliament on that topic.
1: अभी तक तो केवल एक मांग थी रोज कि गृहमंत्री जवाब दे, और अगर सरकार कह रही कि गृहमंत्री जवाब दे रहे हैं, चर्चा हो, अब उससे भी भाग रहे हैं, तो इससे साफ है कि विपक्ष इस सदन को जानबूझ करके नहीं चलने दे रहा। पूरा मानसून सेशन जो वॉश आउट हुआ, इनकी सोची समझी रणनीति है, और ये इस सदन को जनता के सवालों या ज्वलंत समस्याओं से माननीय सदस्य क्वेश्चन आवर जीरो आवर से केवल वंचित नहीं हुए, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं, केवल इसका इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं।
2: कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी पहले दिन से ये मांग कर रहे थे कि गृहमंत्री अमित शाह जी को स्टेटमेंट देना चाहिए। मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार के ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है।

0: केवल संदेश देने के लिए कि हम ये कठोर कार्रवाई कर रहे हैं आतंकवाद और इस तरह उधर जो फाइनेंस होता है पैसा। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत का पैसा कितना बाहर चला गया। अगर 10 साल में 1,00,000 करोड़ आया होगा FCRA में, वो तो कानून है, बैंक से आता है, नियम है, उसके नियम फॉलो करते हैं। तो ये सरकार के पास जब कुछ नहीं बचता है।
1: Now let's get to an important story that's making headlines down south. Tamil Nadu Chief Minister Vijay has moved a resolution in the state assembly over the Tamil state anthem. Vijay has said that the state anthem is a symbol of Tamil identity and asserted that the sanctity of the mother tongue must be protected. He has stressed that Tamil Nadu cannot compromise on its pride and language identity. The Chief Minister also said that the state and its people will stand united in protecting Tamil pride. The DMK has supported the resolution and also suggested that it should be drafted as a law to avoid unnecessary repetition whenever there is a change in the order or arrangement. Here's what the Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay said in the assembly today.
2: பேசுன வர்ற ஓசை மட்டுமல்ல, திரும்பவும் சொல்றேன், தமிழ் ஒரு மொழி மட்டுமல்ல, அது நம்ம உயிர், அது நம்ம உணர்வு. நம்மளை பெத்த தாய அம்மான்னு சொல்றப்பெல்லாம் பாசமும் சொந்தமும் நம்மளை அறியாமலே உயிரா உறவா உணர்வா தானா உள்ளுக்குள்ளே தோணும்ல. அதே மாதிரி ஏன் இன்னும் ஒரு படி மேலே போயே சொல்லலாம், தமிழ்னு சொன்னாலே எப்படி இருக்கும் என்ன ஆகும்னு சொல்லவா வேணும். தாய் எப்படி ஒரு மிகப்பெரிய புனிதமோ அப்படிதாங்க தாய்மொழியும். அதுலேயும் நம்ம தாய்மொழி தமிழ்மொழி இப்படி சொல்கிறதே போதும், எல்லாருக்கும் நம்ம தாய்மொழி உணர்வை பற்றி புரியும்னு நினைக்கிறோம். 70 பற்றி இருந்துச்சு, ஆனால் நம்ம தமிழ்நாட்டில் 1970களில் இருந்து தமிழ்தாய் வாழ்த்து எல்லா அரசு நிகழ்ச்சிகள்லேயும் கல்வி நிறுவனங்கள்லேயும் தமிழ்தாய் வாழ்த்து முதல்ல பாடுறது ஒரு மரபாகவே இருக்குது, அதுக்கான அரசாணையும் இருக்குது. மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, தமிழ் நமது உயிர் மூச்சு, தமிழ் மொழி நமது அடையாளம், தமிழ் பண்பாடு நமது பெருமை. அதனால் தமிழ்தாய் வாழ்த்தின் மரியாதையை பாதுகாப்பதில் தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு ஒருபோதும் சமரசம் செய்யவே செய்யாது.
1: Right, from Tamil Nadu, let's now grow across to Bengal, where the BJP versus TMC face-off has intensified in West Bengal after an attack on Mamata's convoy during the North 24 Parganas visit. She was visiting the family of a victim who TMC claims died in police custody. Mamata Banerjee's convoy was allegedly attacked with shoes, bottles and stones. The former chief minister and TMC supremo claimed that she could have died in the attack if not for the windshield. But West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari has blamed Mamata, accusing her of not informing the police about her visit. But he added that the adequate security was provided to her.
3: We are currently at the location where Mamata Banerjee's vehicles were attacked en route to a family member of Trinamool Congress Party who was allegedly killed in police custody. And what we know that this particular juncture was the location while Mamata Banerjee's vehicle was stopped by a group of unruly mob. They pelted mud and sleepers. Following that, a lot of politics is unfolding in Bengal. Trinamool Congress, including Trinamool Chief and the former Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, has alleged it was an planned assassination attempt on her. However, Chief Minister of West Bengal, day after this this very shocking incident unfolded in North Chobbish Parana, himself visited the same place and also met the family, reassured all kind of stalked action against the perpetrators with regard to the alleged custodial death of a TMC worker, and said that there was no involvement of Bharatiya Janata Party worker as per the attack on Mamata Banerjee's vehicle is concerned. What we know, an elaborate security arrangement has been done over here following this incident, but it is simmering the politics in Bengal as, very shockingly, Mamata Banerjee, for the first time while she stepped out of Kolkata, her vehicle came under attack on Sunday. With camera person Ruth Tripathi, this is Riktik for NDTV.
4: चेहिबेल वो है, मेरे को गाड़ी में बड़े बड़े पत्थर मारा गया, बाहर से एंटी सोशल पुलिस का सामने हमको इतना गाड़ी को अटक किया, अगर हम गाड़ी का कांच शीशा खुला रखता तो हमारा माथा फट जाता, हम लोग सब मर जाता, ऐसा पुलिस का सामने में हुआ, हम कभी ऐसा हमला नहीं देखा।
5: क्या कर रहे इतना पुलिस
4: बीजेपी को प्रोटेक्शन दे रहा है,
6: ढुके রকা পে মেরে দিয়েছে, বিজেপি মেরে দিয়েছে, তৃণমূলের সম্পদ, আর বাড়ির লোক বলছে যে আমার তো প্রশাসন পুলিশের উপরে স্যাটিসফাই, আমরা রহস্য উন্মোচন হোক চাই। রকা পে ছিল সেই অবস্থায়, পিটিয়ে মেরেছেন, আমার সুস্থ হয়ে বিচার চাই, এবং লোকাল সরকার এবং পুলিশই আমাকে বিচার দিতে পারবে, মমতা ব্যানার্জি বিচার দিতে পারবে না, তার বাড়ির লোক বলছে। আর আপনি ওখানে ছুটির দিন একজন লয়ারকে সঙ্গে নিয়ে রাজনীতি করতে গেছেন পুলিশকে না জানিয়ে, পুলিশ তো এত বড় অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছে দেখলাম, যেটা তো ওনার পাওয়া, উনি এখন ওই ক্যাটাগরিতে পড়েন কিনা সন্দেহ আছে। আমাদের নির্দেশ আছে, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী 15 বছর ছিলেন, বয়সও হয়েছে, উনাকে যতটা সম্ভব পূর্ণ নিরাপত্তা এবং উনার সম্মান রাখা উচিত, সে কাজ পুলিশ করেছে, পুলিশ কিন্তু খারাপ কিছু করেনি। তো উনাকে বলবো, আপনাকে ওই বাড়ির লোক দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে, আপনি বলছেন যে না আমি দরজা ভেঙে ঢুকবো, এই কাজগুলো করবেন। আপনার আপনার কাছ থেকে যদি কেউ সাহায্য চায়, আপনার যদি কেউ হস্তক্ষেপ চায়, আপনি নিশ্চয়ই করুন, কিন্তু আপনি অহেতু এখন উন্নয়নের সময়, এই সময় আপনি দয়া করে কোনো জায়গায় গিয়ে এমন কিছু করবেন না যাতে স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত হয়।
1: If you're planning your next travel by Air India, this story will be of umpteen importance to you. Well, the probe into Air India turbulence incident involving the flight AI2379 is widening, with both Indian and the French air accident investigation bodies now set to join the probe. Airbus, remember, will also support the turbulence investigation, providing technical assistance by sending a team of specialists. It was earlier Air India which had written to Airbus flagging the issues reported by the pilots during the flight. The airline in a statement had said that the investigation is being conducted under the Accident Investigation Bureau and that it will extend full cooperation in the probe. Meanwhile, questions remain over the pilots' medical test. The Civil Aviation Ministry said yesterday that the pilots were tested as per prescribed norms. The result of the pilot in command requires a retest, with the sample sent to a laboratory for confirmation. For now, the investigation is widening on multiple fronts, from the aircraft's sudden plunge to the turbulence encountered mid-air, and now the questions surrounding the pilot's test results. Everything will be cleared once the result of the second test is out. But let's also tell you about what happened 4 days ago. This incident stemmed on August 4 when an Air India flight from Phuket to Delhi was cruising normally, and suddenly, the aircraft plunged about 300 feet. There were passengers, crew that were thrown around. There were several people who were injured. And the flight eventually landed safely in Delhi. But what happened in those few terrifying moments is now under investigation. Here's a detailed report on all that's happened so far.
7: एकदम से पता नहीं क्या हुआ, 1000 फीट नीचे गई या क्या हुआ।
1: This is the Air India Phuket to Delhi flight at the center of a growing aviation controversy. On August 4, the aircraft encountered severe turbulence during its journey to Delhi. The aircraft suddenly lost approximately 300 feet altitude. For passengers inside the cabin, it was terrifying few minutes. Several passengers and crew members were injured, with some crew members suffering serious injuries.
8: It was a very chaotic situation. I could see everyone was bruised, bleeding, or with a broken arm or a leg or something like that. It was the worst moments of my life. I've never encountered something like or anything like this. And I pray to God no one ever has to be in this situation ever.
7: एकदम से पता नहीं क्या हुआ, 1000 फीट नीचे गई या क्या हुआ, मैं

0: from the newsroom to the studio to the thick of political action.
1: You're watching NDTV 24/7.
2: The hope is that beyond this election, this will be one of the major issues.
3: With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of rejig.
2: Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially in the villages of West Bengal.
0: When stories have impact.
4: Padmasar Joshi, managing editor and prime time anchor.
0: Then news has influence. The buck stops here with Padmaja Joshi.
2: Your work is being watched by people. You think that you're...
5: Welcome back. Thank you for staying with NDTV. Well, Commonwealth Game heroes are back home, and this time they had a special audience. Prime Minister Narendra Modi met the CWG medalists and applauded their grit, dedication and the standout performances in Glasgow, where India finished with 39 medals and fourth place in the overall tally. We leave you with this snippet of that interaction that the CWG medalist had with Prime Minister Narendra Modi today.
6: मेरे फ्रेंड्स सर्कल में जी वो बोलते थे कि तू के मोदी से मिल रही है तो आज मैं आपसे मिली हूँ सर मैं उनको बोल पाऊंगी कि हाँ मैं मोदी जी से मिली हूँ
7: इतने आंसू टपक रहे थे मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा है क्या हुआ वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी उस मैप पर नजर जाना मैं सच बताता हूँ लंबे समय तक लोगों को याद
8: 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी वो फाइट तो मैं जीत गया और फिर वो मेरे को बोला कि मतलब भाईजान आपका नाम नरेंद्र है आपके कोच का नाम नरेंद्र है आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है
7: मेरे यहाँ मुझे यहाँ लगभग 12-13 साल हो गए इसी मकान में अगर मैंने रेगुलरली और हर बार किसी को

0: रिसीव किया है, किसी को मैं मिला हूँ तो खिलाड़ी है। पिछले 10-12 सालों के आप लोगों के पुरुषार्थ के कारण, भारत को लगातार विजय दिलाने के आपके प्रयासों के कारण और उत्तरोत्तर सफलता में नई ऊंचाइयां पार करने की परंपरा के कारण, जो काम शायद हम स्कूलों में जाके कहें कि नहीं नहीं वे खेलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो काम स्कूलों में जाकर के हम कर सकते थे, उससे ज़्यादा आपका मेडल उनको इंस्पायर करता है। तुमने मुझे वादा किया था पिछली बार कि तुम्हारी दोनों बेटियां खिलाड़ी बन जाएगी।
1: हाँ जी, अभी वे उम्र की छोटी है, अगले कॉमनवेल्थ में एक घर में 3 मेडल ला के दिखाएंगे।
0: पक्का?
2: जब मैं दौड़ रहा था, जब मेरा इवेंट था 29 को, तो उस दिन गुरु पूर्णिमा थी, तो उस दिन मेरे गुरु को मैंने एक गिफ्ट दे दिया।
0: बड़ी शान बढ़ाई आपने, इतने आंसू टपक रहे थे, मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा है।
3: मैं बहुत ज़्यादा खुशी थी, इमोशनल भी थे उसी दिन, खुशी ज़्यादा था। और मैं इसलिए रोई थी कि मेरा पेरिस ओलंपिक में मेरे 1 kg में मेडल रह गई थी। और एक प्लेयर्स की लाइफ में क्या क्या हमको फेस करना पड़ते हैं, तो ये 4 साल के अंदर मैं कितना क्या क्या कुछ मैंने फेस किया था। हर टाइम इंजुरी ही चल रहे थे और फैमिली प्रॉब्लम वो सब हो रहा था, तो बहुत मुश्किल से मैं ये 4 साल फेस किया था। तो वो सब जब पोडियम में जब मैं खड़ी थी सर, और हमारी जो फ्लैग ऊपर जाते हैं और हमारे नेशनल एंथम जब बजते हैं, तो सर हम रुक नहीं सकते सर।
0: क्या हुआ, वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी?
4: हम लोगों का तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, लास्ट डे था और सब जीत के गए थे और पूरा इंडिया के लोग थे, तो थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा था। तो मैंने उनको अच्छे से बोला, रिक्वेस्ट किया था सर, फिर उन्होंने मान भी लिया, अभी चेंज भी हो गया सर।
0: इस विजय की परिस्थिति, खुशी आनंद अपने साथियों के साथ और गेम पूरे हो चुके हैं, तो हंसी मजाक मस्ती का मूड, ऐसे समय उस मैप पर नजर जाना और उसको रजिस्टर करना और तुरंत सिर्फ मेडल देते समय देश खड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं, भीतर से देश का भाव, मैं सच बताता हूँ, ये वीडियो सामान्य नहीं है, आपका लंबे समय तक लोगों को याद रहे।
5: 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी, और वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे तो मिलिट्री वाले को फ़ोन आया कि भाई पाकिस्तान से नहीं आना है। तो फिर मैं फर्स्ट राउंड 4-1 से जीत गया, सेकेंड राउंड 3-2 से जीत गया, पर दोनों के सर लग गए आपस में, तो दोनों के लग गए कट, वो फाइट तो मैं जीत गया। उसके बाद फिर दोनों चले गए हॉस्पिटल में टाके लगवाने के लिए। फिर 2014 में आप फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री जी बने थे, और जो हमारे साथ आर्मी का कोच गया हुआ था उसका नाम नरेंद्र राणा था, और फिर वो कई देर तक सोच के मेरे को बोला कि भाईजान एक बात बोलूँ, वहाँ बोलो, मतलब भाईजान आपका नाम नरेंद्र है, आपके कोच का नाम नरेंद्र है, आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है, तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है।
0: सिर्फ आपने मेडल की संख्या बढ़ाई ऐसा नहीं है, आपने एक पीढ़ी को तैयार किया। स्पोर्ट्स व्यवस्था एक बात है, लेकिन देश मेडल तब प्राप्त करता है जब देश में स्पोर्ट्स कल्चर बनता है। दोस्तों, आपने बहुत बड़ा काम किया है, देश का नाम रोशन किया है, आपको मैं बहुत बधाई देता हूं, और आप विश्वास कीजिए आगे भी आप विजयी होंगे और फिर से एक बार यहीं पर हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
6: ये लगातार तीसरी बार देश को मेडल दिलवाया है, बहुत आशीर्वाद बेटा।
7: और थैंक यू सो मच, मैं सर के हाथ से मिला, मेरा बर्थडे था तो आज सर की
6: बहुत बधाई।
7: ओनली 1 kg।